0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
0: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम करुणा जी के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको करुणा जी।
1: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री ने संसद में बजट पर हुई बहस का समापन करते हुए कहा कि आज के लिए लिए गए फैसले देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। वहीं पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अघियाना वोमाग ने कहा, ये कोई उपहार नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ी की मानव पूंजी में किया गया एक निवेश है। बजट के बाद दिए गए अपने भाषण के दौरान उन्होंने बजट में शामिल उपायों का बचाव किया। सार्वजनिक ऋण बजट 2026-2027 की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। सरकार का अनुमान है कि जून 2026 के अंत तक ये 681.9 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि जीडीपी का 87.8% होगा। मंत्रिपरिषद ने मेलगोस जेल में 9 दिसंबर को ओजी सेल्मो की मृत्यु के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। इस आयोग की पूर्व अध्यक्ष न्यायाधीश बल्कि इस आयोग की अध्यक्षता करने वाले पूर्व न्यायाधीश पुलाम शांगलिन ने की थी। जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गंभीर खामियों का उल्लेख किया गया। और विदेश में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों तथा तटीय रडार चौकियों पर हमले किए। और अब मौसम की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे, देश में अस्थिरता रहेगी। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे। पूर्व एवं ऊंचाइयों पर जहां तहां बारिश हो सकती है।

दिन के दौरान भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे। पूर्व तथा सेंट्रल पार्टों पर जहां तहां बारिश होगी। कभी कभार मूसलाधार बारिश के साथ बादल भी गरज सकते हैं। कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच,

0: प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवालेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में साथ में एवं दक्षिणी एवं पश्चिमी लगूनों में भी न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त शाम के 5:40 पर। तो पूरा बुलेटिन 6:30 बजे, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: AM2 रेडियो मॉरिशस मीडिया मोबाइल से 19 किलोहर्ट्ज पर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सांस रवास के हमारे प्यार प्यार दोस्तों, देवी और सज्जनों, स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। इस समय मॉरिशस में सुबह के 6:04:50 हो रही है। आज है शनिवार का दिन, शनिवार 27 जून 2026। परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि आज की सुबह राज का पूरा दिन आप सभी के लिए एकदम अच्छी तरह से बीते। आज आप जहां भी रहें खुश रहें, सलामत रहें। और अगर साथ देने का वादा करते हैं तो बता देते हैं कि हमारा आपका साथ रहेगा अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक। अभी से 6:30 बजे तक भक्ति वंदन कार्यक्रम, उसके बाद पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल, स्पोर्ट्स रिव्यू 6:30 से 7 बजे के बीच, 7 बजे मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना जो चलेगा दिन के 9 बजे तक, और दिन के 9 बजे हमारा आपका साथ पूरा हो जाएगा। सो इस नई मॉर्निंग की शुरुआत कीजिए, इस नए दिन का आगाज़ कीजिए इसी विचार के साथ, इसी आशा के साथ कि कल जो बुरा हुआ आज वो ना हो, आज सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। बीते पल बीत गए, जो पल है वो अभी के पल है और आने वाले वर्तमान के पल होंगे। सो बुद्धिमान इंसान वो है जो अपने वर्तमान में जीता है और भविष्य की तैयारी करता है कि नहीं। सिर्फ प्यारी सी मुस्कान के साथ इस मॉर्निंग को कहिए गुड मॉर्निंग। और चलिए शुरू करते हैं इस प्रातकालीन सभा को गहलोत राजपूत महासभा के प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम है वैदिक नाथ।

0: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से आइए सुनिए
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता
2: आनंद मंगल कर
0: वैदिक नाथ
2: जय गायत्री माता
3: ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। गहलोत राजपूत महासभा द्वारा प्रस्तुत वैदिक नाथ के सुनने वाले समस्त श्रोताओं को आचार्य बीतुला का सादर सप्रेम नमस्ते। श्रोताओं, आज का विषय है वेद ही एक रास्ता, अर्थात वेद के अनुसार ही जीवन को यापन करना। इस विषय पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे वैदिक नाद के माध्यम से। विषय को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, आत्मा और शरीर का मिलन को जन्म कहा जाता है। आत्मा और शरीर के मिलने से ही स्त्री और पुरुष की पहचान होती है और शरीर से संबंधी। तात्पर्य यह है, जब तक आत्मा शरीर एक नहीं होते तब तक न कोई स्त्रीलिंग न कोई पुलिंग और न कोई संबंधी। शरीर से ही स्त्रीलिंग और पुलिंग

और शरीर से ही जो हैं संबंधी इत्यादि होती हैं। यहाँ पर जो है आत्मा जब तक शरीर से नहीं मिलता तब तक जन्म स्त्री पुरुष और न संबंधी, यह बात स्पष्ट हो जाती है। यह शरीर ही समाज को विभिन्न रूप और व्यवहार देता है, जैसे चार आश्रम शरीर से चलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। आत्मा और शरीर से मानव समाज में जो विशेष व्यवहार होता है उनके नाम हैं जिनको हम आश्रम और वर्ण से जानते हैं। पुनः यहाँ पर बात मैं स्पष्ट करना उचित समझता हूँ श्रोताओं, मैं कहने का तात्पर्य यह है आत्मा जो है न कोई वो वर्ण न कोई जो लिंग में आते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, अर्थात जब वर्ण आश्रम समाज की व्यवस्था इत्यादि जब तक शरीर और आत्मा एक नहीं होते तब तक ये सब असंभव हैं। अब मुख्य बात यह है कि ये सब नाम शरीर के कारण से मिलता है, अर्थात आत्मा शरीर का मिलन जब तक नहीं होता तब तक न कोई आश्रम न कोई वर्ण और न कोई नाम। फिर अब विचारणीय बात यह है कि आत्मा जब शरीर से मिलता है अर्थात जन्म होता है तब ये सब नाम होते हैं। फिर शरीर के मिलन से पूर्व आत्मा का क्या नाम होता है, एक गंभीर बात है यहाँ श्रोताओं, जो मैंने प्रारंभ में बताया वेद ही एक रास्ता। अब वेद के अनुसार है कि तब वेद कहता है कि आत्मा शरीर के बिना आत्मा का क्या नाम है, वेद कहता है आत्मा का नाम है सनातन। अब जब सनातन नाम आता है, अब यहाँ सनातन को भी मैं समझना है, सनातन का अर्थ जो कभी पुराना नहीं होता वह सनातन होता है। आत्मा कभी पुराना नहीं, शरीर जन्म, शरीर जवानी और शरीर बुढ़ापा, शरीर मृत्यु इत्यादि शरीर संबंधित हैं, तो शरीर सनातन नहीं हुआ। सनातन कौन हुआ, वो है आत्मा। अर्थात शरीर के बिना हमारा नाम सनातन है, हम सब सनातनी हैं। वेद कहता है भोग्यो भवदतो अन्नमदद बहु यो देवमुत्तरावंत मुपासाते सनातनम्। यह अथर्ववेद का मंत्र है और वेद का मंत्र बोलता है सनातनम् येन माहु ऋतद्यस्यात् पुनर्नव अहोरात्रे प्रजायेति अन्यो अन्यस्य रूपयो। अर्थात सनातन आत्मा ही सनातन परमात्मा के गुणों को जानता है। सनातन का अर्थ जो कभी पुराना नहीं होता है, कौन पुराना नहीं होता, तो परमात्मा और जो है संपूर्ण मानव को आत्म पहचान देने के लिए, अर्थात आत्म पहचान देने के लिए जो परमात्मा ही एक उपासना करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है श्रोताओं, जो आत्मा है जो शरीर के अंदर है वो शरीर के अनेक नाम है, परंतु ये आत्मा सनातन है और आत्मा ही परमात्मा की उपासना करती है, अर्थात सनातन ही सनातन की उपासना करती है। कौन कहता है कि हमारी पूजा उपासना विधि ऐसी होती है, अर्थात जो लोग रूप अर्थात शरीर को महत्व देते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा विडम्बना है, जो है सनातन और आत्मा परमात्मा दोनों सनातन हैं, इनकी उपासना विधि जो है आत्मा ही परमात्मा की उपासना करती है, परंतु यहाँ जब हम दोनों के बीच में जो दोनों निराकार हैं, आत्मा निराकार परमात्मा निराकार, दोनों के बीच में जब हम शरीर का प्रयोग करने लग जाते हैं तब वहाँ रूप का विषय बन जाता है और सब विधि में जो है एक अंतर से दिखाई देने लग जाते हैं। सो ऐसा नहीं है, पूजा उपासना निराकार परमात्मा की निराकार आत्मा से ही संभव है। मनु महाराज अपने धर्मशास्त्र मनुस्मृति में कहा है कि अग्निर्वायुरभिव्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम् दुदोह।

0: यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋक् यजु साम लक्षणम। यहाँ भी यह सनातन शब्द आ रहा है, अर्थात सनातन परमात्मा, सनातन आत्मा को वेदों का ज्ञान देता है, अर्थात जो ज्ञान का विषय है, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो परमात्मा अपने वेदों का ज्ञान आत्मा को देता है। और तब क्या होता है, जो व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञान चार ऋषियों से ग्रहण करता है, उनका नाम ब्रह्मा होता है। यही कारण है कि महर्षि दयानंद जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत ज्ञान बता रहा हूँ। उन्होंने अपनी ओर से कोई बात नहीं रखी, न कोई उनका विचार स्वविचार, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा जो अपने परमपिता परमात्मा का ज्ञान कहा कि जो चारों ऋषियों को प्राप्त होता है, उनसे जो प्रथम व्यक्ति पढ़ता है जानता है, उनको ब्रह्मा नाम से हम जानते हैं। और महर्षिदयानंद ने कहा ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत। उनका तात्पर्य रहा कि महाभारत युद्ध के पश्चात अगर कोई जो है, या महाभारत युद्ध से पश्चात तो महर्षिदयानंद ने बताया, लेकिन महाभारत युद्ध के जो है पूर्व अगर किसी ने वेदों का गहन अध्ययन किया तो वह है जैमिनी ऋषि। उन्होंने तब महर्षिदयानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो है बातों को, ज्ञान को मैं बता रहा हूँ। और किस पर बता रहा हूँ, अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। समाज वेद के अनुसार चल सके। श्रोताओं, आज का जो विषय वेद और एक ही रास्ता, महर्षिदयानंद ने उस रास्ता को स्पष्ट किया है अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से। आज मनुष्य का कहना है कि वेद कठिन है, हम पढ़ नहीं सकते, समाधान है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। और महर्षि दयानंद जी ने चारों वेदों के आधार पर धर्मशास्त्र मनुस्मृति को प्रमाणित मानकर अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश दिया है। मानव समाज की संपूर्ण उन्नति के लिए पढ़ो सत्यार्थ प्रकाश, विशेषकर उपासना विधि जो तीसरे समुलास चैप्टर में बताई गई है, अर्थात सनातन परमात्मा की उपासना सनातन आत्मा ही करता है। श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ मानव समाज के लिए आज की मांग, पढ़ो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से जो है हम अपने रास्ता को आगे ले चल सकेंगे, जीवन को महान बना सकते हैं। और एकमात्र महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश जो हमारा वेद के एक ही रास्ता है, आज इस वैदिक नाथ के कार्यक्रम के माध्यम से यही हम दर्शना चाहते हैं। श्रोताओं, इस रास्ते पर चलो, अर्थात जो है इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश का मास चल रहा है, हम अंतिम क्षण तक आप पहुँचे हैं। ये मास के जो है अंतिम सप्ताह है, हम आपसे निवेदन करते हैं, सप्ताह तो अंतिम है, मास तो अंतिम है, लेकिन आपका जीवन का एक बहुत बढ़िया प्रारंभ हो सकता है अगर आप सत्यार्थ प्रकाश को अपनाते हैं, उसके विचारों को आप अपने जीवन में उतारते हैं। वेद ही एक रास्ता है, और हम आशा करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ आप इस रास्ते पर चलेंगे। सत्यार्थ प्रकाश का संदेश जो पूरा मास हमने आपको सुनाया, वेद के आधार पर रहा, वेद ही एक रास्ता है। श्रोताओं, आपने ध्यान से सुना, आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सुबह के 6:17 हो रहे हैं, आप रेडियो मोशन के साथ जुड़े हुए, रेडियो सुनिए सी बी की ओर से चंद विज्ञप्तियाँ। मोताइलोंग, वाल्टों, कोलाबू, दीक्वा और बुलेग्रां के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 27 जून को सुबह के 11:30 से शाम के 3 बजे के बीच बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और मोसेलमों एरेमिया कोटडो के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 27 जून को सुबह के 11:30 से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ। सुबह के 6:18 हो रहे हैं, रेडियो मॉरीशस पर आप सभी का पुनः हम स्वागत।

बात करते हैं और दो मिनट में सुबह के 6:20 पर सत्यार्थ प्रकाश माँ के संदर्भ में आप सुनेंगे विशेष वार्ता जहाँ गहलोत राजपूत महासभा के आचार्य बेतुला जी द्वारा, और ये वार्ता मैं लेकर जाएगा सुबह के ठीक साढ़े छः बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं हैं, मौसम का हाल, नुथावा नुलावेनी है। उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह के 7:05 पर विद योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना, और वह प्रोग्राम जारी रहेगा सुबह के 7:05 से दिन के 9 बजे तक। सो श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में देवी और सज्जनों आप सुनेंगे सत्यार्थ प्रकाश माह के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम गहलोत राजपूत महासभा की ओर से, और इसकी प्रस्तुति होगी आचार्य बितुला जी द्वारा।

गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत सत्यार प्रकाश मास के पावन अवसर पर जो इस विशेष कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को आचार्य बितुला एवं श्रीमती तपस्या बितुला जी का सादर सप्रेम नमस्ते। श्रोताओं, सत्यार्थ प्रकाश यह दूसरी समुलास का जो है दोहा चौपाई द्वारा आपको पाठ सुनाया गया। श्रोताओं, आज की विशेष मांग, विशेष परिस्थिति, सत्यार्थ प्रकाश का कितना योगदान हो सकता है आज के हमारे समाज उत्थान में। विशेषकर यहाँ पर मैं संबोधन करना चाहता हूँ मेरी संस्कृति की शक्ति अर्थात मेरी युवा पीढ़ी, मेरे युवा पीढ़ी को मैं संबोधन करना चाहता हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ अभी तो। श्रोताओं, परमपिता परमात्मा ने जब मानव सृष्टि का आरंभ किया, स्वयं परमपिता परमात्मा ने इस मानव सृष्टि का आरंभ युवाओं से किया, अर्थात न बाल्यावस्था न वृद्धावस्था अपितु युवावस्था। परमपिता परमात्मा का पूर्ण विश्वास कि संसार को चलाने वाला अगर कोई है तो वह है युवा, युवा वर्ग। और आज हम भी संपूर्ण शक्ति लगा रहे हैं कि हमारे युवा जो हैं वो हर प्रकार से जागृत हो, हर प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को समझें और स्वीकारें, और जिससे कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में कि वो शक्ति बनी रहे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने उनके जीवन का बताया जाता है, उसका जीवन काल मात्र एक कम 60 वर्ष, 59 वर्ष का उसका जीवन काल रहा, और इनमें से उन्होंने जो है बहुत कम समय में, 20 वर्ष से कम समय में उन्होंने इतना प्रचार किया, इतने महान ग्रंथ लिखा, इतना समाज सुधार कार्य किया। अगर देखा जाए तो किस शक्ति से उन्होंने काम किया तो वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शक्ति से हमारे युवाओं को आज भी ब्रह्मचर्य का पालन हो तो निसंदेह इसका अच्छा परिणाम निकलेगा। जितने हाथ जोड़कर पूजा करने वाले हैं पूरे संसार में, केवल हमारे यहाँ यह शक्ति है, अर्थात ब्रह्मचर्य शक्ति से जो है नई पीढ़ी का निर्माण। श्रोताओं, अभी हम जो हैं सन 2026 में हैं, हमारे ये युवा पीढ़ी, हमारे जो दंपति जो अभी विवाह कर रहे हैं, लड़के लड़की, उनसे संतान उत्पन्न होगी, जन्म लेगी सन 2050 में,

0: यही संतान युवा के रूप में हमारे जो हैं धर्म संस्कृति सभ्यता की रक्षा करेगी। आइए हम सब मिलकर के सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास को गंभीरता से इस संदेश को हम पढ़ें, समझें और उसको क्रियात्मक रूप दें, विशेषकर अपने भोले युवाओं को इसका ज्ञान प्रदान करें। हमारे सनातन वैदिक धर्म संस्कृति में युवाओं का महान स्थान है, महान स्थान है। केवल हमारे यहाँ इस मानव निर्माण की जो प्रक्रिया है ब्रह्मचर्य के आधार पर बताया गया है। आप देखिए पूरे संसार में जब किसी सामान को देखेंगी, ये मेड ऑफ जर्मनी, ये मेड ऑफ इंग्लैंड, ये मेड जो है फ्रांस इत्यादि बताया जाता है। वो सामान मेड बताते हैं कि ये सामान इतनी इसमें जो है ये मजबूती हैं इत्यादि इत्यादि। हमारे यहाँ सामान नहीं, हमारे यहाँ मानव निर्माण की प्रक्रिया बताए गए हैं जो ब्रह्मचर्य आधार हैं। आप सोचो हम इसका पालन करेंगे तो कितना जो है हमारी आने वाली पीढ़ी शक्तिशाली निकलेगी।
1: पूर्ण विद्या प्राप्त कर

सत्यात प्रकाश चौथा समुलास बहुत सुंदर संदेश हैं, उपदेश हैं, आदेश हैं उत्तम समाज निर्माण के लिए। और वहाँ कहाँ से होता है? वह होता है हमारे गृहस्थ आश्रम से। जब हमारे युवक युवती पूर्ण विद्या प्राप्त कर लेते हैं, अब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की ओर बढ़ते हैं। और वो गृहस्थ आश्रम प्रवेश का जो है मूल मंत्र वह यह है, तीन बातें हैं, गुण, कर्म और स्वभाव। आने वाली संतान जो है वो संतान में इतनी सामर्थ्य, चाहे वो विद्या से ले लो, बल से ले लो, हर प्रकार से सामर्थ्य है वो समाज को आगे ले चलने के लिए। और हम अपने बच्चों को उपदेश दें, माता पिता आचार्य, हम लोग उपदेश दें। हम क्या उपदेश दें? देखो हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति की एक एक चीज़ को हम देखते हैं, उनका एक बहुत उनके एक हमारे जीवन के उत्थान के लिए उनका सहयोग है। आप देख लीजिए हमारी जो है, जब विवाह संस्कार में हम थाली को देखें, लोटा को देखें, ये दो जो है वस्तु को देखें। थाली को जब हम देखते हैं, लोटा को देखते हैं, पहले लोटा को लीजिए। आप जो हैं अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को, आप उनको ये बात प्रारंभ से उसको आप बताएं कि बेटी आप ऐसे लड़के को पसंद करना कि जब बारात आएगी द्वार पर तो मैं आपके पिता अर्थात लड़की का पिता वो लोटा जल लेकर के मैं अपने समधी भाई का स्वागत कर सकूं। मेरी बेटी ऐसे लड़के को पसंद मत करना जिससे कि मैं उनका एक लोटा जल से स्वागत न कर सकूं। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है कि आज हमारे बच्चे जो हैं वो अनभिज्ञ हैं, वो नहीं जानते हैं। उनको सब जानना चाहिए कि इसका महत्व क्या है, एक लोटा जो उसका क्या महत्व है। एक पिता की पगड़ी है, वो एक पिता का मान सम्मान है। उस बेटी से हम ये आशा रख रहे हैं कि ऐसे लड़के को वो पसंद करें जब बारात आएगी तो लोटा जल से समधी भाई का स्वागत हो रहा है। और अपने बेटे को हम ऐसे उपदेश दें कि मेरे बेटा, मेरे बेटे जो हैं ये थाली को देखो मेरे बेटा, ये थाली जो है इसमें ये एक शक्ति सदियों से छिपी आ रही है, वह शक्ति यह है मेरे बेटे आप ऐसे लड़की को हमारे जो है परिवार में लाओ जो हमारे वंश को बढ़ाएं, अर्थात जो मैं आपकी माँ, आपकी माँ इस थाली से मैं अपनी बहू का आरती करूँ। मेरे बेटे ऐसे लड़की को पसंद मत करना जिससे कि वो मेरे थाली की आरती को स्वीकार न करें। मेरे बेटे जैसे मेरे पिता जो हैं वो लोटा से स्वागत करते हैं और माँ थाली से। श्रोताओं, सत्यार्थ प्रकाश चौथा समुलास का यह संदेश समझते हैं, अपने जीवन में इसको उतारते हैं और अपने समाज को सुरक्षित रखते हैं। आपने

0: ध्यान से सुना, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सारी 6 बज चुके हैं, पेश है समाचार बुलेटिन। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। प्रधानमंत्री ने संसद में बजट पर हुई बहस का समापन करते हुए कहा कि आज के लिए लिए गए फैसले देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। ये कोई उपहार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की मानव पूंजी में किया गया निवेश है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बजट में शामिल उन उपायों का बचाव किया जिनके तहत मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक वर्ष किया गया है। सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेप्ट बजट 2026-2027 की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सरकार का अनुमान है कि जून 2026 के अंत तक 681.9 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि जीडीपी का 87.8% होगा। सरकार का लक्ष्य इस अनुपात को 2027 तक 85.5% और 2029 तक 80% से नीचे लाना है। मंत्रिपरिषद ने मेलरोज जेल में 9 दिसंबर को ओजी सेल्मो की मृत्यु के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गंभीर खामियों एवं लापरवाहियों को उजागर किया गया। विदेश में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों तथा तटीय रडार चौकियों पर हमले किए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। अन्य रोमांचक मैचों में स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात दी, जबकि सऊदी अरब और केप वर्दे का मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

और अब समाचार विस्तार से। जैसे कि सुर्खियों में हमने बताया, प्रधानमंत्री ने कल बजट पर बहसों का समाहार किया। उन्होंने कहा कि आज लिए गए फैसले देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि वो चिंता

0: चिंताओं और आशंकाओं को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। मॉरिशस के सामने दो विकल्प हैं, या तो अभी नियंत्रित और आवश्यक सुधार लागू किए जाएं, या फिर भविष्य में गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़े। ये कोई उपहार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की मानव पूंजी में किया गया एक निवेश है। कल संसद में बजट के दौरान अपने भाषण में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और लैंगिक समानता मंत्री ने बजट में शामिल उन उपायों का बचाव किया जिनके तहत मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक वर्ष किया गया है। इसमें 6 महीने का पूर्ण वेतन सहित छुट्टियां और 6 महीने का वैकल्पिक आधे वेतन वाली छुट्टियां शामिल हैं। साथ ही पैटर्निटी लीव को बढ़ाकर 6 सप्ताह किया गया है और हर महीने एक दिन का मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल लीव भी शुरू किया गया है। उन्होंने उन आलोचनाओं का भी जवाब दिया जिनमें कहा गया था कि इन प्रावधानों के कारण महिलाओं की भर्ती प्रभावित हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के भेदभाव को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनको सुनते हैं, विवरण अदिति गनावा अवतार का है।
1: Certains ont argué que des employeurs pourraient être tentés de voir dans ces mesures une raison de moins recruter des femmes.
2: उप प्रधानमंत्री आर्या नावामारी कहती हैं कुछ लोगों ने बहस की कि इस कानून में कुछ कारोबार मालिक महिलाओं को नौकरी पर न रखने का एक कारण देखेंगे, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूद हैं। इनमें नौकरी पर हर तरह के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा भी शामिल है। ये कानूनी ढांचा पूरी तरह सक्रिय है, साथ ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन भी भली भांति मौजूद है। एक एम्प्लॉयर कानूनन किसी महिला को मात्र मैटरनिटी लीव को ध्यान में रखकर नौकरी से अलग नहीं रख सकता। इस पर आयोग स्वयं एक जांच स्थापित कर सकता है। किसी भी कारोबार मालिक या उद्योग एम्प्लॉयर को इन सुरक्षा ढांचों का उल्लंघन करने के बारे में गंभीरता से गौर करना चाहिए।

0: उपप्रधान और लैंगिक समानता मंत्री ने बाल संरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने विशेष रूप से चाइल्ड एडॉप्शन बिल पर जोर दिया, जिसे उन्होंने एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार बताया। इस विधेयक का उद्देश्य एडॉप्शन से जुड़े कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और उन प्रक्रियाओं को सरल एवं तेज बनाना है जिन्हें अक्सर बहुत लंबा और जटिल माना जाता है। इस विधेयक के तहत एक समर्पित एडॉप्शन अथॉरिटी की स्थापना का प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर निर्णय बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर लिया जाए तथा दत्तक ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे बच्चों की देखभाल और पुनर्वास व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। एक बार फिर से उनके विवरण अदिति गनावावतार के साथ।
1: इस बजट में एक नए चाइल्ड एडॉप्शन बिल का प्रावधान है। ये एक वृहद सुधार है जिसका इंतजार बहुत समय से विभिन्न सरकारों और बाल सुरक्षा संगठनों द्वारा किया जा रहा था। ये नया कानून स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय एडॉप्शन के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। इससे एक एडॉप्शन अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी जो औपचारिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अवधि कम करने में मदद देगी। इस कानून के तहत बच्चे के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा इस बजट में फॉस्टर केयर विभाग को ज्यादा मजबूत बनाने का भी प्रावधान है। फॉस्टर फैमिलीज के यहाँ बच्चों को भेजने से जुड़े नियमों पर फिर से गौर किया जाएगा ताकि उम्मीदवार भेजने वाले परिवारों का मूल्यांकन आसान हो और योग्य फॉस्टर फैमिलीज के लिए एक उचित नेटवर्क कायम किया जा सके।
0: और जैसा कि शुरुआत में हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सभा में बजट पर बहसों का समाहार किया। इस दौरान उनका ये कहना रहा, आज लिए गए फैसले युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे

0: वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली में प्रस्तावित सुधारों को लेकर वरिष्ठ नागरिकों की चिंता को समझते हैं, लेकिन उनके अनुसार देश के सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प है, या तो अभी नियंत्रित और सुविचारित सुधार किए जाए या फिर निकट भविष्य में एक गंभीर संकट का सामना करना पड़े। उनको सुनते हैं।
1: Let me speak directly to our elderly citizens. I know that the pension is not just a line in the budget. We all know. It is not just a monthly payment. It is security. It is dignity. It is recognition. I understand the anxiety that was expressed. There were a lot of misinformation as well. And in a democracy, Madam Speaker, when people speak, they are worried. A responsible government must listen. We took the concerns seriously and we decided to discard the means test because of that. But listening doesn't mean abandoning the truth. Listening doesn't mean pretending that the problem has actually disappeared. It hasn't. The problem remains. The demographic pressure remains. The fiscal pressure remains. The need for reform remains. This is our responsibility. The real choice before the country is not between reform and comfort. That choice does not exist. The real choice is between a controlled reform today or a brutal crisis tomorrow.
0: डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी याद दिलाया कि जिस संकट का खतरा आज देश पर मंडरा रहा है, उसकी जड़ें पूर्व सरकार के फैसलों में हैं। उनके अनुसार 2019 के चुनावों के बाद वृद्धावस्था पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 13,500 रुपये किया गया, जबकि कई रिपोर्टें पहले ही चेतावनी दे चुकी थीं कि ये कदम लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं होगा। इस बढ़ोतरी को वित्त पोषित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री की सरकार ने सामाजिक योगदान कर यानी कि सीएजी लागू किया था। प्रधानमंत्री का दावा है कि इस राशि का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के अनुसार नहीं किया गया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सुनते हैं।
1: They knew, they had reports upon reports, I will quote Pravin Jagnauth in a minute. They knew that the pension system was already unsustainable. They put the country at risk, they put the elderly at risk, they couldn't give a damn, they need to win the election. And in its 2020 budget, they discontinued the contributory pension under the National Pension Fund and introduced the CSG, which is a tax. And worse, Madam Speaker, most of the funds raised under the CSG has in fact been siphoned off and diverted to finance expenditure, but not pensions. This is what they did with the money of workers, of people who have worked all these lives. These people are giving us lessons now.
0: खबरों में आगे, सार्वजनिक ऋण बजट 2026-2027 की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। सरकार का अनुमान है कि जून 2026 के अंत तक ये 681.9 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि जीडीपी का 87.8% होगा। एक वर्ष पहले के 88.5% की तुलना में थोड़ा कम है। सरकार का लक्ष्य इस अनुपात यानी कि रेशियो को 2027 तक 85.5% और 2029 तक 80% से नीचे लाना है। इस दिशा को सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन इसकी सफलता आर्थिक विकास सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन और अभी भी अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। मॉरिशस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव दृष्टि सिंह रामदेनी के अनुसार, सार्वजनिक कर्ज में ये कमी निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि उनका मानना है कि आर्थिक पुनरुद्धार से जुड़े उपायों को तेजी से लागू करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी पर कर यानी कि शुगर टैक्स और समानांतर आयात पैरेलल इम्पोर्टेशन जैसे कुछ मुद्दों पर सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संवाद जारी रहना चाहिए ताकि व्यवसायों की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। दृष्टि सिंह रामदेनी को सुनते हैं, जिनसे बात की शैली न्यबन्य विवरण अदिति गनावा अवतार का है।
2: एमसीसीआई के महासचिव दृष्टि सिंह रामदेनी कहते हैं, निजी सेक्टर के स्तर पर जब वृद्धि की बात

0: होती हैं तो उसका सीधा संकेत निर्यात सेक्टर की तरफ होता है तथा साथ ही वितरण सेक्टर पर ध्यान दिया जाता है जो बास्केट ऑफ पेमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देता है और जो असल में निवेश के लिए भी एक प्रमुख चालक है क्योंकि बिक्री इन्हीं संस्थानों के जरिए होती है। लेकिन अब कई अन्य नए सेक्टर हैं जिन्हें पब्लिक प्राइवेट साझेदारी की आवश्यकता पड़ेगी जैसे ब्लू इकोनॉमी, बंदरगाह सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि, जिसमें काफी बड़ी संभावनाएं पाई जाती हैं। लेकिन इससे जुड़े नेटवर्क और आवश्यक टेक्नोलॉजी तथा जरूरी निवेश स्थापित करने के लिए निजी सेक्टर के योगदान की आवश्यकता होगी ताकि ऐसा करते हुए सार्वजनिक ऋण पर और ज्यादा दबाव न पड़े। इससे इस महत्वाकांक्षी प्रयास को जरूरी समर्थन मिलेगा।
1: अर्थशास्त्री मनीषा डुखोनी का कहना है कि जीडीपी के अनुपात में सार्वजनिक ऋण में 0.7% अंक की कमी ये दर्शाती है कि सरकार ने राजकोषीय संतुलन यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन की दिशा में वास्तविक प्रयास किए हैं। हालांकि उनका मानना है कि चूंकि सार्वजनिक कर्ज अभी भी जीडीपी के 80% से ज्यादा हैं, आर्थिक वृद्धि दर लगभग 3% रहने की उम्मीद है और ब्याज दरें अभी भी ऊंची हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बजट की एक प्रमुख योजना फिलहाल स्थगित होने के कारण कुछ अनुमान आगे चलकर बदल सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में जारी तनाव ऊर्जा और आयात की लागत बढ़ा सकता है, लेकिन यदि सरकार द्वारा घोषित सुधार जैसे कि स्टार्टअप एक्ट, AI, विशेष औद्योगिक क्षेत्र और ऊर्जा संक्रमण एनर्जी ट्रांजिशन सफलतापूर्वक लागू किए जाते हैं तो वे दीर्घकाल में आर्थिक विकास को मजबूत कर सकते हैं और अंततः सार्वजनिक कर्ज का बोझ कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। मनीषा डुखोनी को सुनते हैं जिनसे बात की शैली निर्बन ने, विवरण अदिति गनवा अवतार का।
0: अर्थशास्त्री मनीषा डुखोनी कहती हैं वृद्धि से आय जरूर बढ़ती है लेकिन इसके साथ घाटा भी जुड़ा होता है जिसका अनुभव हम अभी कर रहे हैं। देश का खर्च आज उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा है। एक तरफ हम अपने उपभोग का ज्यादातर भाग आयात करते हैं तो दूसरी तरफ हम पर्यटन और वित्तीय सेक्टरों पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। पर्यटन सेक्टर के लिए भारी आयात होता है तो इससे करंट डेफिसिट कम होता जा रहा है। इससे दुर्भाग्यवश मॉरिशन रुपए का भाव कम हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ निर्यात को लेकर भी हमारी वृद्धि ज्यादा नहीं है जिससे भी रुपए का भाव गिर रहा है और साथ ही हमारा विदेशी ऋण बढ़ता जा रहा है।
1: ये बजट आर्थिक परिवर्तन पर भी विशेष जोर देता है, खासकर स्टार्टअप्स, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि SMEs और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के माध्यम से। आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस भी मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है। और यदि इस बजट की प्रमुख घोषणाओं पर नजर डालें तो सरकार ऐसे क्षेत्र को नई गति देना चाहती है जिसे वो देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ मानती है। जेनी येलापा, अदिति गनावा अवतार।
0: बजट 2026-2027 में देश के आर्थिक बदलाव की रणनीति में छोटे और मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी गई है। इसका मकसद ऐसी नई पीढ़ी की इनोवेटिव और कम्पेटिटिव कंपनियों को बढ़ावा देना है जो नौकरियां पैदा कर सकें और विकास को आगे बढ़ा सकें। मुख्य उपायों में सरकार ने एक स्टार्टअप रिवोल्यूशन की घोषणा की है। ये पहल कई स्तंभों पर आधारित है जिसमें एक स्टार्टअप एक्ट की स्थापना, एक पब्लिक प्राइवेट स्टार्टअप काउंसिल का गठन और कद्दो के भावी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक खास हब बनाना शामिल है। नई कंपनियों के विकास में मदद के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संचालित एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर स्कीम की भी योजना है। टैक्स के मामले में स्टार्टअप को एक बड़ा फायदा मिलेगा। कामकाज शुरू होने के समय से 10 साल तक इनकम टैक्स से उन्हें छूट दी जाएगी। अन्य मुख्य उपायों में एक डिजिटल पेटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना और अंतर्राष्ट्रीय

0: स्तर पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकों के अनुरूप स्टार्टअप के लिए एक खास ऑपरेशनल फ्रेमवर्क तैयार करना शामिल है। एसएमईज को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है। बजट में एक खास एसएमई बिल शामिल है जिसका मकसद कारोबार के माहौल को आसान बनाना और कम्पेटिटिवनेस बढ़ाना है। जानकारी आसानी से मिल सके इसके लिए एक डिजिटल सिंगल विंडो बनाई जाएगी जो मदद, ग्रांट और फाइनेंसिंग स्कीमों को एक साथ लाएगी। इसके अलावा रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले एसएमईज के लिए गाड़ियों पर कुछ ड्यूटी फ्री बढ़ाई जाएगी। आखिर में महिला कारोबार मालिकों के लिए खास मदद की घोषणा की गई है जिसके तहत कई मिलियन रुपए की फंडिंग से एक खास इंक्यूबेटर बनाया जाएगा। इन उपायों के जरिए सरकार मॉरिशस को एक क्षेत्रीय इनोवेशन हब के तौर पर स्थापित करना चाहती है और साथ ही एसएमईज के योगदान को मजबूत करना चाहती है जो पहले से ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: मंत्रिपरिषद ने मेलगोज जेल में 9 दिसंबर को ऑजी सेल्मो की मृत्यु के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गंभीर कमियों और लापरवाहियों को उजागर किया गया है। सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार एक खास समिति का गठन करेगी जो आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। विस्तार। कैबिनेट ने मेलगोज जेल में 9 दिसंबर 2025 को कैदी ऑजी सेल्मो की मौत की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व पुणे जज पोलाम शांगलिन की अध्यक्षता में इस आयोग ने जेल व्यवस्था में कई गंभीर खामियों की ओर इशारा किया। इनमें कर्मचारियों की कमी, मादक पदार्थों की तस्करी, कथित भ्रष्टाचार, चिकित्सा सेवाओं की कमजोर व्यवस्था और निगरानी तंत्र की कमियां शामिल हैं। आयोग ने जेल प्रशासन में व्यापक सुधार, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, पुनर्वास कार्यक्रमों को मजबूत करने, भ्रष्टाचार और नशीले पदार्थों की तस्करी पर सख्त नियंत्रण, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं तथा स्वतंत्र शिकायत और निगरानी प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गृह मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। और अब चलिए सुनते हैं मंत्रिपरिषद में लिए गए अन्य फैसलों का ब्यौरा अगली रिपोर्ट में। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सभा में क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने को मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार बलात्कार के मामलों में आरोपी ये दलील नहीं दे सकेगा कि घटना के समय वो पीड़िता का पति था, चाहे विवाह सिविल हो या धार्मिक। इसके अलावा घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट 2026 और उससे संबंधित नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इसके तहत सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर के लिए आवेदन डीपीपी के पास किया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी जानकारी दी कि यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 जो 1 जुलाई को लगाया जाने वाला था अब 6 से 9 दिसंबर 2026 तक मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने जायजा लिया कि 23 जून 2026 को सऊदी अरब की मंत्रिपरिषद ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस्लामी मामलों, दावत एवं मार्गदर्शन मंत्री या उनके प्रतिनिधि को मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के साथ मस्जिदों के सहयोग संबंधी एक एमओयू पर चर्चा और हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रस्तावित समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सऊदी अरब में मॉरिशस के राजदूत और सऊदी अरब के इस्लामी मामलों, दावत और मार्गदर्शन मंत्रालय के बीच बातचीत जारी है। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी जुलाई 2026 में 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सह मेज़बानी करेगी। इनका उद्देश्य खतरनाक कचरे के अवैध सीमा पार तस्करी पर रोक लगाना तथा कर और सीमा शुल्क से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच क्षमता को मजबूत करना है। कैबिनेट ने इसका भी जायजा लिया। विदेश की खबरों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों

तथा तटीय रेडर चौकियों पर हमले किए। ये कार्रवाई वाशिंगटन द्वारा तेहरान पर एक मालवाहक जहाज पर हमला करने का आरोप लगाने के बाद की गई, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध विराम को गंभीर झटका लगा है।

मौसम की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और पूर्व तथा ऊंचाइयों पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दिन के दौरान बादल घेराएंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर बारिश हो सकती है। दिन के दौरान कभी कभार मूसलाधार बारिश हो सकती है और बादल भी गरज सकते हैं। कुछ इलाकों में कोहरे छाए रह सकते हैं। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। साथ में दक्षिणी एवं पश्चिमी लगूनों से भी दूर रहें। आज के लिए सूर्योदय 7:45 बजे हुआ, सूर्यास्त होगा 5:40 पर।

0: खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने संसद में बजट पर हुई बहसों का समापन करते हुए कहा कि आज लिए गए फैसले देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये कोई उपहार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की मानव पूंजी में किया गया निवेश है। उन्होंने बजट में शामिल उन उपायों का बचाव किया जिनके तहत मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक वर्ष किया गया है। सार्वजनिक ऋण बजट 2026-2027 की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सरकार का अनुमान है कि जून 2026 के अंत तक ये 681.9 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा जो जीडीपी का 87.8% होगा। सरकार का लक्ष्य इस अनुपात को 2027 तक 85.5% और 2029 तक 80% से नीचे लाना है। मंत्रिपरिषद ने मेलघोज जेल में 9 दिसंबर को ओजी सेल्मो की मृत्यु के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गंभीर कमियों एवं लापरवाहियों को उजागर किया गया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों पर हमले किए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। अन्य रोमांचक मैचों में स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात दी जबकि सऊदी अरब और केप वर्दे का मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। 6:57 हो चुके हैं। बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है फैजन के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शिव प्रकाश मंदिर रोड स्थित मिल थ्रियुले में 67 साल के 67-year-old श्री नंकेश्वर शंकर जो मिलो से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती शंकर के मकान शिव प्रकाश मंदिर रोड स्थित मिल थ्रियुले से उठाकर दाह संस्कार के लिए SSLN थ्रियुले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे अति 3 PM। जयपाल रोड प्लैंडी पपाई में 67 साल की 67

Yo All Shri Virasami Chengen, Shri Virasami Chengen, जो नादेन से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान जयपाल रोड प्लेंडीपापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेंडीपापाई की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। लेटोलेन रोजबेल में 79 साल की 79-year-old बीबी अलीमा मियाजन, बीबी अलीमा मियाजन जो बीबी अलीमा से जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे भगालू जाकिया के मकान लेटोलेन रोजबेल से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। होटवायाल कोंगोमा में 98 साल की 98-year-old श्रीमती भावंती सीओ पैदाशी नाम सुवारत है, जो भावंती से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान होटवायाल कोंगोमा से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआ मौसों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रामफल लेन मोताय ब्लॉन्च में 90 साल की 90-year-old बीबी अहेशा भकू पैराशना मोहन जो आईसू से जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 10 बजे इनके मकान रामफल लेन मोताय ब्लॉन्च से निकालकर दफनाने के लिए मोताय ब्लॉन्च का ही कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। शिवाजी रोड मेलगोज में 77 साल की 77-year-old श्री सोनालाल सुरजन जो धुन से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान शिवाजी गली मेलगोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाए ब्लॉन्च की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। वैजी रोड गुडलैंड में 80 साल की 80-year-old श्रीमती सेलुन मोदी मुटु पैदाशी नाम मोदी मुटु जो अमरू से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 1 बजे के बेटे कोविलेन मोदी मुटु के मकान वैजी रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। लाबोर स्ट्रीट बोआरोज पॉम्पलेमूस में 76 साल के 76-year-old श्रीमनलाल रामसर जो आनंद बली से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे राम सिंह रामसर के मकान लाबोर स्ट्रीट बोआरोज पॉम्पलेमूस से उठाकर दाह संस्कार के लिए पॉम्पलेमूस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मैडम लुलू रोजबेल में 75 साल की 75-year-old श्री मुनेश्वर रामनोहर जो ईश्वर से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे श्री महेंद्र रामनोहर के मकान मैडम लुलू रोजबेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए मागजानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। अविनी माइकल लील पाई में 68 साल के 68-year-old श्री कृष्णा गणेश जो माजी से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे अश्ली गणेश के मकान अविनी माइकल लील पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। साइडिंग रोड न्यू ग्रोव में 83 साल की 83-year-old श्रीमती गौरी गोबिन पैदाइश नाम लूफो जो जामुंटी से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके बेटे संदेश गोबिन के मकान साइडिंग रोड न्यू ग्रोव से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्राणमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। मामबहाल रोड बुआशेरी में 72 साल की 78-year-old श्रीमती भानुमती माताओ

जो भानु से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 10 बजे इनके भाई विजय माताओं के मकान मामबहल रोड बुआशेरी से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांव बुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आते 10 AM। नंबर 136 शातदू स्ट्रीट थॉकबॉ।

थियाजरीन के डेरबाजीन की पत्नी श्रीमती दयनयंती रामनाथ के मकान श्रीमती दयनयंती रामनाथ के मकान नंबर 136 शातुडो स्ट्रीट थौकबा पोटरी से उठाकर दाह संस्कार के लिए थौकबाओ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ हाफ पास्ट 1 PM। कालीमाई गली खुशनुमा में 63 साल की 63 ओल्ड श्री केपाचर्या ठाकुर सिंह जो मितानंद से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे की पत्नी श्रीमती देवयानी ठाकुर सिंह के मकान कालीमाई रोड खुशनुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए खुशनुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी आती 10 AM। रॉयल रोड बिलवेडिया में 42 साल की 42 ओल्ड श्रीमती ज्योति चतुआ पैदाशी नाम सुकन जो करिश्मा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो है आज दिन के 11:15 इनके पिता श्री राजन सुकन के मकान खुटवायाल बिलवेडिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कौंडे मास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ क्वार्टर पास्ट 11 AM। श्वाजी रोड पोजिटिव फ्लाक में 81 साल की 81 ओल्ड श्रीमती निराधा रामा पैदाइश नाम सिमोती जो दिलावटी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी बेटी सान्यो बंदीप के मकान श्वाजी रोड पोजिटिव फ्लाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। काली लेन बॉबू में 80 साल के 80 ओल्ड श्री हरिबस थुप सिंह जानकी जो डोडो से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान काली लेन बॉबू से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाई सैंपियर बॉबू की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। और रिवर व्यू लेन वेडर में 75 साल के 75 ओल्ड श्री राजेश्वरन पिले नलाताओं भी जो इंदिरन से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सेवाक्यों वदी नलाटोंबी के मकान रिवर व्यू लेन वेडर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्तों सैंपियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे 2 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस शनिवार 27 जून को नुवेल दे कुवैत में दिन के 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे। लैबुआ के नर्मदेश्वर काली माता मंदिर द्वारा शनिवार 27 जून को शाम के 6 बजे लश पूजा, सप्ता माता पूजा, काली माता दर्शन का आयोजन किया गया है।
2: सुबह के 7:08 हुए हैं। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। फीफा विश्व कप ने अपना जादू दिखाया कि वर्दे बना बन गया अफ्रीका और पूरे विश्व का नया चहेता, नया चेहरा और नई उमंग, नई आशा। 3 मैचों में 3 ड्रॉ के वर्दे पहुंच गया फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में।

तो फ्रांस के बालों दो विजेता उस्मान देम्बेले ने 32 मिनटों के अंदर एक हैट्रिक मारकर नया इतिहास रचा। पर सबसे पहले बता दें कि सुबह 7 बजे से यानी कि अभी से लेकर 7 मिनट पहले इसी समय ग्रुप जी में 2 मैच खेले जा रहे हैं और इन 2 मैचों में 1 गोल बन भी चुका है। सो इस समय इजिप्ट 1-0, न्यूजीलैंड 0, बेल्जियम 0। इजिप्ट ने 1 गोल स्कोर किया है, महमूद सबेर का ये गोल खेल के 5वें मिनट पर। सो इजिप्ट 1-0, ग्रुप जी के अंतर्गत ये 2 मैच इसी समय खेले जा रहे हैं। न्यूजीलैंड 0, बेल्जियम 0। और बता दें कि कल तड़के 1 बजे ग्रुप एल में क्रोएशिया का मुकाबला गाना से और इंग्लैंड खेलेगा पनामा के विरुद्ध। ये मैच आज रात नहीं बल्कि कल सुबह 1 बजे ये 2 मैच खेले जाएंगे। सो यदि विश्व कप के प्रथम 32 क्वालिफाइड टीमें सामने लगभग आ गई हैं तो बेस्ट ऑफ 8 के लिए घड़ी की सुइयां अभी भी टिक टिक कर रही हैं। कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर सोमवार से लास्ट 32 राउंड शुरू। सो आपको बता दें कि नतीजे विस्तार से सुनिए। इस समय इजिप्ट 1-0, न्यूजीलैंड 0, बेल्जियम 0। कुछ और नतीजे सुनिए जो आज सुबह जो मैच खेले गए। केप वर्दे 0, सऊदी अरब 0, गोल तो न बन पाया, 3 मैचों में 3 ड्रॉ। और स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से परास्त किया। इस हार के बल पर यूरुग्वे बाहर हो गया तो स्पेन पहले से क्वालिफाइड था और केप वर्दे बच गया 3 मैचों में 3 ड्रॉ, 3 अंक। बधाई हो बधाई केप वर्दे, केवल 5 लाख की जनसंख्या के साथ ये अफ्रीका का ये शेर पहुंच गया है लास्ट 32 राउंड में। हार्दिक बधाई। केप वर्दे 0, सऊदी अरब 0, यूरुग्वे 0, स्पेन 1। इस मैच का ये मात्र गोल स्कोर किया खेल के 42वें मिनट पर एलेक्स बेना ने, स्पेन की जीत हुई 1-0 से। फिर ग्रुप जी में इसी समय इजिप्ट 1-0 से आगे हैं और फिर जो अन्य मैच कल खेले गए उनमें पराग्वे 0, ऑस्ट्रेलिया 0, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए क्वालिफाइड हैं। यूएसए की हालांकि कल हार हुई, टर्की ने अपने आखिरी मैच में यूएसए को 3-2 से परास्त किया। कल ही जापान और स्वीडन ने मैच ड्रॉ किया 1-1। नेदरलैंड्स की जीत हुई 3-1 से ट्यूनिशिया के विरुद्ध। स्कीरी का एक ओन गोल, ब्रॉबी ने फिर एक गोल स्कोर किया और यान वान हेक का एक गोल नेदरलैंड्स की ओर से। नेदरलैंड्स क्वालिफाइड है, 3-1 से उसकी जीत हुई। जापान भी आगे बढ़ पाया। ग्रुप आई में फ्रांस ने कल नॉर्वे को 4-1 से परास्त किया। दोनों टीमें पहले से क्वालिफाइड थी और जो उम्मीदें रखी गई थी, जो क्लैश की उम्मीद की जा रही थी अर्लिंग हैलैंड और किलियन एम्बापे के बीच, ऐसी कोई भी जंग नहीं हुई क्योंकि नॉर्वे ने अपने टॉप स्ट्राइकर अर्लिंग हैलैंड को आराम करने दिया और किलियन एम्बापे ने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन इसमें बालों दो विजेता उस्मान देम्बेले ने एक के बाद एक 3 गोल स्कोर किए खेल के 7वें मिनट पर ही। फिर 20वें पर और 32वें मिनट पर 3 गोल, फ्रांस 3-0 से आगे। और आखिर में इंजुरी टाइम में डिजिरे दुए ने एक और कील ठोंकी, अंततः नॉर्वे की हार हुई 9-1, फ्रांस 4। दोनों टीमें पहले से क्वालिफाइड थी और इस कारण उस्मान देम्बेले ने एक नया इतिहास रचा है। वर्ल्ड कप 1994 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि 32 मिनटों के अंदर किसी खिलाड़ी ने 3 गोल स्कोर किए हैं। सो आज सुबह फ्रांस की जीत हुई, फ्रांस 4-1 से ये मैच जीत गया। इसी में सेनेगल ने इराक को 5-0 से पछाड़ा, सेनेगल की भी ये पहली जीत है। जियागा इस्माइल असा गेये और एनजीआई का 1-1 गोल। सो सेनेगल को अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा, वो लास्ट 8 में अभी भी बेस्ट ऑफ 8 में आ सकता है। सो कल आखिरी मैच खेले जाएंगे, आखिरी ग्रुप मैच, तब जाकर बेस्ट ऑफ 8 के बारे में पता चल पाएगा। इतना सब कुछ कल के मैचों को लेकर। एक बार फिर बता दें कि इस समय जो मैच खेले जा रहे हैं उसमें इजिप्ट की जीत हो रही है 1-0 से ईरान के विरुद्ध, न्यूजीलैंड 0, बेल्जियम 0। खेल का ये 10वां मिनट है और आज रात बल्कि कल सुबह 1 बजे क्रोएशिया वर्सेस गाना, पनामा

0: का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इतना सब कुछ वर्ल्ड कप को लेकर, इन सब के बारे में आपको हम समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर मॉरिशस की रेस्ट जूनो वेटेरन फुटबॉल टीम सेशल्स में एक त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही है। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के संदर्भ में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। सो पहला मैच कल संडे को खेला जाएगा रेस्ट जूनो और प्रालें इन आइलैंड के बीच। फिर दूसरा मैच 1 जुलाई को सेशल्स लेजेंड्स के विरुद्ध और द वन एंड ओनली गोल्डन स्टार्स फुटबॉल क्लब स्वर्गीय अजय भिखारी के सम्मान में स्वानसी फुटबॉल क्लब के सहयोग से कल रविवार 28 जून की शाम एक फुटबॉल उत्सव आयोजित कर रहा है। कल दिन के 2 बजे प्रांडीपा पाई के फुटबॉल मैदान में क्रिस्टल बीच रिजोर्ट होटल और स्वानसी FC के बीच एक पहला मैच खेला जाएगा। फिर रेडिसन ब्लू अजूर होटल वर्सेस सेलेक्शन प्रांडीपा पाई। फीफा वर्ल्ड कप जारी है। आज सुबह 7 बजे से 2 मैच खेले जा रहे हैं। इजिप्ट 1-0, न्यूजीलैंड का मुकाबला इस समय बेल्जियम से हो रहा है। सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: Ministry of Labour and Industrial Relations और MBC के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नू थावाई नू लावेनिया एग्रीकल्चर की सिक्तिया में निधि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जन रॉयल रोड मौताबा में पावल जला 4 मेल ग्रेड 2 फील्ड क्रॉप वर्कर्स खोजता आपकी कासों का रिखातीर टेलीफोनी करिया 52 54 40 66। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 मानी की 31 जुलाई 2026। एग्रीकल्चर के ही सेक्टर में तरशीश हाइड्रो फार्म कंपनी लिमिटेड जन कमलोन रोड पोंकोलविल में पावल चला 4 मेल ग्रेड 2 फील्ड क्रॉप वर्कर्स खोजता एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया इन नंबर पर 59 37 24 36। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में किसविच स्पाइसेस लिमिटेड जन रॉयल रोड लावेंटर में पावल जाला 3 मेल पैकिंग ऑपरेटर्स खोजता जिनकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 52 51 77 42 नता हौजे पहुंच जाइया। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 16 जुलाई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सेक्टर में ANT एंटरप्राइज लिमिटेड जो रॉयल रोड कारोलिन में पावल जला 2 टेलर्स खोजता जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 57 07 20 75 नता 59 62 17 32 नता रॉयल रोड कारोलिन ही जाके अपन अर्जी भर दिया। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में AHP हमिद कंपनी लिमिटेड जन बस गीत रोड ब्रिजेवेजिया में पावल जाला 1 मेल ग्रेड 2 वेल्डर खोजता जिकर फॉर्म 3 बाटे और 1 मेल हेल्पर खोजता जिकर फॉर्म 3 संगे 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे फर्नीचर पेंटिंग में एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 58 84 97 60 59 10 43 92 नगबा हौजे जाके अपन एप्लीकेशन कर दे। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 जुलाई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में Alcedo लिमिटेड जोन मोह मास्काल पेटी राफ्रे में पावल जाला एगो टेक्नीशियन खोजता और ई भी याद रखिया कि एगो ट्रेनिंग देवल जाए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फिशिंग पर्पस खातिर एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न त जस्ती जानकारी खोजबा त टेलीफोनी करिया 262 79 79 न त 57 77 70 89। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 9 दिसंबर

2026 मैन्युफैक्चरिंग के ही सिक्ते में इंटेग्रिटी मेटल वर्क्स लिमिटेड जिन ओल्ड केडी रोड पोर्ट्रीस में पावल चला 5 मेल टर्नर्स खोजता जिनकर 5 से 10 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे 5 मेल फिटर्स जिनकर 5 से 10 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और 5 मेल सीएनसी ऑपरेटर्स जिनकर 5 से 10 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 206-33-33 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 27 मानी के 26 जून 2026 कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में सत्यम देव इमांडी जन क्रीमेशन रोड रोशनवा में पावल जाला एगो मेल हैंडी वर्कर खोजता जेकर 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 52-58-04-05 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026 रिटेल ट्रेड के सेक्टर में टी सिंह कंपनी लिमिटेड जन लो 85 एवेन्यू एग्लावेटिये मोसेलमा कॉइटिये ब्रह्मस्थान फ्लैग में पावल जाला 15 फीमेल हैंड पैकर्स खोजता जिनकर एससी संगे एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न तो जस्ती जानकारी खोज पर तो टेलीफोनिक करिया 57-47-51-59 न तो 52-51-26-20 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 27 जून 2026 हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में किसविच स्पा एंड सैलून लिमिटेड जन रॉयल रोड लावेंटियर में पावल जला दुगो ब्यूटिशियंस खोजता जिनकर दो बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 52-51-77-42 नतहौजे पहुंच जाइया एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 27 जून 2026 ऑटोमेटिव के सेक्टर में गाराज ऑटो रिपेयर लिमिटेड जन शिवाला रोड मोगो में पावल जला दुगो मेल मोटो व्हीकल मैकेनिक्स खोजता जिनकर दो बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 57-87-29-19 न तो अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है krishnaramphal@gmail.com एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026 क्लीनिंग सर्विसेज के सेक्टर में ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज लिमिटेड जन रॉयल रोड कासी पोर्ट्रीस में पावल जला 34 मानी की 34 फैक्ट्री ऑपरेटर्स खोजता जिनका सीपीयू बाटे और खोजता 10 गुड्स व्हीकल ड्राइवर्स जिनकर वैलिड गुड्स व्हीकल लाइसेंस बाटे और खोजता 10 प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स एप्लीकेशन करे खातिर लेंदी से सुखलेख फजीर 8 बजे से सांझ के 4:00 लेख टेलीफोनिक करिया 207-2000 न तो अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है humancapital@dcs.mu एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026 जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजा था हुआ तो ई भी सुनते चला कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एगो ईईजी टेक्नीशियन खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://psc.gov.mu.org/ एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 29 मानी की 29 जून 2026 मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ एंड वेलनेस एगो बायोमेडिकल इंजीनियर और सीनियर बायोमेडिकल इंजीनियर हेल्थ खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://psc.gov.mu.org/ एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एगो मैनेजर XBRL खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://psc.gov.mu.org/ और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026 साथ में पुलिस डिपार्टमेंट एगो केटरिंग सुपरवाइजर खोजता

0: আৰু আপুনি কাছকাৰী খাতিৰ ই ৱেবছাইট ভিজিট কৰিয়া https://psc.gov.mu.org/ আৰু আপুনি কাছকাৰী কি অন্তিম তাৰিখ হা 6 জুলাই 2026 প্ৰাইভেট হাউছহোল্ড কি সেক্টৰ মে প্ৰভিডেন্স কে ৰিজন খাতিৰ এগো হাউছমেট খোজল জাতা আপুনি কাছকাৰী খাতিৰ টেলিফোনে কৰিয়া EIC কাচে মিলিতে কে নম্বৰ পৰ 435 55 30 435 33 52 তা এইৰাহল মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যনছ আৰু MBC কে মিলল জুলল সহযোগ সে নো ট্ৰাভাই নো লাভেনিয়া।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: Nous travail, nous l'avenir, magazine de l'emploi, qui est lié à tous chaque côté de ce dernier mois d'été. Ce qui s'est passé, c'est que tu as David Sajino, ça sera ce qui est marié, puis avec Dosto, et que tu as fait ce qui est déjà, je prête à Singa, puis à Varane, Namaskar, very good morning to everybody, good morning Mauritius. Radio Mauritius qui l'est rompé, on a gagné, hé, l'hératé, on a chelté, oui. सुबह का नजाना प्रोग्राम लेकर यो मस्त मॉर्निंग शो रेडियो मॉरिशस की लहरों पे एवरी सैटरडे। जी हाँ, 7 से 9 बजे के बीच यह सेगमेंट चलता है सुबह का नजराना, जहाँ पर होती है मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी गाने, लवली म्यूजिक। यस, और बेशक हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस समय बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए। थैंक यू जी। नया दिन, और बेशक आज अनुमान लगाया जाता है कि आज भी जोरों की बारिश होगी, मूसलाधार बारिश भी हो सकती है इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग एज वेल। कल सुबह भी काफ़ी बारिश हुई थी, कल आपको याद है ना, कल था फ्राइडे मॉर्निंग, बादल गरज रहा था, बिजली चमक रही थी, इट वॉज रेनिंग सो हार्ड, यू नो इट वॉज पोरिंग वेरी हार्ड। कल दक्षिण में खूब बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, पर वो बारिश एकाएक रुक गई दिन के 10 बजे और धूप मुस्कुराने लगी। क्या बात है, क्या बात है, ये मौसम भी ना, और पहली बार सर्दी के मौसम में हमने सुना कि बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। नमस्ते, यू नो यस, तो ये सब क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग कारण मौसम में परिवर्तन दुनिया भर में हो रहा है और हमारे मौसम को भी प्रभावित कर रहे हैं। सो दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज, यू नो, कि सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर्स काफ़ी डाउन है, और ऐसे में जोरों की बारिश, बादल का गरजना, क्या बात है। सुबह के 7:26, यस, चलिए शुरू करते हैं इस मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना प्रोग्राम को आज के चिंतन के साथ, और इस चिंतन को आप सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी द्वारा।
3: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
4: दूसरों की स्वीकृति जरूरी नहीं होती है, खुद को स्वीकारना अधिक जरूरी होता है। हर व्यक्ति अलग सोच रखता है, सबको खुश करना संभव नहीं होता। अपने मन को सुनिए, आत्मसम्मान मजबूत बनता है।

इस गीत में कितने संदेश है, हैं कि नहीं। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कहाँ गई इंसानियत, आजकल हम देख रहे हैं कि चारों ओर वायलेंस ही वायलेंस, हिंसा ही हिंसा। लोग

छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते, इतना गुस्सा करते हैं, मारपीट हो जाती है। ओह नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी इंसान हैं और इंसान होने के नाते एक दूसरे के प्रति हमें हमदर्दी जताना चाहिए, हमें प्यार दिखाना चाहिए, अपनापन दिखाना चाहिए। काश हर इंसान को ये संदेश मिल जाए तो क्या बात है। सुबह के 7:34, आए हाय यहाँ का मौसम कितना प्यारा है। जी हाँ, MBC मौका में तो धूप मुस्कुरा रही है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है और ऐसे में आप लोगों का साथ है, ओए होए होए क्या बात है, सोने पे सुहागी वाली बात। क्या मौसम आया है। और जब मौसम इतना प्यारा होता है तो दिल करता है कि झूमे नाचे गाएं, क्योंकि दोपहर बाद में तो बारिश होने वाली है। बारिश भी चाहिए क्योंकि हमारे जलाशय में जो पानी की मात्रा है वो कम होता जा रहा है, सो वी नीड सम वाटर एज वेल। अभी के लिए मौसम इतना प्यारा है तो हम क्यों चुप रहे। चलिए अभी झूमते हैं, गाते हैं आप लोगों के साथ उस दौरान साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है अन्नाड़ी।

मौसम का क्या है दोस्तों, मौसम तो बदलता रहता है हर पल हर क्षण। हम तो हैं यहाँ पर हर शनिवार की भांति आ जाती है आप लोगों का साथ देने के लिए। मैंने और हमें पता है कि आप भी बहुत बी सर्विस इंतज़ार करते हैं कि अब ये सैटरडे आए और हमसे बातें हो। लाइन खुली हुई है पर अभी हम डेडिकेशन नहीं लेंगे, डेडिकेशन ले रहे हैं 8 बजे के बाद, ठीक है। सो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक है, परिवार में सब कुछ कुशल मंगल है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। होता है कभी कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहते हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया या कोई काम अधूरा रह गया तो आप अपसेट हो जाते, निराश हो जाते हैं। क्या करें, जीवन इसी का नाम है, सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, एक ही जीवन मिला है। सो जो कुछ कर सकते हैं वो तो हम कर रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम कुछ ना कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। पर जितना हम कर सकते हैं उतना ही कर पाएंगे, उससे न ज़्यादा उससे न कम। और ऐसे में हो जाए और एक प्यारा सा गाना, दिल चुराने वाला गाना, जी हाँ, तकदीर वाला फिल्म का गाना है, अभिजीत आका याग्निक की आवाज़ों में, दिल चुरा के ना जा आहा। कुछ फॉस बीच पर भी ढला है ये गाना। सो गीत सभी हमारे AM2 रेडियो मॉरिशस के लिसनर्स के नाम, चलिए एक साथ सुनते हैं। इस फिल्म में कादिर खान ने क्या एक्टिंग की थी, वो कहते हम हैं यम, यम हैं हम। क्या बात है, क्या डायलॉग मारा है कादिर खान साहब ने। साथ में थी आसरानी, कॉमेडी से भरपूर मूवी। इस फिल्म में कादिर खान यमदूत के रोल में नजर आए थे। आहा क्या बात है।

कुछ ही क्षणों में पौने 8 बजने वाले हैं, तब आप सुनेंगे ज्ञान सर्वर प्रोग्राम हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से श्रीमती रामजतन और प्रोफेसर सत्यापाल सिंह की प्रस्तुति में। और ये ज्ञान सर्वर कार्यक्रम ले जाएगा सुबह के 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर। समाचारों के बाद सुबह के 8 बज के 5 मिनट पर हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। Stay tuned and keep listening to MBC Radio Mauritius. Okay.

0: सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। आप सुन रहे हैं ज्ञान सरोवर और मैं हूँ अद्यतन कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर कीर्ति रामजतन। प्रिय श्रोताओं, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम एवं वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। यह केवल एक भाषा ही नहीं अपितु भारत की ज्ञान परंपरा, संस्कृति, दर्शन, साहित्य तथा जीवन मूल्यों का अमूल्य भंडार है और आज के आधुनिक युग में भी संस्कृत का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, संस्कृत एवं भारतीय दर्शन पीठ, आदरणीय प्रोफेसर सत्यपाल सिंह जी। प्रोफेसर, ज्ञान सरोवर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद कीर्ति रामजोतन जी, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मॉरिशस वासियों को सभी को अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आज इस ज्ञान सरोवर कार्यक्रम में वार्ता के लिए अवसर देने का ये जो उपक्रम हुआ है इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ।
0: आदरणीय प्रोफेसर जी, हम यह चाहेंगे कि आप सर्वप्रथम हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों को संस्कृत का अध्ययन क्यों करना चाहिए।
1: देखिए प्रोफेसर कीर्ति जी, संस्कृत भाषा को ही नहीं किसी भी भाषा को पढ़ने के दो उद्देश्य होते हैं। एक होता है व्यवहार सामान्य, जिसमें हम भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसका दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो अपने परंपरा से प्राप्त ज्ञान का संरक्षण और जो नए आविष्कार कर रहे हैं उनको संरक्षित करना। ये दो सामान्य उद्देश्य हैं। जहाँ संस्कृत भाषा को पढ़ने और उसको उसके अध्ययन की बात है तो उसमें एक बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हजारों वर्ष पहले से जो ज्ञान सामग्री है वो सारी संस्कृत में ही हमें मिलती है और उस संस्कृत भाषा में निबद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसलिए जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि तपस्वी और वैज्ञानिक, वस्तुतः हम वैज्ञानिकों को ऋषि कहते थे, ऋषि कहते हैं ऋषि दर्शनात्, जो विषय की पारदर्शिता में उतर गया है वह ऋषि कहलाता है। तो ऐसे उन ऋषियों की धरोहर को जानने के लिए हमें संस्कृत को पढ़ना चाहिए, ये एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है, संस्कृत केवल भाषा ही नहीं है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। एक आयाम है उसका मानव के जीवन के प्रति दृष्टि। तो एक मनुष्य के अपने जीवन के प्रति दृष्टि क्या होनी चाहिए,

0: क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसे मानव जीवन सुखी हो सकता है, व्यक्ति का, परिवार का और समाज का, और इससे आगे बढ़े तो राष्ट्र का, इन सबके सुखमय विकास की और जीवन की कामना के लिए हमें संस्कृत को पढ़ना चाहिए।
1: अच्छा, तो एक धारणा है प्रोफेसर जी की, आमतौर पर जो विद्यार्थी हैं वे सोचते हैं कि संस्कृत केवल श्लोकों एवं धार्मिक ग्रंथों तक सीमित है, क्या यह सही है?
0: नहीं, यह सर्वथा सही नहीं है। उसका कारण है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें ज्ञान की विविध शाखाओं का संकलन आपको प्राप्त होता है। आयुर्वेद को पढ़ें तो वो हमारे शरीर विज्ञान और इसमें होने वाले बीमारियां, रोग और उनके उपचार, इनसे जुड़ा हुआ विज्ञान है और जीवन को कैसे सुरक्षित बनाया जाता है और कैसे दीर्घायु हुआ जा सकता है, ये पूरा विज्ञान इसमें भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त दर्शन की भाषा है, हमारे जो षड दर्शन हैं उनका सारा का सारा विज्ञान जिसमें एक तार्किक परिणति है वो हमें उसी से मिलता है। ये साहित्य की भाषा है, साहित्य के जितने आलोचना के सिद्धांत हो सकते हैं वो सब हमें इसमें मिलते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन जो विज्ञान है, नौका विमान आदि निर्माण विषयक सामग्री हमें इसमें मिलती है, अणु विज्ञान हमें इसमें मिलता है, भाषा विज्ञान के लिए भी हमें उसकी गहनता में जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं संस्कृत के जो अभी तक अछूते हैं। यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें, गणित की बात करें, हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें, या हम उसको कहें कि ज्योतिर्विज्ञान की बात करें, तो वह सारा संस्कृत में मिलता है। जहाँ से आज हम जो विकास देख रहे हैं उससे पहले उससे अधिक विकास हो चुका है, बस कमी इतनी है कि वह हम लोगों तक आज पहुँचा नहीं पाए, क्योंकि आज जन जन की भाषा संस्कृत नहीं रही। जो उसको पढ़ेगा उसका पढ़ना ऐसा ही है जैसे आपके मॉरिशस के समुद्र में गहरा गोता मारना और वहाँ से मोतियों को निकालना।
1: तो प्रोफेसर जी, आप हमें यह बताएं कि संस्कृत हमारे दैनंदिन जीवन को कैसे प्रभावित करती है और हमारे जीवन के विकास में उसका क्या योगदान हो सकता है?
0: हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक है शारीरिक बाह्य पक्ष, दूसरा है मानसिक पक्ष। दोनों ही दृष्टियों से हमें स्वस्थ रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारा मानस जगत अस्वस्थ है तो शारीरिक जगत स्वस्थ हो ही नहीं सकता। यदि हमारा मानस जगत अविकसित है तो शारीरिक जगत भी अविकसित ही रहेगा। हमें उसे विकसित कैसे करना है, इसके लिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। इसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सोपान हो सकते हैं, कब मनुष्य का विकास प्रारंभ होना चाहिए, किन किन पड़ावों से गुजरना चाहिए, किस स्तर पर व्यक्ति के विकास के लिए क्या करना चाहिए, इसका जो विश्लेषण, इसका जो विवरण, इसका जो एक योजना इसकी जो बनाई गई है वो संस्कृत में है और उसको हम संस्कारों के नाम से जानते हैं। ये सारा का सारा हमें संस्कृत में मिलता है। जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो प्रथम आश्रम है जिसको हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, उसके दो ही कार्य हैं, शारीरिक विकास और विद्या की उन्नति और उसको ग्रहण करना, उसको संग्रहण करना और मानस जगत को विकसित करना। तो इस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। एक और पक्ष है इसका, जो हमारे दैनिक जीवन में, जिसको हम हिंदू संस्कृति कहें, भारतीय संस्कृति कहें, वैदिक संस्कृति कहें, या आर्य संस्कृति कहें, या कहें कि विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति के अंदर हमारे जो पूजा पद्धति है, जो हमारा ध्यान पद्धति है, ये सारी की सारी संस्कृत के माध्यम से, उन श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से होती है। तो आज हम केवल उनको, मंत्रों को बोलते मात्र हैं, उच्चरित मात्र करते हैं, उनके उच्चारण मात्र से हमें वो ग्रहण नहीं हो पाता जो होना चाहिए। वो कब होगा? जब हम उनके अर्थों को जान रहे होंगे। अर्थों को कब जानेंगे? जब हमारा भाषा से परिचय होगा। तो इस तरह से भाषा से परिचय होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और विशेष बात मैं छोटी सी इसमें जोड़ना चाहता हूँ, भाषा में मूल जो तत्व है वो है ध्वनि, और यदि आपने भाषा में शब्द के उच्चारण में एक ध्वनि के स्थान पर दूसरी ध्वनि का प्रयोग कर दिया तो अर्थ बदल जाता है और उस परिवर्तन से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इसके लिए देता हूं। एक शब्द है सकल, दंत्य स, दूसरा है शकल, तालव्य श। अहम सकलम इच्छामि, अहम शकलम इच्छामि, यदि हम ऐसा कहते हैं तो दोनों में अंतर आ जाएगा। एक का अर्थ होगा मुझे पूरा चाहिए, दूसरे का अर्थ होगा मुझे थोड़ा सा चाहिए। तो आपको क्या

0: चाहिए इसको बताने के लिए मुझे संपूर्ण चाहिए, और आप कहते मुझे अहम शकलम इच्छामि, मुझे तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको थोड़ा सा चाहिए, और देने वाला जो है वो आपको थोड़ा सा थमा करके साइड में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा, और फिर आपको जो प्राप्तव्य है वो नहीं मिलेगा। यही स्थिति हमारे पूजा पद्धति में उच्चारण के लिए है। यदि उसमें उच्चारण का दोष होता है तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे हम लोक व्यवहार में फल को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, वैसे ही यदि हमारी ध्यान पद्धति में, पूजा पद्धति में, अर्चना पद्धति में यदि उच्चारण दोष है तो हमें अपेक्षित मनोवांछित फल प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए हमें अपने दैनिक दिन के व्यवहार में भी संस्कृत की उपयोगिता को समझ करके उसका अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए।
1: जी, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने समझाया प्रोफेसर जी। तो हम आपसे यह भी सुनना चाहते हैं कि आमतौर पर हम सुनते रहे हैं कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, और यही कारण है कि यह अन्य भाषाओं की अपेक्षा भिन्न श्रेणी में रखी जाती है। तो आप कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
0: जब हम विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो सामान्य रूप से हमारी दृष्टि जाती है कि जो हम प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं बस वही एक विज्ञान है। ऐसा नहीं है। विज्ञान का प्रारंभ मस्तिष्क से होता है। जो कुछ हम मस्तिष्क में सोचते हैं, मन में सोचते हैं, वही तो प्रयोगशालाओं में जाकर के करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विज्ञान का प्रारंभ हमारा मस्तिष्क से होता है, और जिसको हम सोचते हैं उसका संप्रेषण का माध्यम क्या है? भाषा। तो सबसे पहले विज्ञान का प्रारंभ भाषा से है। यदि भाषा ही अवैज्ञानिक है तो उस स्थिति में हम आगे विज्ञान में क्या करेंगे, हम नहीं कह सकते। तो संस्कृत भाषा की जहाँ तक बात है, इसमें सबसे पहला होता है ध्वनि। तो आप आंग्ल भाषा को देखें, अंग्रेजी भाषा को देखें, दूसरी भाषाओं को देखें, तो उसमें एक समस्या है। यहाँ तक कि मैं हिंदी भाषी प्रदेश से आता हूँ, उसमें एक समस्या है। कोई मुझसे पूछता कि आपका क्या नाम है, तो मैं कहता हूँ मेरा नाम सत्यपाल है। तो जैसे ही मैं कहता हूँ सत्यपाल है तो लय पर मेरी आवाज़ रुक जाती है, होना चाहिए सत्यपाल, तो अ की ध्वनि जो है वो समाप्त हो गई। मेरे देश में जो प्रदेश हैं विभिन्न, उनके नाम हैं, तो या तो हम उसमें एक ध्वनि बढ़ा देते हैं या एक कम कर देते हैं। कर्नाटक को हम कर्नाटका कहना शुरू कर देते हैं, कृष्ण को कृष्णा सह कहना शुरू कर दिया, राम को राम की बजाय रामा कहना शुरू कर दिया, या हमने राम और कृष्ण ऐसा कहना शुरू कर दिया। न तो हम कृष्ण कहते हैं न हम राम कहते हैं। तो ये उच्चारण का दोष हमारी स्थानीय भाषाओं में आने लगा। इसका कारण ये था कि संस्कृत की जो वैज्ञानिक पद्धति थी उच्चारण की, उसको हमने नहीं अपनाया, उसका अनुसरण नहीं किया, उसका अनुकरण नहीं किया। क्योंकि किसी भी ध्वनि के उच्चारण के लिए एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित प्रकार के प्रयत्न की अपेक्षा होती है, जो सिखाया नहीं जाता। जो बच्चे अपने परिवार में जो माँ से सीखते हैं, जो आचार्य से सीखते हैं, जो समाज से सीखते हैं, वह परंपरा आगे बढ़ती है। तो भाषा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण। इसका एक और छोटा सा पक्ष मैं आपके सामने रखूं कि संस्कृत भाषा प्रत्यय प्रधान भाषा है, तो इसमें वाक्य में स्थान का महत्व तो नहीं रहता। इसको हम आधुनिक भाषा विज्ञान के शब्दावली में कहें तो इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज है। तो जहां भी आप प्रत्यय के द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, स्थान गौण हो जाता है। आप कर्ता को प्रारंभ में रखें, मध्य में रखें, अंत में रखें, या क्रिया को आदि, मध्य और अंत में कहीं भी रखें, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं कह सकते। अहम गृहम गच्छामि, गच्छामि अहम गृहम, दोनों का अर्थ एक ही है। बट आई बीट राम, राम बीट मी, राम श्यामम ताड़यति, श्याम रामम ताड़यति, दोनों में अंतर नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी में इसमें अंतर हो जाता है। तो ये भाषा का जो महत्व है ये बहुत अधिक है। और उच्चारण के संदर्भ में हम कहें, एक और छोटी सी बात मैं कहूँ कि हमारी भाषाओं का विकास, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनके मूल में संस्कृत है, और हम उसको यदि पढ़ते हैं तो हम उसमें भी एक गहराई तक जा सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आप देख रहे हैं ना कि संस्कृत का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं सभी अभिभावकों एवं शिक्षकों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों, अपने छात्रों को संस्कृत पढ़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें। और यदि छात्र माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई कर रहा हो, और विशेष रूप से यदि वह ग्रेड 8 अथवा ग्रेड 9 का विद्यार्थी हो, तो आप उसको महात्मा गांधी संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले संस्कृत सोपान कोर्स के लिए अवश्य एनरोल कराएं, क्योंकि यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को संस्कृत के ओ लेवल अध्ययन के लिए तैयार करता है। और विद्यार्थी चाहे साइंस स्ट्रीम का हो अथवा इकोनॉमिक साइड का या फिर आर्ट्स साइड का

वह एक अतिरिक्त विषय यानी एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत ओ लेवल की परीक्षा में भाग ले सकता है और यह विषय वैज्ञानिक होने के कारण एक अत्यंत ही अंकदायी यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो अच्छे परिणाम एवं बेहतर एग्रीगेट प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। इसीलिए विद्यार्थियों को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इसी के साथ हम अपने विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सत्यपाल सिंह जी को उनके अमूल्य समय के लिए एवं हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रिय श्रोताओं आपसे हम अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सब लोगन के नमस्ते। 8 बजल बा पेश बा भोजपुरी समाचार। एक बार फिर से नमस्ते। भोजपुरी समाचार में तोहर स्वागत बाते। आज खातिर लेवल गल युवा लोग के आज खातिर लेवल गल फैसला युवा लोग खातिर भविष्य के सुरक्षित करी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम काल संसद में बजट बहस के सार कुछ ऐसे ही संदेश संगे प्रस्तुत कर लन। वो बोलन कि वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था में प्रस्तावित सुधार के लेके वरिष्ठ नागरिक लोग के चिंता के वो निमन से समझेलन। बकीर उनकर अनुसार देश गो महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा बा। अब चुनाव यह कि या तो समय रहते नियंत्रित और सुनियोजित सुधार करल जाए या फिर निकट भविष्य में एगो गंभीर आर्थिक संकट के सामना करल जाए। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ये भी बोलन कि जिन संकट के आशंका आज व्यक्त करल जा बा ओकर जड़ पूर्व सरकार के कुछ फैसला में नहीं बाती। प्रधानमंत्री के अनुसार 2019 के आम चुनाव के बाद वृद्धावस्था पेंशन के 9000 रुपया से बढ़ा के 13000 रुपया कर देवल गया रहल, जबकि विशेषज्ञ रिपोर्ट अगते ही चेतावनी दे ले रहल कि ये कदम लंबा समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रही। ये अतिरिक्त खर्च के पूरा करे खातिर तत्कालीन सरकार सामाजिक योगदान योजना यानी कि CIG लागू कर ले रहल। बकीर प्रधानमंत्री ये बोलत हवन कि ई कोष के उपयोग ओकर मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं रहल बाते। ई कोनो उपहार नहीं है बल्कि आय होला पीढ़ी के मानव पूंजी में करल गल उगो निवेश है। काल संसद में बजट भाषण के दौरान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और लैंगिक समानता मंत्री आर्याना वामागी बजट में शामिल वो उपाय के बचाव कर लन जिसके तहत मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव के बढ़ा के एक बरिस कर देवल गल बा। एकर में 6 महीना के पूर्ण वेतन सहित छुट्टी और 6 महीना के वैकल्पिक आधा वेतन होला छुट्टी शामिल बाती। साथ ही पैटर्निटी लीव के बढ़ा के 6 सप्ताह कर देवल गल बा और हर महीना 1 दिन के मेंस्ट्रुअल लीव भी शुरू कर गल बा। वो आलोचना के भी जवाब दिलन जकर में कहल गल बा कि ई प्रावधान के कारण महिला के भर्ती प्रभावित हो सकी। वो स्पष्ट करलन कि एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट कर्मचारी के कोनो भी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करेला। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और लैंगिक समानता मंत्री बाल संरक्षण के मुद्दा पर भी विस्तार से बात करलन। वो खास रूप से चाइल्ड अडॉप्शन बिल पर जोर दिलन जकरा वो एगो महत्वपूर्ण सुधार बतैलन। ये विधेयक के मकसद अडॉप्शन से जुड़ल कानूनी ढांचा के आधुनिकीकरण करे के और वो प्रक्रिया के सरल और तेज बनाए के है जिनके अक्सर बहुत लंबा और जटिल मानल जाला। ये विधेयक के तहत एगो समर्पित

अडॉप्शन अथॉरिटी के स्थापना के प्रस्ताव बा एकर मुख्य उद्देश्य इस सुनिश्चित करे के है कि हर निर्णय लड़का के सर्वोत्तम हित के ध्यान में रख के करल जाए और अडॉप्शन के प्रतीक्षा कर रहा लड़का के देखभाल और पुनर्वास व्यवस्था के और बेहतर बनावल जा सके। सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेप्ट बजट 2024

0: बिलियन रुपया तक पहुँच सकी, जिनकि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 87.8% रही। ये बरिस अगते ही 88.5% के तुलना में थोड़ा कम है। सरकार के लक्ष्य ये अनुपात रेशो के 2027 तक 85.5% और 2029 तक 80% से नीचे आने की है। ये दिशा के सकारात्मक मानल जाता बकेर एक सफलता आर्थिक विकास सुधार के प्रभावी क्रियान्वयन और अभी भी अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर निर्भर करी। एमसीसीआई के महासचिव दृष्टि सिंह रामदेनी के अनुसार सार्वजनिक कर्ज में एक कमी निवेशक लोग के एगो सकारात्मक संकेत है। हालांकि वो कहलन कि आर्थिक पुनरुद्धार से जुड़ल उपाय के तेजी से लागू करे के चाहिए। वो ये भी बोलन कि चीनी पर टैक्स और समानांतर आयात जैसन मुद्दा पर सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संवाद जारी रहे के चाहिए, जिसमें व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा बनल रहे। अर्थशास्त्री मनीषा डुखुनी बोलन कि जीडीपी के अनुपात में सार्वजनिक कर्ज में 0.7% अंक की कमी ये दर्शावेला कि सरकार राजकोषीय संतुलन यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन के दिशा में वास्तविक प्रयास कर लेबा। उबलन कि चूंकि सार्वजनिक कर्ज अभी भी जीडीपी के 80% से जस्ती है, आर्थिक वृद्धि दर लगभग 3% रहे की उम्मीद बा और ब्याज दर अभी ऊंचा बाते, यही खातिर सतर्क रहे के जरूरी है। वो बोलन वो याद दिलेलन कि बजट के गो प्रमुख योजना फिलहाल स्थगित होला के कारण कुछ अनुमान आगे चल के बदली सकी। अंत में उबलन के मध्य पूर्व में जारी तनाव ऊर्जा और आयात के लागत बढ़ा सकी। बकिर यदि सरकार द्वारा घोषित सुधार जैसे कि स्टार्टअप एक्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, खास औद्योगिक जोन और ऊर्जा संक्रमण सफलतापूर्वक लागू करल जाए तो वो दीर्घकाल में आर्थिक विकास के मजबूत कर सकी और सार्वजनिक कर्ज के बोझ के कमती करे में मददगार साबित होवे सकी। आज 27 जून के संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनावल जात बा। ये दिवस के मकसद रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में SME के महत्वपूर्ण भूमिका के मान्यता दे की है। वित्त वर्ष 2026-2027 की बजट देश के आर्थिक परिवर्तन के रणनीति में SMEs और स्टार्टअप के केंद्र में रखेला। सरकार की स्पष्ट उद्देश्य नवाचारी और प्रतिस्पर्धी उद्योग के एगो नवा पीढ़ी तैयार करे के है, जिन रोजगार सृजित करी और आर्थिक विकास के गति दे सके। मंत्रिपरिषद काल में रोज जेल में 9 दिसंबर के औजी सेल्मो के मृत्यु के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिश के जायजा ले रख जांच आयोग के रिपोर्ट में कई गो गंभीर कमी और लापरवाही के उजागर कर गलबा। इस सिफारिश के प्रभावी ढंग से लागू करे खातिर सरकार एगो खास कमेटी के गठन करी, जन आयोग के सिफारिश के क्रियान्वयन की निगरानी रखी। और विदेश में अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करके कालसुक के ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थल पर हमला कर लेवाते। ये कार्रवाई वाशिंगटन द्वारा तेहरान पर एगो मालवाहक जहाज पर हमला करे के आरोप लगेला के बात करल गल, जिकर में मध्य पूर्व में युद्ध विराम के गंभीर झटका लगल बा। और ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबला में फ्रांस नोवे के 4-1 से सेनेगाल इराक के 5-0 से हरेलक। दूसरे रोमांचक मैच में स्पेन यूरुग्वे के 1-0 से मात दिलक, जबकि सऊदी अरब और केप वर्दे के मुकाबला गोल रहित यानी कि 0-0 से ड्रो पर समाप्त रहल। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त पर भल धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुने जा हुटवायाल पिचित काबान में 60 बरिस के स्वासौतों के श्रीमती शोभा रामबाली श्रीमती शोभा रामबली पैदाशी नाम दिग नारायण जिनकरा लोग शोभा से जाने तरलन जा की मृत्यु हो गल बा अर्थी आज दिन के डूबे जी इनकर मकान हुटवायाल पिचित काबान कौदे मास्क पावे से उठा के दाह संस्कार खातिर में जिनके स्मशान भूमि ले जाल जाए रिवरव्यू लेन वेद में 75 बरिस के स्वासन कैजों के श्री राजेश्वरन पीले नलाटोबी श्री राजेश्वरन पीले नलाटोबी जिनकारा लोग इंदिहन से जानत रहलन जा की मृत्यु हो गल बा अर्थी आज दिन के डूबे जी इनकर पत्नी श्रीमती सेवा क्योनवादी नलाटोबी के मकान रिवरव्यू लेन वेडन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिया कोंस्टांस सेंट पियर के शमशान भूमि ले जाल जाए काली लेन बाबू में 80 बरिस के काथोवैजों के श्री हरिबस थुप सिंह जानकी श्री हरिबस थुप सिंह जानकी जिनकरा लोग डोडो से जानित रलन जा की मृत्यु हो गल बा अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर मकान काली लेन बाबू से उठा के दास संस्कार खातिर मोटाई सैंपिये बाबू के स्मशान भूमि ले जल जाए शुआजी रोड पर जिफ्लाक में 81 बरिस के काथोवैनों के श्रीमती निराधा रमा श्रीमती निराधा रमा पैदाइश नाम सिमोती जिनकरा लोग दिलावती से जानत रलन जा के मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर बेटी सान्यो बंदीप के मकान श्वाजी रोड पर जिफ्लाक से उठा के दाह संस्कार खातिर बुशों के शमशान भूमि ले जल जाए गोटवायाल बिलवेडिया में 42 बरिस के काहंडीजों के श्रीमती ज्योति चटवा श्रीमती ज्योति चटवा पैदाश नाम सुकन जो करिश्मा जिनकरा लो करिश्मा से जानत रलन जा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 11:15 पर इनकर पिता श्री राजन सुकन के मकान गोटवायाल बिलवेडिया से उठा के दाह संस्कार खातिर मेजिन कौदे मास्क के स्मशान भूमि ले जल जाए कालीमाई गली खुशनुआ में 63 बरिस के स्वासन ठुआजा के श्री केपाचार्य ठाकुर सिंह श्री केपाचार्य ठाकुर सिंह जिनकरा लोग मितानंद से जानत रलन जा के मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर पत्नी श्रीमती देवयानी ठाकुर सिंह के मकान कालीमाई रोड खुशनुआ से उठा के दाह संस्कार खातिर वैष्णवा के शमशान भूमि ले जाल जाए नंबर 136 शातुडो श्री थाउकबा पोटवी में 80 बरिस के काथोवैजों के श्री विजय रामनाथ श्री विजय रामनाथ जिनकरा लोग विजय से जानत रलन जा के मृत्यु हो गलबा अर्थी जो बाती आज दिन के 1:00 इनकर पत्नी श्रीमती दनयंती रामनाथ के मकान नंबर 136 शातुडो स्ट्रीट थाउकबा पोटरी से उठा के दाह संस्कार खातिर थाउकबा के शमशान भूमि ले जाल जाए मामबहाल गली बुआशेगी में 72 बरिस के स्वासंडूजों के श्रीमती भानुमती मातवा श्रीमती भानुमती मातवा जिनकरा लोग भानु से जानित रलन जा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन की 10 बजे कर भाई विजय मातवा के मकान मामबहाल रोड बुआशेगी से उठा के दाह संस्कार खातिर गाँव बुआ के शमशान भूमि ले जाल जाए साइडिंग रोड न्यूकोव में 83 बरिस के काथोवै ठुआजों के श्रीमती गौरी गोबिन श्रीमती गौरी गोबिन पैदाइश नाम लुफो जिनकरा लोग जामुंती से जानत रलन जा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 10 बजे कर बेटा संदेश गोबिन के मकान साइडिंग रोड न्यूकोव से उठा के दाह संस्कार खातिर प्लेनमानियों के शमशान भूमि ले जाल जाए अविनी माइकल लीले पाई में 68 बरिस के स्वासौतों के श्री कृष्णा गणेश जिनकरा लोग माजी से जानत रलन जा

की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज सांझ के 1 बजे इनकर बेटा आश्ले गणेश के मकान आविनी माइकल लील पाई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पाई के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। मैडम लुलू रोजबेल में 75 बरिस के श्वासन कैजाओं के श्री मुनेश्वर रामनोहर, श्री मुनेश्वर रामनोहर जिनकरा लोग ईश्वर से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर बेटा बल्कि इनकर भांजा श्री महेंद्र रामनोहर के मकान मैडम लुलू रोजबेल से उठा के दाह संस्कार खातिर माघजानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जाल जाए। लाबोड गली बुआरोज पॉम्पलेमुस में 76 बरिस के श्वासन से जाओं के श्री मनलाल रामसर, श्री मनलाल रामसर जिनकरा लोग आनंद बलि से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन की 11 बजे इनकर बेटा राम सिंह रामसर के मकान लाबोड गली बुआरोज पॉम्पलेमुस से उठा के दाह संस्कार खातिर पॉम्पलेमुस के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। वेजी गली गुडलैंड में 80 बरिस के कथोवैजों के श्रीमती सेलोन मौदी मुटू, श्रीमती सेलोन मौदी मुटू जिनकरा लोग आमरों से जाने तरलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर बेटा कोविलैन मौदी मुटू के मकान वेजी गली गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बैलमो के शमशान भूमि ले जाल जाए। शिवाजी रोड मेलगोज में 77 बरिस के श्वासन जिसे तो के श्री सोनालाल सुरजन, श्री सोनालाल सुरजन जिनकरा लोग ढूंढ से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर मकान शिवाजी गली मेलगोज से उठा के दाह संस्कार खातिर मोटाई ब्लांश के शमशान भूमि ले जाल जाए। रामफल लेन मोटाई ब्लांश में 90 बरिस के कथोवैजों के बीबी अहेशा बकू, बीबी अहेशा बकू पैदाशिना मोहन जिनकरा लोग आईसू से जानत रलन जाए इंतकाल कर गल हमन। जनाजा आज दिन के 10 बजे इनकर मकान रामफल लेन मोटाई ब्लांश से निकाल के दफनावे खातिर मोटाई ब्लांश के ही कब्रिस्तान ले जाल जाए। गुटवायाल कोंगोमा में 98 बरिस के कथोवैजों के श्री भावंती सीओ, श्री भावंती सीओ पैराज नाम सुवारथ जिनका लोग भावंती से जानित रलिंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर मकान गुटवायाल कोंगोमा से उठा के दाह संस्कार खातिर बामाशा के शमशान भूमि ले जाल जाए। लेटोलेन रोजबेल में 79 बरिस के श्वासन जिजनेवों के बीबी अलीमा मियाजन, बीबी अलीमा मियाजन जिनकरा लोग बीबी अलीमा से जानत रलन जा इंतकाल कर गल हमन। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनकर बेटा जाकिर भगालू के मकान लेटोलेन रोजबेल से निकाल के दफनावे खातिर यूनियन पार्क के कब्रिस्तान ले जाल जाए। जयपाल रोड प्लेंडी पपाई में 67 बरिस के श्वासन सीतों के श्री वीरा स्वामी चेंगन, श्री वीरा स्वामी चेंगन जिनकरा लोग नादेन से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 12:30 इनकर मकान जयपाल रोड प्लेंडी पपाई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लेंडी पपाई के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। और शिव प्रकाश मंदिर रोड सिथिया मिल थ्रियोले में 67 बरिस के श्वासन सेतों के श्री नंदकेश्वर शंकर, श्री नंदकेश्वर शंकर जिनकरा लोग मिलो से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज सपहर 3 बजे इनकर पत्नी श्रीमती शंकर के मकान शिव प्रकाश मंदिर रोड सिथिया मिल थ्रियोले से उठा के दाह संस्कार खातिर एस एस ऑलेन थियोले के शमशान भूमि ले जाल जाए। तशोक में डुबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने की गहरा सहानुभूति बातें।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 8:25 हो रही है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी का हम स्वागत करते हैं। और जय प्रताप सिंह ऑन द मिक्स, मस्त मॉर्निंग शो, सुबह का नजाना पार्ट टू, अभी से दिन के 9 बजे तक। यस यस यस, कहिए दोस्तों कैसे हैं आप। यू डूइंग वेल एंड आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं। आजकल बहुत से लोगों को सर्दी खांसी और जुकाम हो रहा है। हमने कहा है आप लोगों से कि रात के वक्त ठंडा पानी मत पिया कीजिए, चिल्ड पानी मत पिया कीजिए, पर कुछ लोग सुनते ही नहीं। लोग कहते हैं प्रताप भाई जानते हैं रात को जब नींद टूटती है तो पिया सकते हैं, तुम क्या करते हैं फ्रिज से जाकर पानी लेकर पीते हैं। अरे भाई यही तो गलती करते हैं आप लोग, फ्रिज से लेकर पानी रात को पीते हो, टेम्परेचर डाउन होता है, शरीर का टेम्परेचर भी डाउन, ऐसे में हो गया फीवर, अब देखो डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ता है। सो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, पानी गर्म कीजिए, तैमूस है ना आपके पास, या जो गूद कहते हैं गूद दिलो, उसमें पानी गर्म करके डाल दीजिए, ताकि जब आपको प्यास लगे तो आप गर्म पानी पिया करें, है कि नहीं। यस, सुबह का नजराना प्रोग्राम अभी से दिन के 9 बजे तक। सो जितने भी लोग बीमार हैं हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द ठीक हो जाए, अपनी दवाइयाँ अपने समय पर लिया कीजिएगा, और दवा के साथ साथ दुआ की ज़रूरत है, सो दुआ हम आपको देते हैं दिल से कि आप जल्द ठीक हो जाए। यस, सर्दी का मौसम, ठंड हवाएं, और कल तो काफ़ी बारिश हुई, और ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी दोपहर बाद में जोरों की बारिश होने वाली है। क्या बात है, जहाँ पानी भी चाहिए हमारे जलाशयों के लिए, क्योंकि हमारा जो प्रमुख जलाशय महोबाकवा है वहाँ पर पानी का जो लेवल है डाउन डाउन डाउन होता जा रहा है। सो हे प्रभु, थोड़ा सा पानी दीजिए हमें भी, ताकि हमारी जलाशय भर जाएँ। यस, सो अभी इससे 9 बजे तक कुछ प्यारे प्यारे गाने इन मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना। और अगर आप किसी का नाम जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, बहुत से गीत हैं हमारे पास, जैसे फिल्म आनंद, दिल का रिश्ता, झूली, राम लखन और सपने साजन की। सो इन गीतों पर अगर आप नाम जोड़ना चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं 4028085। यस, तो चलिए शुरू करते हैं इस म्यूजिकल प्रोग्राम को सपने साजन की फिल्म के एक बहुत ही ज़बरदस्त गीत के साथ। कहता है ये मौसम, अब ये मौसम क्या कहता है ये तो आप ही बताएंगे। ये प्यारा सा गाना हम चलाएंगे रिहाना हासनानी के नाम, आज उनकी सालगिरह है। सो हैप्पी बर्थडे रिहाना जी, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है आपकी सभी बहनों की ओर से। और आप है बेन, साहिदा, कोहेसा और जलीला की ओर से भी आपको ढेर सारा प्यार है। बेन, साहिदा, कोहेसा की ओर से रिहाना हसनानी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद है। आपके भाई है आपके भाभी जाहिदा और पूरी हसनानी परिवार रिहाना को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। और यही गाना हम चलेंगे माधव की ओर से, उनके चाचू साइलेंट के नाम, और साइलेंट और माधव जो है चाचा भतीजा, बड़े प्यार से जो है बात करते हैं, और माधव जो है अपने चाचू को कहते हैं चाचा जान कब आओगे। सो जब चाचा जान को समय मिलेगा तो अपने माधव के यहाँ ज़रूर जाएंगे, हैं कि नहीं, बाल गोपाल माधव। और यही गीत टीना की रोशन के पति कवि, फिर उनकी सासुमा है माला, उनकी नंद है रीना और सब भैरव परिवार के नाम। यही गाना दीना के नाम आप रहती है, टीना दीना आप रहती है।

शुभम ग्रेनिये वीना कुबुसामी अम्मी बग से है गीत आपके पति आपके बच्चों के नाम और सब कुबुसामी परिवार के नाम सुरमा दुखीत मे बग से गीत आपके नाम पूरे फैमिली के लिए विश्वानी बाबूलाल लाहौजा से आपके पति देव है बेटे बहू और सब बाबूलाल परिवार के नाम यह गीत जाता है और यह गीत हम चलाएंगे रीता जी के नाम रीता सीतालू कुछ बीमार है आप सो हम प्रार्थना करेंगे आप जल्द ठीक हो जाएं और आपके बच्चे आपको दुआ दे रहे आपके दो बेटे दो बहू और सब सीतालू परिवार दुआ करते हैं कि आप जल्द ठीक हो जाए अपनी दवाइयां समय पर लीजिएगा और बेशक हमारा साथ देते रहिए MBC रेडियो मॉरिशस पर सो जितने हमारे रेडियो मॉरिशस के लिसनर्स हैं जो हमारे श्रोता है जो हमें सुन रहे हैं सुबह से सो यह गीत आपके नाम कहता है ये मौसम कितना प्यारा म्यूजिक है कितने प्यारे बोल वाजी वाह म्यूजिक ऐसा चल रहा है जैसे कि मन करे पिकनिक जाने के लिए परिवार के साथ आहा क्या बात है

0: हाँ, ये मौसम कहता है झूमे नाचे गाए खूब मस्ती करे, जिंदगी का क्या भरोसा है दोस्तों। आज है पता नहीं कल हम रहे या ना रहे, इसीलिए इस पल को जी लेते हैं आप लोगों के साथ। और हमारा और आपका भी रिश्ता है, हम सभी एक परिवार है मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का। कितने सालों से आप हमारा साथ, जब से फॉरेसाइड में MBC था तब से आज तक आप हमारा साथ देते आए और दे रहे हैं, क्या बात है। सो हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, जो भी काम करें आज आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिले, और जो सोच रहे काश वो बात सच हो जाए, क्या बात है। तो बहुत सी बातें हम सोचते रहते हैं, दिमाग जो है काम करता रहता है 24 घंटे 7 दिन। सो अगर आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है इस समय, काश वो बात सच हो जाए। और हम दिल से कहते हैं कि सच्चे दिल से अगर आप उस बात को सोच रहे हैं तो वो बात ज़रूर सच होगी, क्या बात है, ये हमारा दावा है। और अगला गीत रंगीला रे, बहुत ही प्यारा सा गाना है, मेरे रंग में रंगने रंग जा। और रंगीला रे बहुत ही प्यारा सा गाना, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी। यस, और यह प्यारा सा गीत जो है हम चलाएंगे संगीता अमीरन के नाम। आपको यह गीत बहुत पसंद है, जब आप यह गीत सुनती है तो झूमने लगती है। सो लाहौजा के संगीता अमीरन, यह गीत आपकी माता जी जो कैसल रहते हैं, आपके भाई है दान और राजी, बहनें हैं हेमा शांति, सब मोहन अमीरन परिवार के नाम, वंशिका रक्षिता और आपके जितने दोस्त हैं परिवार है। सो आप सभी के ही प्यार सा गीत, यही गाना हम चलाएंगे संजय बिहारी की ओर से उनकी पत्नी और बच्चों के नाम। हिरीश नारायण, हेलो दोस्त हिरीश की ओर से उनके बेस्ट फ्रेंड साइलेंट के लिए गीत, मिडलैंड से है हिरीश नारायण। परी अपनी मामा को याद करिए, मामा रानी, फिर पापा साइलेंट, फिर जिपो से है उदय दनीराम, उनकी पत्नी, बेटी बहू, बेटी, उनके समधन चोला फ्लोहा रहते हैं। साथ में अश्विन बच्चन जी है जिपो से, सब बच्चन परिवार के नाम यह गीत जाएगा। किशन गुड़िया, हेलो जी कैसे हो, यह गीत आपके नाम आपके फैमिली के लिए। प्रीतम राज जी मिला, यह गीत आपके नाम भी। केशव अभिलक और कराओके ग्रुप, यह गीत आपके नाम भी। और अभी लाइन पर कोई दोस्त है, सो उनसे मिलेंगे ज़रूर। और राइट कैंक पर, हेलो हेलो हेलो, हम आपको सुन रहे हैं, बात कीजिए। यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग फ़ोन करते जैसे हम फोन फ़ोन काट देते हैं, ये क्या बात हुई, आई डोंट नो, कुछ लोग समझते ही नहीं। हेलो
1: हेलो,
0: आपने फोन क्यों काट दिया माता जी,
1: हम कब से इंतजार,
0: कोई और है, ओके
1: अब बजाएगा। श्रीमती सूर्या

0: कैसे हैं श्रीमती जी?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हाँ, आपके यहाँ बारिश हो रही है या मौसम सुहाना?
1: बारिश हो रही है, ठंड हो रही है।
0: गर्मा गर्म चाय दीजिएगा, गर्मा गर्म कॉफी।
1: चाय पिया, रोटी खाया।
0: ओके, और भी हमारा साथ दे 9 बजे तक, ठीक है?
1: गर्म नाश्ता कर लिया।
0: हाँ,
1: अब आपसे बात करने के।
0: जी हाँ, और बोलिए, अगला गीत है रंगीला रे।
1: रंगीला हुए ना आज का। आज बहू के जन्मदिन है।
0: हाँ,
1: बहू के नाम है पूनम और बेटा के नाम है शक्ति और नाती के नाम है अखिलेश।
0: ओके,
1: अखिलेश नातिन के नाम है आसना और हम सासू माँ और ओकर दुगो भंसूर की तरफ से संजय राकेश, दुगो गोतनी की तरफ से अंजनी आरती।
0: लिस्ट काफी लंबी है माता जी, लिस्ट काफी लंबी है।
1: हाँ, लंबी है, तो चंद्रमुनि परिवार लंबा है ना।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: इसलिए सब okay. लंबी है तो सब चंद्रमुनि परिवार के तरफ से ये गीत डाल देना।
0: ओके okay, जी डाल देंगे जरूर। सो ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज, किसनावती जी है। हेलो किसनावती जी, नमस्ते।
2: हेलो, नमस्ते, बोनसुआर आपको। बोनफेट?
0: हाँ, कहिए कैसे
2: हैं? बोनफेट है, बोनफेट सा है।
0: आज कौन सा बोनफेट है जी?
2: है, हम सब लोगों इस प्रेशिया को मना रहे हैं, संग संग में हैं।
0: क्या मना रहे हैं? क्या मना रहे हैं?
2: प्रेशिया, प्रेशिया।
0: ओके ओके,
2: इसी को हम बोनफेट कह रहे हैं। सब हम संग संग मना रहे हैं बोनफेट।
0: हाँ, हम ठीक है, आप कैसे हैं?
2: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम झकास।
0: नाना कैसे है? नाना जी,
2: नाना बिल्कुल ठीक है, अभी वो चाय पी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है।
0: और अगला गाना किसके लिए आप मांग रही है?
2: जितने लोग भी सुन रहे हैं, आपके लिए और मेरे लिए और नाना के लिए।
0: नाना को हमारा स्पेशल हाई कीजिएगा, उन्हें हमारा स्पेशल सलाम कीजिएगा, क्योंकि नाना बात तो नहीं करते, बस सुनते हैं जरूर। करते हैं, ओके ओके,
2: सभी लोगों से जानते भी है।
0: हेलो
2: हेलो हेलो, गाटप को जो हेलो, बोनसुर, नमस्ते।
0: हेलो जी,
3: हेलो हेलो,
0: नाना जी कैसे हैं? नमस्ते, कैसे हैं आप? सब ठीक है? हाँ, कैसा है हाल चाल? सब ठीक ठाक, एकदम मस्त,
3: सब ठीक ठाक है।
0: और आज क्या प्रोग्राम है नाना जी, घर ही पर या घूमने जाएंगे? चलो अच्छी बात, अगला गीत और खाती नाना जी और नानी के लिए। ओके, अरे बाबा, सो स्वीट टॉकिंग टू यू। और एक दोस्त है लाइन पे, नहीं चलिए अभी गीत सुनते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। यस, रंगीला रे फिल्म का नाम है, प्रेम पुजारी, लता जी की आवाज़ है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उनकी आवाज़ में, प्यारा सा गाना।

जैसे हम आम इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, वैसे ही बॉलीवुड की दुनिया में भी उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं। जी हम बात करें अलका याग्निक जी के बारे में, जी उन्हीं का अभी गीत चलेगा, दया दया दया रे, दया दया दया रे, दिल का रिश्ता। क्या आपको पता है कि अलका याग्निक को एक बीमारी हुई अभी हाल में? जी हाँ, उन्हें बीमारी है, उसकी बीमारी का नाम है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। यानी कि साल 2024 में प्लेन से जब उतर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रही है। जब वो बात करती है, लोग बात करते हैं, तो इससे क्या हुआ कि उसका

0: प्रभाव उसकी सिंगिंग कार्य पर पड़ा और उस साल से लेकर अभी तक वो अभी उतने गाने तो नहीं गा पा रही है, पर हम दुआ करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए। और कुछ दिन पहले नई दिल्ली में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला, वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड्स इन लाइफ, अगर किसी को मिल सकता है तो वो है पद्म भूषण। सो कंग्रेचुलेशन आका याग्निक जी, सो आपको पद्म भूषण से नवाजा गया। सो यह गाना चलेगा आका याग्निक की आवाज़ में, दया दया दया रे। डॉक्टर राकेश रामचंद्र प्रणमायों से गीत, आपकी पत्नी आशा, आपकी दो बेटी और सब रामचंद्र परिवार के नाम, गुरुदेव मन्ना जी राज मन्ना के साथ भी हमारे साथ दे रही है ये गाना, लोंग चिबुक राजा स्टीव प्रवीण भैरव और श्याम मंगल के नाम, विशाल मंडप इटली में है उनकी पत्नी और बेटी के नाम यह गीत जाएगा, और मॉरिशस में उनके मंडप परिवार रहते हैं मोहताबा, यह गीत आपके नाम, सूरज राम भरत कनाडा में हैं और उनकी पत्नी और बच्चों के नाम यह गीत जाएगा, दीपा तिवारी दुखी वो भी कनाडा में हैं, उनके बेटे केविन, उनके पति केविन, बेटे और सब दुखित परिवार के नाम, टीना बुदना गांवे से है और यह गीत आपके पति दो बेटियों के नाम, ऑस्ट्रेलिया से है अजय और पूनम चिंताराम, उनकी माँ यहाँ मॉरिशस में है इंदिरा, भाई चंदन बहु भाभी प्रिया और सभी बच्चों के नाम, आपकी बहन सलोनी के नाम भी हम उन्हें याद करते हैं, रंभाजी स्विट्जरलैंड से है और यह गीत उनके पति बच्चों के नाम और जानकी परिवार जो गुडलैंड्स के रहने वाली है, और अभी एक दो कॉल ले लेते हैं। यस ऑलराइट, चलिए उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो जी,
1: हेलो भाई जी, प्रणाम।
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: मैं हूँ रीता लालोगा से।
0: आपका स्वागत, आपका स्वागत।
1: मौसम पूछना मत, यहाँ मौसम बहुत खराब है,
0: बहुत बारिश है वहाँ,
1: बारिश है थोड़ी, बारिश थोड़ा पानी, ठीक है इसमें होते हैं,
0: थोड़ी बारिश है और थोड़ी धूप भी है।
1: कल बड़का बारिश था,
0: कल तो जोरों की बारिश हुई।
1: कल जोर बारिश,
0: इतनी बारिश हमने कभी नहीं देखा है सर्दी के मौसम में, इतनी बारिश।
1: बहुत बारिश।
0: और अगला गाना किसके लिए?
1: मेरी बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन है।
0: क्या बात है, क्या नाम है आपके बेस्ट फ्रेंड का?
1: शीला, शीला।
0: ओए होए शीला जी, बल्ले बल्ले, हैप्पी बर्थडे शीला जी।
1: मेरी बेस्ट फ्रेंड का इसका जन्मदिन है, और बस गीतिया परिवार, भिखारी परिवार और बंधु परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके भी लिए।
0: थैंक यू जी, सो स्वीट ऑफ यू। और एक दो सलाइड से मिलेंगे। हेलो जी।
2: हेलो भैया, नमस्ते।
0: नमस्ते बहना, आपका नाम?
2: हम प्रमिला है, कैसे?
0: हाँ प्रमिला बोला,
2: कैसे हो?
0: हम ठीक है, कब से तो सात देवते फजीर के 6 बजे से चाय पी लेला, नाश्ता कर लेला।
2: हाँ करनी
0: एता, सो स्वीट। और अगला गाना केकर खातिर मांगते हो?
2: हमर लड़का लोग खातिर।
0: कौन नाम बा लड़का लोग के?
2: हमर लड़का लोग के नाते थी पूजा, काजल, कृष्णा, कविश, और बेटी लोग बा सुनीता, सुरेखा, मानिसा देवी का एगो गीत डाल दे,
0: एगो जोली गीत डाल दे माता जी, सब परिवार
2: है गीत वादलियो।
0: कौन गीत?
2: जी दिल को लगा के ठेस कहाँ चली गई।
0: अब तो अभी सारा गाना जो दिल के दुखाई कैसे जवाब सा माता जी, एगो सुंदर गीत चला दे ला सर।
2: अच्छा डाल
0: डाल दियो, आले बहुत धन्यवाद, शुभ दिन। और एक कॉल लेते हैं या नहीं? ओके सेक्रेटरी फोन लेते हैं। हेलो जी।
3: हेलो, नमस्ते भाई जी।
0: नमस्ते जी, आप कौन?
3: मैं अमृता बोलती हूँ, मंगाईमंग से।
0: माफ कीजिए,
3: बेटी दामाद की शादी की सालगिरह है।
0: क्या नाम है बेटी और दामाद का?
3: बेटी का है माँ, दामाद अशोक।
0: ओके सो शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। और एक दो से लाइन पे हेलो।
4: नमस्ते पता जी।
0: नमस्ते जी, आप कौन?
4: हम कमला ही काटको से।
0: हाँ काफी दिनों के बाद आप फोन कर रही है।
4: भुला गए ला?
0: नहीं हो, हमने भुला नहीं, तू तक आज नहीं सुने, बोले का हो नहीं सुने।
4: अच्छा हुआ ना,
0: हम ठीक है आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से।
4: सुनते है एक
0: एकदम चकाचक प्रोग्राम चलेगा सामने
4: के।
0: कैसा लगता है प्रोग्राम? अच्छा है, अच्छा है,
4: अच्छा से बहुत बढ़िया बढ़िया, एकदम
0: बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्या
4: सुन सुन के काम करेगा, सुन सुन के घर
0: कुआज मिलेगा, कुआज मिलेगा काम करेगी,
4: खुशी हंसी
0: हंसते खुशी जय

0: से
1: सब हंसी खुशी से कट जाला,
0: सब स्ट्रेस भाग जाला, हाँ कि नहीं
1: भाग जाला, सब दुलेर
0: सब दुलेर से भाग जाला,
1: भाग जाला। बोले सर नाती के जन्मदिन रहल काल,
0: हाँ कौन नाम बा नाती,
1: नाती के नाम है आविष, ओकर पत्नी के नाम है दीक्षा, ओकर माँ के नाम है कविता, ओकर बाप के नाम है संजय, हम ओकर दादी है। रामायण परिवार सब कोई के लिए एगो अच्छा सा गीत डाल दिया,
0: जरूर अच्छा सा गीत जम चला रे, दया दया दया रे, दया दया दया रे, चलिए सुनते हैं दया दया दया। और ये प्रोग्राम का अंतिम गाना है दया, आका याग्निक जी की मीठी सी सुरीली आवाज में हम भी दया दया करते हैं, आपसे इजाजत चाहेंगे। 9 बजने वाले हैं, 9 बजे का फ्लैश न्यूज के बाद आज की चर्चा पीक टाइम मैगजीन, हमारी आपकी मुलाकात होगी आज शाम के 5 से 6 बजे कहां पर, ऑल इन फ्री रेडियो मनोरंजन पर। प्रोग्राम होगा पुराने नगमे, पुराने गीतों का सौगात होगा, वहां पर जरूर साथ दीजिएगा। सुबह के 5 सुबह के 6 बजे से अभी तक हमारा साथ देने के लिए, आपके फोन कॉल और एसएमएस के लिए शुक्रिया, करम मेहरबानी। सो मिलते हैं आज शाम के 5 बजे रेडियो मनोरंजन पर, तब तक अजय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए। इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं करुणा लालू संक्षिप्त समाचार लेकर। नमस्कार करुणा।
2: नमस्कार अभी, सभी को नमस्कार। आज लिए गए फैसले युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल संसद में बजट बहस का सार कुछ इसी संदेश के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों को लेकर वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं को वे अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उनके अनुसार देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अब चुनाव ये हैं कि या तो समय रहते नियंत्रित और सुनियोजित सुधार किए जाए या फिर निकट भविष्य में गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया जाए। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी कहा कि जिस संकट की आशंका आज व्यक्त की जा रही है उसकी जड़ें पूर्व सरकार के कुछ फैसलों में निहित हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार 2019 के आम चुनावों के बाद वृद्धावस्था पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दिया गया था, जबकि कई विशेषज्ञ रिपोर्टें पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि ये कदम लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं होगा। इस अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए तत्कालीन सरकार ने सीएजी लागू की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कोष का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं किया गया। ये कोई उपहार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की मानव पूंजी में किया गया निवेश है। कल संसद में अपने भाषण के दौरान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और लैंगिक समानता मंत्री ने बजट में शामिल उन उपायों का बचाव किया जिसके तहत मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया है। इसमें 6 महीने का पूर्ण वेतन सहित छुट्टियां और 6 महीने का वैकल्पिक आधे वेतन वाली छुट्टियां शामिल हैं। साथ ही मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 6 सप्ताह किया गया और हर महीने 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश यानी कि मेंस्ट्रुअल लीव भी शुरू किया गया है। उन्होंने उन आलोचनाओं का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि इन प्रावधानों के कारण महिलाओं की भर्ती प्रभावित हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट कर्मचारियों को किसी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करती हैं। आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में छोटे एवं मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है। वित्त वर्ष 2026-2027 का बजट देश के आर्थिक परिवर्तन की रणनीति में SMEs और स्टार्टअप्स को केंद्र में रखता है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य नवाचारी और प्रतिस्पर्धी उद्यमों की एक नई पीढ़ी तैयार करना है जो रोजगार सृजित करे और आर्थिक विकास को गति दे। और विदेशी स्तर पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण पर हमले किए हैं। ये कार्रवाई वाशिंगटन द्वारा तेहरान पर एक मालवाहक जहाज पर हमला करने का आरोप लगाने के बाद की गई, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध विराम को गंभीर झटका लगा है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हराया और सेनेगल ने इराक को 5-0 से। अन्य रोमांचक मैचों में स्पेन ने यूरोग्वे को 1-0 से मात दी, जबकि सऊदी अरब और केप वर्दे का मुकाबला गोल रहित यानी कि 0-0 ड्रॉ पर रहा। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: हम आपको धन्यवाद करते हैं।

0: है घट रहे उतने जवाब, मैं सोचता हूँ ओढ़ लूँ ये नकाब। भीष्म साहनी जैसे भारतीय कवि द्वारा रचित ये कविता सुनकर चिंतन मनन करने के बाद ऐसे बहुत सारे प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, खासकर नौजवानों के दिमाग में। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा कार्यक्रम में दिल से शानदार स्वागत है। जी हाँ, इस वक्त इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर किया जा रहा है, साथ ही साथ MBC टेलीविजन के तीसरे चैनल पर। और इस वक्त हमारा जो विषय है अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है, और खासकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, खासकर मॉरिशसीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सार्थक है। जब एक नौजवान मॉरिशस की धरती को छोड़ करके अन्य देश में जा करके अपनी पढ़ाई कर रही है, तब जब वहाँ पर उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है, उन्हें क्यों वापस मॉरिशस में आकर के देश की आर्थिक व्यवस्था में गति लाने की दिशा में उन्हें काम करना चाहिए, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान हैं। सबसे पहले डॉक्टर नंदिनी झुमक, नमस्ते डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत है। फिर उसके बाद रक्षिता बुजावन, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हैं, नमस्ते और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी हाँ श्रोता गण और दर्शक गण, इस वक्त हम बात करने वाले हैं ऐसे दो नौजवानों के साथ जो एक अपनी पढ़ाई समाप्त करके वापस आ गई है मॉरिशस में, और जबकि रक्षिता बुजावन एक ऐसी नौजवान है, एक ऐसी युवती हैं जो फिलहाल अपनी पढ़ाई कर रही हैं। उन लोगों का थोड़ा सा मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं डॉक्टर नंदिनी झुमक, जो अपनी पढ़ाई की हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, उन्होंने अपनी PhD की उपाधि प्राप्त कर ली है फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर भी एक मॉरिशन प्रतिनिधि बन करके उन्होंने लेक्चरर के रूप में यानी कि प्राध्यापिका के रूप में वहाँ पर उन्होंने काम किया। जबकि दूसरी ओर हमारे साथ रक्षिता बुजावन हैं, जहाँ पर उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश वाराणसी में इस वक्त फ़िलहाल के लिए वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही हैं, BA ऑनर्स हिंदी की पढ़ाई कर रही हैं, और इस वक्त मॉरिशस में आकर की छुट्टियाँ मना रही हैं। तो दोनों आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर नंदिनी झुमक, मॉरिशस आने के बाद इतने सालों, कितने साल आपने अपनी पढ़ाई वहां पर की?
1: 8 साल।
0: बाप रे, काफी जबरदस्त है। 8 साल, तो आप हमें बताइए वहां पर बहुत सारी मतलब अनुभव यादें संजो करके यहां पर आए हैं, वापस आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है?
1: सबसे पहले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, 8 साल हो गए हैं भारत में। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता है कि 8 साल हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी यादें, बहुत सी अनुभवें मैंने प्राप्त की हैं, एक्सपीरियंस किया पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिल से भारत सरकार की ओर से और मॉरिशस सरकार की ओर से बहुत आभावी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं भारत जाके मास्टर्स और PhD कंप्लीट करूँ।
0: बहुत मतलब आभार प्रकट करते हो। और आप छुट्टी के लिए आए हैं रक्षिता, कैसा महसूस हो रहा है?
2: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मॉरिशस वापस आके अपने देश को वापस देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत महीने हो गए हैं जो मैं मॉरिशस नहीं आई, अपने माता पिता, अपने दोस्तों से नहीं मिली। तो मैं बहुत खुश हूँ, और वहाँ का दुनिया बहुत ही अलग है और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलते हैं।
0: मॉरिशस आकर के आपने दाल पूरी, गातो पीमा, चना पूरी सब खा लिया है?
2: हाँ, सब खा लिया है। वो तो मेरे यादों में बसे रहते हैं, मेरे दिल में बसे रहते हैं।
0: बिल्कुल। और जब आप लोग भारत में अपनी पढ़ाई करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपको आप मिस करते हैं, खासकर मॉरिशस के समंदर, गातो पीमा, दाल पूरी,
1: जीवन शैली ही मिस करते हैं।
0: हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जब आप मिस करते हैं तो आप वीडियो कॉल करते हैं अपने फैमिली के साथ?
2: जी ज़रूर, हम

0: वीडियो को रोज करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो
1: बात करते हैं।
2: एक दिन भी नहीं हुआ कि हम लोग वीडियो कॉल पे नहीं होते
0: नहीं होते हैं।
1: पता है मेरे समय में जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में, तो हम लोगों को इस तरह का मौका नहीं मिलता था। हम लोग फोन करते थे, एक मिनट या दो मिनट पर ISD फोन जो होता है वो हम फोन करते थे। अब सबसे पहले आप हमें ये बताइए डॉक्टर नंदिनी झुमा, कि विदेश में पढ़ाई करते समय आपने कौन कौन सा जो कौशल हैं, जो स्किल्स हैं, आपने अर्जित किया, एक्वायर किया है, और आप अगर आप दो तीन एग्जाम्पल्स दे सकेंगे।
2: तो भारत में मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई कंप्लीट किया है। तो इनमें मैंने जनसंचार, रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप स्किल्स मैंने डेवलप किया है। तो पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक के साथ साथ मैंने पर्सनल डेवलपमेंट भी सीखा है बहुत।
1: आप किसी इंटरनेशनल मतलब संगठन एसोसिएशन में थे, इसके बारे में आप बता सकते हैं?
2: तो अभी तक मैं नेशनल वाइस चेयरपर्सन हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बच्चों के साथ काम करते हैं जो भारत में आके पढ़ते हैं। तो इसमें मेरा जो रोल है, ड्यूटी है, मैं बच्चों को एक कंफर्टेबल सिचुएशन, एक जैसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में डालती हूँ। कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, एजुकेटिव एक्टिविटीज़ होते हैं, इसमें रक्षिता ने भी बहुत भाग लिया है, वो उसी में
0: भाग लिया है।
2: हाँ
1: तो मतलब बहुत सारे जो विदेशी स्टूडेंट्स हैं, जब वे लोग भारत में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो एक तरह का एक उन लोगों का एक कल्चर शॉक होता है। तो उन लोगों को थोड़ा सा मतलब संभालने के लिए, उनको कंफर्ट करने के लिए आप लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इसमें मॉरिशन स्टूडेंट जब आते हैं भारत में, तो आप लोग किस तरह से उन लोगों की मदद करते हैं?
2: देखिए, मैं खुद मॉरिशन थी जब मेरा जैसे चयन हुआ था। तो मेरे लिए ही जब बाकी जितने भी मॉरिशन छात्र आते हैं भारत में, तो देखते हैं कि जो लीडरशिप पे बैठे हैं वो खुद मॉरिशन है, तो एकदम जैसे वो एट ईज माहौल बन जाते हैं कि मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर कुछ समस्या है, कुछ समस्या का समाधान ढूंढना है, तो उनको पता है कि नंदिनी बैठी हुई है। और अन्य बच्चों की बात अगर मैं करती हूँ, तो मॉरिशस में हम लोग हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, फ्रेंच में कंफर्टेबल है। तो जो अलग बच्चे होते हैं, तो ये लोग जानते हैं कि नंदिनी कंफर्टेबल है हिंदी में कुछ ट्रांसलेट करने के लिए, जो जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। तो मैं एक माध्यम बनती हूँ कि मैं बच्चों का जो स्टडीज़ हैं, एकेडमिक या कल्चरल जितने भी होते हैं ना, जब आप भारत जाते हो, पहले कल्चरल शॉक, फिर अपनापन होते हैं, तो मैं ये सब संभालती हूँ।
1: क्या बात है। और रक्षिता, जब आप वहाँ पर, इस वक्त कितने साल हो गए हैं? जब
0: मेरी 2 साल हो गए हैं अभी। हाँ जी।
1: तो 2 साल में आपने क्या क्या सीखा, कौन कौन से कौशल आपने अर्जित किया वहाँ से?
0: वहाँ पे मैंने दूसरों से संवाद करना सीखा, दूसरी भाषा में संवाद करना सीखा, और साथ ही घर को चलाने में मैंने बहुत से कौशल प्राप्त किया है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ हमें खुद से खाना बनाना पड़ता है, अपने खर्चों की देखभाल करना पड़ता है, कैसे हम मैनेज करेंगे अपने टाइम मैनेजमेंट को।
1: मतलब आपको एक स्टाइपेंड मिल जाता है, तब उस स्टाइपेंड के हिसाब से आपको मतलब एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है।
0: जी जरूर। और हम अकेले भी नहीं रहते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ रहते, तो मिलजुल कर हमें एक टाइम प्लान करना चाहिए, एक मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि हम साथ में अच्छे से रह सके। और जहाँ भी जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे वहाँ की दुनिया होता है।
1: इस तरह से जी हाँ, श्रोतागण और दर्शकगण, इस वक्त इस बात की पुष्टि हो रही है कि जब मॉरिशन छात्र अन्य देश में पढ़ाई करने जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, वे लोग अर्जित करते हैं। खासकर घर मतलब वहाँ के अपार्टमेंट की सफाई करना, उसका रखरखाव रखना, मतलब बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, और ये न केवल ये जो दोनों छात्र इस वक्त यहाँ पर आई हुई हैं, न केवल ये लोग, बल्कि जो लोग अमेरिका में हैं, फ्रांस में हैं, यूके में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर दूसरे देश में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी एक, तो उन लोगों की भी एक ऐसी जीवन शैली है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, वे लोग

0: इससे जूझ रही है। अब डॉक्टर नंदिनी, आप हमें ये बताइए कि जिन जिन कौशलों के बारे में आपने बात की है, जैसे कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन, आपने अलग अलग जो कौशलों के बारे में आपने जिक्र किया है, आप हमें ये बताइए कि ये जो कौशल हैं, ये जो एडवांटेजेस हैं मॉरिशस के आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है मॉरिशस में, इसके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है
1: आज के युग में? जैसे दोनों संचार और ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरा मानना है, और एक अच्छा संवाद, एक अच्छा जो शोध है, रिसर्च और नए विचार के साथ मैं मानती हूँ कि किसी भी देश में प्रगति हो सकती है। तो अगर ये माइंडसेट फिक्स हो जाते हैं कि आपके पास ये सब है जो मैंने मेंशन किया है, तभी एक देश में आर्थिक विकास होती है।
0: कहने का मतलब ये है कि ये खासकर आपने लीडरशिप स्किल्स के बारे में बात की है। मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा संक्षिप्त में आप मुझे बताइए कि आपने अपने पीएचडी की है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, एग्जैक्टली किस टॉपिक को लेकर के आपने ट्रीट किया है?
1: जी, मैंने अपना जो टॉपिक था वो द पोर्ट्रेयल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया of the Indian indentured laborers with special reference with culture and Mauritius. तो इसमें मैंने दर्शाया है कि जो हमारी जो मॉरिशन मीडिया है उन्होंने जो हमारे जो गिरमितिया हैं जो भारत से आए हैं उनको कैसे दर्शाया है, जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशंस थी, जितने भी संघर्ष उन्होंने फेस किए हैं उस टाइम पे, तो मॉरिशन मीडिया ने उसको कैसे दर्शाया है, जनता को कैसे दिखाया है कि हमारे पूर्वज कैसे आए थे। अब मैंने क्या किया है, रिसर्च में मैंने दिखाया है कि जितने भी टेलीविज़न प्रोग्राम होते हैं, रेडियो में जितने भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, इनमें से कौन कौन से विषय हैं जो इंडेंचर लेबरर्स, जो गिरमितिया से रिलेटेड हैं, तब जाके मैंने फिल्टर आउट किया और मैंने रिसर्च में दिखाया है कि इतने इतने नंबर्स आए, इतने इतने संख्या में रिसर्च हुए हैं। और मैंने दिखाया भी है कि हमारे जो मॉरिशन मीडिया है आजकल, अगर मैं एमबीसी की बात करूं या प्राइवेट चैनल की बात करूं, कितनी रिसर्च अभी तक बाकी है। हम लोगों को बहुत कुछ काम करना है। काम हुए हैं बहुत बहुत सारे, हुए आर्काइव्स में हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे नए पैटर्न, नए इनोवेशंस चाहिए इस फील्ड में।
0: पता है डॉक्टर नंदिनी, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा कि मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की ओर से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, अलग अलग जो विषयों को लेकर के बात करते हैं हम लोग। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि लोगों तक पहुंचाना है, जागरूक कराना है। लेकिन आप जैसे व्यक्ति जो रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको एक अलग तरीके से, एक अलग पर्सपेक्टिव, अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि फलाना ने ये किया, एक प्रोड्यूसर ने ये प्रोड्यूस किया, एक प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया, और आप उसको लेकर के एक वैज्ञानिक तरीके से उसका अनुसंधान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम जैसे लोग, कहने का मतलब है जो पत्रकार हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोग एक काम कर लेते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न कि हम लोगों को कुछ मिलना है। लेकिन जब आप लोग हमारे लिए कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मतलब एमबीसी की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। आप हमें बताइए रक्षिता भुजावन कि आपके जो कौशल, आपने मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात की है, वो किस प्रकार से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में गति लाने के लिए मददगार हो सकते हैं?
2: जैसे मैंने बात किया है टाइम मैनेजमेंट पर और बजट इन्वेस्टमेंट पर, वो हमारे टाइम मैनेजमेंट पर हमारे जीवन में हमें एक प्रोडक्टिविटी की ओर बढ़ाते हैं, उत्पादकता की ओर बढ़ाते हैं, हमें अपने जीवन पर कैसे अपने अपने समय को ब्रेक डाउन करना चाहिए ताकि हमें सफलता की ओर बढ़ा सके, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और जैसे मैंने बजट के बारे में बताया है, तो बजट हमारे देश में एक इन्वेस्टमेंट की तरह है और हमारे घर में, हमारे घरेलू कार्यों में हमें मदद करते हैं कि हम कैसे अपने फाइनेंशियल को, अपनी सैलरी को मैनेज कर सके।
0: मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो छात्र अन्य

0: देशों में, या फिर यहाँ पर पाए जाने वाले जो छात्र है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में भी पढ़ाई कर रही है, हम ऐसा नहीं कर रहे कि उसको मार्जिनलाइज करेंगे, वे भी ऐसे बच्चे, क्योंकि यहाँ के जो मतलब जो छात्र मॉरिशस के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अन्य विश्वविद्यालय जो मॉरिशस में पाए जाते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक मतलब एक सम ऑफ मनी दे देते हैं, तब वे उस पैसों को लेकर के वो मतलब कांट छांट करते हैं, चलिए इस पैसे को ट्यूशन के लिए रखेंगे, ये पैसे इसके लिए रखेंगे, उसके लिए रखेंगे, तो वे भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि छात्रों को पता होना चाहिए कि किस तरह से उसको अपना बजट करना चाहिए, और ये बजट स्किल्स जो हैं उसको वे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जब वे लोग बड़े होंगे या फिर जब वे लोग एक घर का खर्च वहन करेंगे, मुझे लगता है। अब एक घर को चलाने के लिए इन कौशलों का होना आपको लगता है ज़रूरी है?
1: बिल्कुल, एक घर हो या देश हो, अगर दोनों अच्छे संवाद और सहयोग के साथ जैसे काम करते हैं तो बिल्कुल चला सकते हैं, और ये घर चलाने में ज़्यादा मजबूत बन जाता है, घर ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं, मेरा ये मानना है।
0: और आपके हिसाब से रक्षिता?
2: जी ज़रूर, अगर साथ में काम करते हैं और साथ में एक दूसरे की मदद करते हैं तो एक घर बहुत खुश रहते हैं, और साथ में काम करने से लोग साथ में ही रहते हैं,
0: एक यूनिटी, एक एकता,
2: एक साथ।
0: अब डॉक्टर नंदिनी जुमक, आप हमें ये बताइए कि उच्च शिक्षा यानी कि हायर स्टडीज पूरा कर लेने के बाद युवा जब स्वदेश लौटते हैं तो अक्सर एक रोल मॉडल बनते हैं अपने छोटों को मोटिवेट करने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप गाइडेंस भी देना शुरू करते हैं, मार्गदर्शन भी बन जाते हैं, क्योंकि आप एक सीनियर, खासकर अपने फैमिली अपने परिवार में आप एक सीनियर बन जाते हैं, एक रोल मॉडल बन जाते हैं, और आपके जो चाची हैं, जो मौसी हैं, जो मामी हैं, वो कहते हैं चलिए उन्होंने वहाँ पर जाकर के पढ़ाई की, वो वापस आ गए, तुम भी अपनी पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए, तुमको भी मौका मिलेगा विदेश जाने के लिए। तो आपके साथ ऐसी स्थिति हुई है?
1: हाँ हुई है, अभी तक होता है, मुझे लगता है पूरी जिंदगी होगा। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपने अनुभव से किसी को प्रेरित कर सकती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जैसा आपने बोला रोल मॉडल, जब मैं भारत में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे जितने भी नीस हैं, नेफ्यूज हैं, कजिन्स हैं, भैया बहन हैं, ये लोग बहुत मानते थे मुझे कि अच्छा ये कुछ कर रही है भारत में, ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव है परिवार का, तो मुझे एक जैसे एक रोल मॉडल की तरह देखती थी। अब जब आपके ऊपर ये प्रेशर आते हैं कि मैं रोल मॉडल हूँ, तो ये जैसे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा ही करना है, इससे आगे कुछ नहीं, अच्छा ही करना है,
0: डगमगाना नहीं है।
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: और जब मैं मॉरिशस वापस आई तब ये ज़्यादा प्रेशर मुझे फील हुआ अंदर से, अच्छा PhD कंप्लीट हो गया, अब बच्ची नहीं रही है, अब ज़्यादा बड़ी हो गई है, जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, तो ये चीज़ बहुत जैसे सत्य है, इसमें कुछ झूठ नहीं है कि लोग आपको बहुत डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। तो रोल मॉडल हम लोग हैं, और ये जैसे इम्यून हो जाता है कि रहना ही है ऐसा, अगर ये स्थिति खराब हो जाते हैं तो हम लोग नजर नहीं मिला पाएंगे।
0: बिल्कुल, मतलब आपको अपना जो डिसिप्लिन है उसको बनाए रखना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है रक्षिता?
2: जी जरूर होता है, मेरे बहुत ऐसे कजिन्स हैं जो बहुत छोटे हैं, और मेरे मामी उनको बोलते हैं कि उनको देखो वो भारत चले गए हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको एक रोल मॉडल की तरह मानो और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। तो मेरे साथ भी बहुत ऐसे होता है, और मुझे भी अपने जीवन में एक अनुशासित जीवन जीना है कि आगे भी उनको प्रेरित कर सकें ताकि वे आगे बढ़ें।
0: जी हाँ बिल्कुल, अनुशासन प्रियता ये एक मूल मंत्र है उन छात्रों के लिए जो इस वक्त उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मॉरिशस में हो या फिर मॉरिशस से बाहर विदेश में, तो और ज़्यादा वो अनुशासन प्रियता को बरकरार रखना पड़ता है, क्योंकि आप खुद अपने माता पिता होते हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर से मिलेंगे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्यों मॉरिशन युवाओं को फिर से वापस आकर के देश की अर्थव्यवस्था में गति लाना ज़रूरी है।

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ ऐसे दो मेहमान हैं जहां

0: पर एक अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर लेने के बाद वापस आ गए हैं, और साथ ही साथ एक ऐसी शिष्या है जो इस वक्त अपनी पढ़ाई कर रही है। फिर से स्वागत किया जाता है आज की चर्चा कार्यक्रम में, और हम बात कर रहे हैं कि क्यों मॉरिशन नौजवानों को वापस आकर के देश के आर्थिक विकास में, देश को और ज़्यादा विकसित करने में उन लोगों का योगदान होना ज़रूरी है। न केवल विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र, बल्कि मॉरिशस के यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उन लोगों को क्यों मॉरिशस में ही रह करके अपने देश के विकास के लिए उन लोगों को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, और ऐसे ऐसे नवाचार विषय लेकर के आकर के अपने देश को और ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी झुमक हैं, साथ ही साथ रक्षिता भुजावन्ना, फिर से स्वागत किया जाते हैं आप दोनों का। आप हमें ये बताइए डॉक्टर नंदिनी, जो लोग विदेश में जाकर के पढ़ाई करते हैं और जब वे लोग लौटते हैं तो देश के लिए एक एसेट बन जाते हैं, जो छात्र मॉरिशस की धरती में रहकर भी पढ़ाई करते हैं वे भी एक एसेट के लिए के रूप में भी देखने को मिलता है उन लोगों को, तो क्या आपको लगता है कि एक एसेट होने का पूरा फायदा उठाना ज़रूरी है?
1: जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर शिक्षित युवा एक देश के लिए एक अमूल्य संपत्ति होती है। ठीक है, जब हम लोग वापस आते हैं तो हम लोग ना केवल एकेडमिक स्किल्स को लेकर वापस आते हैं, हम लोग बहुत अनुभव लेकर आते हैं,
0: पूरे पैकेज के साथ,
1: एक होल पैकेज लेकर आते हैं। जब हम लोग अब आ गए हैं तब इसमें जो होता है कि अगर हम लोग देश की सेवा करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस क्षेत्र में उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, तभी जाकर देश में प्रगति होती है। अब देश में, यहाँ मॉरिशस में एक छोटा टापू है, लेकिन अफ्रीकन हब में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो मॉरिशस में बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत ऐसे काउंसिल हैं। अगर मैं मॉरिशस रिसर्च काउंसिल की बात करूँ तो उसमें बहुत स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलते हैं, ताकि जो जितने भी युवा हैं, चाहे मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ, पोस्ट ग्रेजुएट या मेरे जैसे पीएचडी होल्डर्स में, हम लोग जाकर उधर अपना जो रिसर्च प्रपोजल है हम लोग प्रपोज करते हैं सरकार को कि हमारे पास ये है, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, और हम लोग इसमें कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और उधर क्या होता है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है काउंसिल के, आपको सुनते हैं कि ठीक है आपके पास ये आइडिया है, अब हम उस आइडिया को लेके कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आइडियाज़ बहुत ही होते हैं, अगर आप किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो और ज़्यादा जानकारी मिलते हैं। तो एनजीओस में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपने जो स्किल्स हैं, आपके जो ज्ञान है, आप उसको बांटिए, और मॉरिशस के जितने भी क्षेत्र में है, या चाहे वो इंफॉर्मेटिव के इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में, उसको हम लोग इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल एक एसेट होते हैं, क्योंकि जब हम लोग भारत में ही होते हैं तो हम लोग एक एसेट मॉरिशस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मॉरिशन हो।
0: बिल्कुल,
1: तो अब मान लीजिए आप वापस ही आ गए हो तो एम्बेसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है।
0: मुझे लगता है एक कौशल डेफिनेटली हम मॉरिशन भारत में सीख करके आते हैं, वो है बार्गेनिंग।
1: जी
0: बार्गेनिंग मुझे लगता है, क्योंकि सुबह अपार्टमेंट से निकलने के बाद रिक्शे वाले के साथ हम बार्गेनिंग करते हैं,
1: झगड़ा बहुत करते हैं।
0: बिल्कुल, कचौरी से लेकर के पानीपुरी तक, पानीपुरी से लेकर के बाजार में, मंडी में, जहां पर भी है वहां पर हम बार्गेनिंग करते हैं। और ये बार्गेनिंग स्किल हम लोग यहाँ पर आकर के, जब हम मार्केटिंग की दुनिया में आते हैं, एडवर्टिजमेंट की दुनिया में आते हैं, वो मार्केटिंग स्किल्स, वो बार्गेनिंग जो हम लोग चांदनी चौक के सड़क पर कर रहे थे, वही मार्केटिंग स्किल बन करके यहाँ पर आकर के हम उसका बहुत ही डिप्लोमेटिकली तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं।
1: ये आपने बहुत बिल्कुल सही कहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आपके हिसाब से मॉरिशस के जो नौजवान जब अपनी पढ़ाई करके वापस आते हैं तो आपको लगता है कि वे लोग एक एसेट के रूप में उसको, उसका फायदा उठाना जरूरी है?
2: जी हाँ जरूर, जैसे कि डॉक्टर नंदिनी ने कहा कि युवाओं को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलते हैं अपने

0: स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को दर्शाने के लिए।
1: जी
0: तो यहाँ इन युवाओं को सही अवसर, उचित मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म दिए जाए तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने व्यवसाय, तकनीक और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। वे न केवल सामाजिक योगदान देते हैं, अपने कार्यों में एफिशिएंसी भी लाते हैं। तो इन बातों को वे अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: और मुझे लगता है कि जब आप दूसरे देश में पढ़ाई करने जाते हैं, जब आप आपको एक एक छोटा सा मतलब जख्म हुआ है या फिर आप बीमार पड़ गए हैं, तो आपको खुद अपना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपके
0: जी
1: आसपास न न माँ है, न पिताजी है, न बड़े भाई हैं।
2: उस टाइम पे तो हम खुद माँ बहन
0: सब कुछ
2: पापा
0: बनवाते
2: मम्मी
0: हैं।
2: दादा दादी सब होते हैं।
1: आप
0: सब
1: कोविड के
0: बनवाते
1: टाइम
0: हैं।
1: थे वहां पर,
2: हाँ
1: और किस तरह से आपने उस गंभीर स्थिति को आपने संभाला है?
2: तो उस टाइम पे मेरा जो मास्टर्स था वो कंप्लीट हो गया था,
1: उस समय आप मास्टर्स कर रहे थे?
2: 2020 में कंप्लीट हो गया
1: हो
2: था।
1: गया था, ओके।
2: लेकिन जब कोविड आया तो हम बस मॉरिशन के लिए फ्लाइट नहीं था।
1: अच्छा।
2: तो मुझे अगर याद है तब मैं बनारस में पढ़ रही थी, तो हम लोग 15-16 मॉरिशन थे, तब हम लोग उधर रहे। और आप यकीन नहीं करोगे कि जो हमारा जो पढ़ाई के टाइम था, अब हम लोग फ्री हो गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक आपसी बॉन्डिंग बना दिया मॉरिशन के साथ।
1: क्योंकि उस वक्त सब कुछ
2: हाँ
1: ठप पड़ गया था
2: हाँ तो
1: ना।
2: हम लोग कोविड में थे भारत में, और मैं 1 साल बाद मॉरिशस आई थी।
1: अब आप हमें ये बताइए रक्षिता, जब एकेडमिक ज्ञान के अलावा विदेश से लौटने वाले जो छात्र हैं अपने साथ कल्चरल नेटवर्क भी लाते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी, वे विभिन्न देशों की संस्कृति, काम करने के तरीके और सोचने का तरीका और अपनी जीवन शैली को समझकर आते हैं। इससे वे अपने देश में एक नया और आधुनिक दृष्टिकोण, जैसे कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव लाते हैं। वे अलग-अलग देशों के लोगों से बने अपने संपर्क, अपने नेटवर्क को व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और अपने रोजगार के अवसरों बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं।
1: आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म को लेकर के आपने भी बात की है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर उनके जो आर्थिक स्तंभ हैं उनमें एक है ट्रैवल एंड टूरिज्म, पर्यटन
0: जी
1: क्षेत्र, देशाटन, और इसको लेकर के आपको क्या लगता है, क्या हम लोग इस क्षेत्र को आपके जो स्किल हैं मतलब इम्प्लीमेंट किया जा सकता है?
0: जी वहाँ जब मैंने बहुत घूमा है अपने
1: आपने बहुत हाँ डेफिनेटली, भारत एक ऐसे
0: जी
1: देश है, जब हमारे पेरेंट्स हमको पैसे देते, वो कहते थे मॉरिशस आइए छुट्टी मनाने के लिए, हम कहते थे पैसे हमें वापस दीजिए, हम वहाँ पर जा करके
0: हाँ
1: अन्य जो प्रदेश है वहाँ पर
2: एक्सप्लोर
1: एक्सप्लोर
0: करेंगे
1: करेंगे।
0: जी
1: हाँ, तो
0: जी
1: ऐसा हुआ आपके साथ?
0: जी तो वापस आके मैं देखती हूँ कि यहाँ पर भी बहुत सारे भारतीय जनता हैं जो मॉरिशस जानते हैं और यहाँ पर घूमते हैं। तो वे अपने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, फॉरेन एक्सचेंजेस और अपनी भाषा को यहाँ पर और बढ़ावा देते हैं। और उनको वे जानते भी हैं कि मॉरिशस एक ऐसे देश है जो भारत से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ जाके और उनकी ऐसे जैसे उनकी रीतियों, रिवाजों, उनकी भाषा को सीखने से यहाँ पर आकर उनको ऐसे देखना कि वे अपने संस्कृति को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जो अपने युवाओं को टूरिज्म की ओर और बढ़ाएं और उनको मॉरिशस को एक
1: हब के
0: अंतर्राष्ट्रीय
1: रूप
0: हब के
1: में
0: रूप में देखें।
1: तब्दील करें। हाँ, और
0: जी
1: आपके लिए जब मतलब कल्चरल नेटवर्क के बारे में बात करें, आपने कहा कि आप मॉरिशस में रह करके भी अभी भारत का एक एसोसिएशन में, तो किस तरह से आप उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं?
2: मेरा अभी जब मैं मॉरिशस वापस आई हूँ तो वर्कलोड

0: ज्यादा हो गए, क्योंकि जब मैं भारत में थी तो मैं फिजिकली प्रेजेंट थी, तो मैं काम संभालती थी, मैं मीटिंग्स में जाती थी, मैं चीज़ों इवेंट्स को लीड कर सकती थी फिजिकली. अब जब मैं मॉरिशस आई हूँ तो सब कुछ जैसे ऑनलाइन हो गए,
1: वर्चुअली सब कुछ.
0: वर्चुअली, और इसमें संवाद बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है. अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप कैसे संवाद करोगे कि ठीक है इस समय ये करना है, उस डेट पे ये प्रोग्राम होना है. तो इसमें हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, अगर कौशल के बात करते हैं, इसमें ये अप्लाई होता है.
1: अच्छा,
0: तो यहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाता है और कम्युनिकेशन का जो वो का जो एकदम वेट है उसको कैरी करना है. तो अगर मैं अपने बात इसमें पर्सनल चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ, मुझे बहुत प्रेशर फील होते हैं दिमाग में कि भा मैं यहाँ पे हूँ और मेरे जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो भारत में हैं, तो ये लोग कैसे काम संभाल रहे हैं. कभी कभी गुस्सा भी आता है. कंट्रोल में रहना चाहिए कि अच्छा ठीक है कंट्रोल, आपको ये करना है, आपको काम को चलाना है, एट द एंड ऑफ द आपको अपना काम चलाना है.
1: बिल्कुल. स्वदेश लौटने के बाद कैसे एक नौजवान इनोवेटर्स बन करके आते हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं एज एन इनोवेटर?
0: देखिए, जब आप भारत में होते हैं या किसी भी देश में होते हैं तो आप अनुभव लेकर आते हैं, ठीक है, आप स्किल्स लेकर आते हैं. तो उस स्किल्स को, उस अनुभव को जब आप अपने देश वापस आते हैं तो आप उसका आप देखते हैं, आप खोज करते हैं, आप शोध करते हैं कि किस क्षेत्र में उसका प्रयोग होगा. तब जाके आप उसका सही प्रयोग कीजिए. मान लीजिए अगर आप गाड़ी सीख रहे हो, ठीक है, और आप मॉरिशस में आके आपको पता है कि ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? जब आपके पास वो डिफरेंट टैलेंट है तो आप खोज कीजिए. इसलिए खोज शोध बहुत ज़रूरी है इस इनोवेटिव, इस इनोवेशन को लाने के लिए. तब जब आप शोध करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है इस क्षेत्र में, इस फील्ड में ये कमी है, तो मैं अपना जो अनुभव है, मैं जो अपना स्किल्स है, मैं उसमें लागू करती हूँ. तभी देश में इनोवेशन नया होता है, नए विचार होते हैं. मेरा ये मानना है,
1: मतलब देश के आर्थिक विकास में, देश को आगे बढ़ाने में रिसर्च पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है. जी हाँ, ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको पता नहीं होता है कि अब मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद, अपने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अपने अंडर ग्रेजुएट करने के बाद मैं क्या करूं. तो आप रिसर्च पर ज्यादा से ज्यादा अपना समय बिता सकते हैं. मॉरिशस एक छोटा देश तो है, लेकिन यहाँ पर रिसर्च यानी कि शोध करने की अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं बहुत हैं, एवेन्यूज बहुत हैं, और इसको लेकर के अगर आप काम करना शुरू करेंगे आपको लगेगा कि आपके पास टाइम नहीं है. जिस तरह से अभी डॉक्टर नंदिनी झुमक ने कहा, ये 8 साल कैसे निकल गए उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर वे काफ़ी एंगेज थे रिसर्च को लेकर के. आप हमें ये बताइए रक्षिता, इनोवेटर्स बन करके वापस आकर के देश के लिए क्या किया जा सकता है?
2: हम एक नौजवान की तरह हैं और हम एआई, आजकल एआई बहुत प्रयोग किया जा रहा है. हम नौजवान एक एआई और चैट जीपीटी जैसे एआई को यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं. हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर अपना सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं.
1: ये बहुत अच्छी बात है.
2: हाँ, हम एक बिजनेस को ओपन कर सकते हैं ताकि हम कुछ नए उपयोग को प्रस्तुत करें.
1: उन्होंने बिजनेस के बारे में बात की है, हम बात कर कहना चाहेंगे थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बारे में. किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आप लोगों ने एक्वायर किया है, और उस लौटते समय, यहाँ पर लौटने के बाद आप किस तरह से डॉक्टर नंदिनी झुमक सोच रहे हैं कि चलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल मैंने भारत में सीखा, अभी एक मैंने बार्गेनिंग मार्केटिंग के बारे में बात की है, इसके अलावा
0: पढ़ाई के दौरान या ऑर्गेनाइजेशन संभालने के दौरान में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बहुत सीखे हैं. इसमें मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग।

0: इसमें मैंने बहुत अपना टाइम स्पेंड किया है और उसको मैंने बहुत लागू किया है. अब जब आप वापस आते हैं या अब खुद अपने ज़िंदगी में आप फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो ये जितने भी स्किल्स हैं आपका जैसे एक गाइड बन जाते हैं.
1: बिल्कुल
0: ठीक है. अब आप हम लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर के बात करते हैं, तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर मैं बोलती हूँ कि उनके पास ऐसे स्किल्स होना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सके. तो अगर आपके पास सही डिसीजन मेकिंग स्किल्स होता है तो आप बहुत आसानी से अपने बिजनेस लीड कर सकते हो, आप देश के लिए एक बहुत अच्छी एसेट बन सकते हो.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: लेकिन अगर आपके पास खुद टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप लेट से उठते हो, आप मीटिंग में लेट हो गए हो, तो लोग आपको अच्छे नजरिए से नहीं देखेंगे. आप लोग देखेंगे कि ये झूठ मूठ का एंटरप्रेन्योर है. लेकिन अगर आप सही डिसिप्लिन अनुशासन के साथ आप डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो, तो आप एकदम मजबूत होके समाज में आते हो.
1: और आपके लिए आपके अनुसार विचार क्या है?
2: मेरे अनुसार बजट, हम बार्गेनिंग के अलावा में बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल आते हैं. जैसे कि वहाँ पर जाके हम संवाद करते हैं उन दुकानदारों से, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतना ज़्यादा है कि वो हमें इमोशनली उनके भावों में डाल देते हैं.
1: खासकर साड़ी खरीदते समय.
2: जी जरूर.
1: हाँ बिल्कुल.
2: हमें इमोशनली इन अपने भावों में डाल देते हैं कि हम खुद जाके वो साड़ी खरीद भी लेते हैं, एक ऊंचे प्राइस में भी खरीद लेते हैं. तो मुझे भी लगता है कि ऐसे लीडरशिप होना चाहिए, ऐसे आत्मविश्वास होना चाहिए कि अपने ग्राहकों के साथ अट्रैक्ट करना चाहिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: ताकि हम भी उनको अपने मुट्ठे में डाल सके.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप के सबसे महत्वपूर्ण स्किल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने जो प्रोडक्ट है उनको बेचना है. बिल्कुल. और उस प्रोडक्ट को लेकर के जो मार्केटिंग आप करेंगे, जो जिस तरह से आपने कहा, उस आप उस ग्राहक को अपने झांसे में लाना बहुत ही जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. अब हम बात करना चाहेंगे संक्षिप्त रूप में, क्योंकि बस 5 मिनट बाकी हैं. अल्फा जनरेशन आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये लोग हमारे देश के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग हमारे देश के कर्णधार हैं, भविष्य के कर्णधार हैं?
0: मेरा ये मानना है, मुझे अल्फा जनरेशन को बोलना है कि आप लोग ज़्यादा पढ़े. ठीक है, आप खोज कीजिए, आप शोध कीजिए,
1: घुमा फिरा करके रिसर्च करना जरूरी है.
0: हाँ
1: बिल्कुल.
0: आपको यही करना है और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कीजिए, क्योंकि हमारे टाइम में टेक्नोलॉजी था, मैं नहीं बोल रही नहीं था, लेकिन उतना जो जैसे
1: एडवांस
0: तरीके से है अभी, हर चीज में, असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट्स में चैट जीपीटी है. हमारे टाइम में नहीं था. जब मैंने PhD किया तो चैट जीपीटी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें प्लैजरिज्म होती है. तो मैं अल्फा जनरेशन से कहूंगी कि आप हार मत मानिए. ठीक है, सपने पूरे होते हैं लेकिन बहुत लगन और मेहनत के साथ.
1: और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अल्फा जनरेशन? तो आप खुद अल्फा जनरेशन.
2: मैं खुद एक अल्फा जनरेशन हूँ और अभी के लिए मेरे लिए ChatGPT बहुत ही यूजफुल है, पर उसका प्रयोग उचित तरीके से करना चाहिए. और मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, ChatGPT है, कंप्यूटर्स हैं, AI है, लेकिन हमें खुद से काम करना चाहिए, क्योंकि AI सब कुछ नहीं होता. और हमें पुस्तकों का प्रयोग भी करना चाहिए ताकि हम और जान सके.
1: जाते जाते डॉक्टर नंदिनी जुमा का आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत ने मुझे शिक्षा दी है और मॉरिशस ने मुझे पहचान दी है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हार मत मानिए. जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे आप मॉरिशस में पढ़ रहे हो, भारत में पढ़ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया या विभिन्न देशों में पढ़ रहे हो, आप एकदम डेडिकेशन के साथ, एकदम जैसे फर्म होके आप आगे बढ़े और अपना स्टडीज़ कंप्लीट कीजिए और वापस अपने देश आइए, क्योंकि आपकी देश को आपकी ज़रूरत है. जब आप देश वापस आओगे, हार नहीं मानोगे, तब आप बहुत खुद आगे बढ़ पाओगे.
1: और रक्षिता जी,
2: मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप पर विश्वास रखें और

0: किसी भी डेडिकेशन अपने डेडिकेशन के साथ अपना काम करें, अपने शिक्षा को पूर्ण करें, बाहर जाएं, अपने पढ़ाई करें, घूमें फिरें, मस्ती करें, अच्छे से पढ़ाई करें और वापस आकर अपने देश की सेवा ज़रूर करें। और हमारे देश बहुत ही सुंदर है। मैं बाहर अभी पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन अपने देश की बहुत याद करती हूँ। तो आप वापस आकर अपने देश की सेवा करें और अपने लिए बहुत आगे की सोच करें। आप डरिए मत, अपने आप पर विश्वास बनाए रखें, आप बहुत आगे बढ़ेंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल, अपने अपने जो विश्वास हैं उसको चट्टान की तरह मजबूत रखते जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रक्षिता कि आप यहाँ पर आए, आपकी जो छुट्टी है अच्छी तरह से हो, और जब आप भारत जाएंगे बनारस में मेरे नाम पर गोलगप्पे भी खा लेना। और नंदिनी झुमक डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं, और आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा MBC की पूरी टीम की ओर से। आप दोनों देश के भविष्य के कर्णधार हैं, इसी तरह से देश के आर्थिक व्यवस्था में आप लोगों का योगदान भी बहुत जरूरी है। तो श्रोतागण, दर्शकगण, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक कहावत है, यू नीड टू थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। इससे कहते हैं ग्लोकल कि आप अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव के साथ आप सोचिए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आप स्थानीय तरीके से करें। इससे देश की आर्थिक विकास होगा, देश की प्रगति होगी, और इसी तरह से आप अपने देश के योद्धा बनेंगे। जिस तरह से हम कहते हैं अहम अस्मि योद्धा न कदापि खंडितः, खंडित नहीं होने दीजिएगा अपने विश्वास को, अपने आप को योद्धा के रूप में अपने देश के जो चट्टान है मजबूत करते जाइए, उनके जो पिलर्स हैं उसको और ज़्यादा सुदृढ़ कीजिए। तब तक अभी उदय की ओर से नमस्ते और आदाब।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा से। करुणा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। अफ्रीका के सबसे छोटे द्वीपीय देशों में से एक सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी में हैं। सोमवार 29 जून को सेशेल्स अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे करेगा। इस अवसर पर 4 दिनों तक विभिन्न समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन समारोहों में भाग लेने के लिए सेशेल्स के स्टेट हाउस ने कई मित्र देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशेल्स के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर होंगे। वे इन समारोहों के मुख्य अतिथि होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी शनिवार को सेशेल्स पहुंच रहे हैं, जहां वे भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अफ्रीकी संघ, चीन और रूस के प्रतिनिधि भी समारोह में शामिल होंगे। आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिवस का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में SMEs की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। वित्त वर्ष 2026-2027 का बजट देश के आर्थिक परिवर्तन की रणनीति में SMEs और स्टार्टअप्स को केंद्र में रखता है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य नवाचारी और प्रतिस्पर्धी उद्यमों की एक नई पीढ़ी तैयार करना है, जो रोजगार सृजित करे और आर्थिक विकास को गति दे। विदेशी स्तर पर पाकिस्तान में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से भीतर 35 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल इस भूकंप से किसी बड़े जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें, मुकाबलों में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। अन्य रोमांचक मैचों में स्पेन ने यूरोग्वे को 1-0 से मात दी, जबकि सऊदी अरब और केप वर्दे का मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर रहा। इजिप्ट और ईरान के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। वहीं बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराया। आज रात 10 बजे क्रोएशिया और घाना तथा पानामा और इंग्लैंड की टीमों के बीच टक्कर होगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। बेलेआरिवियसेश में 75 साल के 75 श्री रसंगम पंजनादन श्री रसंगम पंजनादन जो सेल्वा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनकी पत्नी श्रीमती रोजी पंजनादन के मकान गुटवायाल बेलेआरिवियसेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वाजिलो ओलिविया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। मोसेलमा मोरियाल नंबर 1 कोहोमोडेल में 73 साल की 73-year-old श्री बातमानादन आमोडों जो माइवेन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके मकान नंबर 44 ऑन्ड्रियानम स्ट्रीट मोसेलमा मोरियाल नंबर 1 कोहोमोडेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही बुरीले वाली दिपैत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और कौम बुम्बाई नंबर 2 वाकवा में 79 साल की 79-year-old श्रीमती राजाम्बाल रामन जो माला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान कौम बुम्बाई नंबर 2 वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए थ्वामामेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। और कौंडिमास्क पावे गुटवायाल पेचित काबान में 60 साल की 60-year-old श्रीमती शोभा रामबाली पैदाइशी नाम दिग नारायण जो शोभा से जानी जाती थी

0: मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान रॉयल रोड पे चितकाबान कौदेवास कपावे से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर।

हदीस शरीफ में है कि एक दिन उम्मुल फजल बिन्त हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने रात बड़ा अजीब और भयानक ख्वाब देखा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बयान करो। खातून ने अर्ज़ किया, वो ख्वाब इस कदर डरावना और ख़तरनाक है कि मैं बयान नहीं कर सकती। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया, कोई मज़ायका नहीं, तुम अपना ख्वाब ज़रूर बयान

करो। अर्ज की, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे अतहर का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया है। शाह मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें इस कदर घबराहट की क्या ज़रूरत थी, ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है। अल्लाह ताला मेरी नूर नज़र फ़ातिमा रदल्लाहु ताला अन्हा को बेटा अता फरमाएगा जिसे तुम गोद में उठाओगी।

एक दिन हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने दाएं बाजू और अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाएं बाजू पर बिठाए हुए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, खुदाबंद ताला इन दोनों को आपके यहाँ यक जाना रहने देगा, इनमें से एक को वापस बुला लेगा। अब उन दोनों में से आप जिसे चाहें पसंद फरमा लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुखसत हो जाएं तो उनके फिराक उनकी जुदाई में फ़ातिमा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मेरी जान सोजी होगी, और अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफात पा जाएं तो ज़्यादा अलम मेरी जान पर ही टूटेगा, इसलिए मुझे अपना गम ही पसंद है। इस वाक़े के 3 रोज़ बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफात पा गए। जब भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी पर बोसा देते और खुश आमदीद कहते हुए फरमाते, इस पर मैंने अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बान।

वाकया करबला एक दावती तहरीक, एक ऐसी तहरीक जो इस्लाम के लिए खज़ राह की हैसियत रखती है। ये एक मज़मून है जिसे लिखा है हज़रत सादिक रिज़ा मिसबाही दामत बरकातुहुम अलैह ने। उसके चंद निकात, चंद पॉइंट्स हम आपको गोश गुजार कर आए हैं। वो लिखते हैं, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा, बल्कि शायद ही कोई इंसान होगा जो जिगरे गोशे बतूल नवासे रसूल शहजादे अली मुर्तज़ा हज़रत इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला के इस्म गिरामी से वाकिफ़ न हो। एक तो इसलिए कि वह आकाए कायनात हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदल्लाहु ताला अन्हा के लख्त जिगर और खलीफ़ चहरम हज़रत सैदना अली मुर्तज़ा

तो ज़ा रदल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे थे, और दूसरे इसलिए कि ख़ुद इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला अन्हु उनके रफ़ुक़ा और पूरा वाक़िया करबला क़ुरबानियों के इस्तियारों के तौर पर तारीख़ के माथे पर हमेशा झूमर की तरह लटका रहेगा। बिलाशुबा इनकी अज़मतें इन शख्सियतों की मरहूने मिन्नत हैं, मगर इन सब के बावजूद अहम और काबिल क़द्र अज़मत व रिफ़त उनका वो कारनामा है कि जिसकी वजह से उनकी मुबारक शख्सियत हर हकीकी मुसलमान के फ़िक्र व शऊर का हिस्सा है। आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ुरबानियाँ और काविशें इस्लाम की रगों में लहू बनकर

बहकी ने जमील बिन मर्रह से रवायत किया कि उन्होंने कहा, शहादत हुसैन के दिन यजीद के लश्कर वाले हज़रत इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला के लश्कर से कई ऊँट पकड़ कर ले गए। उन्होंने उन्हें ज़बह किया और उन्हें पकाया तो वो इंद्राइन के जैसे हो गए, इतने कड़वे कि कोई भी उनमें से कुछ भी न खा सका। अबू नईम ने सुफियान की सनद से उनकी दादी से रवायत किया कि दो शख्स जो हज़रत इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला की शहादत में शामिल थे, उनमें से एक शख्स का अलाए तनासुल इतना बढ़ गया कि वो उसे अपनी कमर के गिर्द लपेट लिया था, दूसरे को इतनी प्यास लगती थी कि वो छोटा तालाब भी पी जाता फिर भी प्यास न बुझती थी।

खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रदल्लाहु ताला अन्हा ने अपने नौनिहाल को ज़मीन करबला में खून बहाने के लिए अपना खून जिगर पिलाया। अली मुर्तज़ा रदल्लाहु ताला ने अपने जिगर को करबला की ज़मीन में दम तोड़ने के लिए सीने से लगा कर पाला। रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने राह खुदा में जान नज़र करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला को अपने आगोश मोहब्बत में तरबियत दी। हज़रत इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला बड़े होते गए, जज्बा जानिसारी में रोज़ अफजू अजाफा होता गया। यह शहादत का कमाल है, ऐसा ऐलान आम हुआ कि अपने पराए सब जान गए, मकाम से आगा हो गए, हक्का तलब मौला की रजा के आगे सर तस्लीम खम।

काफिला हुसैन रदल्लाहु तआला का जब तमाम असासा लुट गया, भाई जुदा हो गए, बच्चे शहीद हो गए, खेमों में आग लग गई, यजीद की फौजें चारों तरफ से हुसैन रदल्लाहु तआला की जान लेने के लिए आंधी की तरह उठी। दसवीं मुहर्रम का दिन आ गया, जिस दिन खानदान अहले बैत का निगहबान हज़रत इमाम हुसैन तन तनहा तलवार लिए मुकाबला पर खड़े थे। वो हुसैन जो दोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवारी करते, उन्हें जाम शहादत पिला दिया गया। करबला की संगीन वादी तड़प उठी, फरात की लहरें जम गईं, पहाड़ों पर जलजले तारी हो गए, जमीन व आसमान गर्दिश में आ गए, अरश जमीन कांप उठा, तारीख का काफिला रुक गया, अहले बैत का निगहबान सब कुछ लुटा के खुद शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति। मार्सेल मॉन सेंट एंड्रे और हैमलेट रोड, डीएवी कॉलेज और लोलो हाइपर मार्केट के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 28 जून को सुबह के 8 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सेबी इस असुविधा के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
4: बालानंदम, బాలానందం అనే తెలుగు కార్యక్రమానికి స్వాగతం. స్వాగతం మన రేడియో మారిషస్ ఛానల్ మీద. మధ్యాహ్నపు వేళ 12 గంటల దాటి 15 నిమిషాలు 45

प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज शिव छत्रपति महाराज।

0: 890 kilohertz. This is Radio Marches.
1: नमस्कार, आपका हमारा साथ है रेडियो रेडियो मॉरिशस पर, और रेडियो मॉरिशस पर हमारी आपकी मुलाकात प्यारी प्यारी सी हो रही है। लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं कि आपका दिन आज का बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा, सेहत आपकी बहुत अच्छी होगी, मूड आपका बहुत अच्छा होगा, खुश खुश रहेंगे आप और संतुष्ट रहेंगे आप। आपके नाम में लेकर आएंगे हम आपकी पसंद कार्यक्रम, और आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका करेंगे स्वागत।
2: आपकी पसंद
1: प्रोग्राम हमारा सजेगा आपकी पसंद के गानों के साथ। सो आप हमें फ़ोन कीजिएगा 4028085 पर, या फिर हमें मैसेजेस भेजिएगा 5251700 पर। हमें सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं, साथ साथ रहेंगे आपके हम 4 बजे तक। और फिलहाल एक ऐसा गाना हम पेश करेंगे आपके लिए जो हम जानते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं को पसंद आएगा, इसीलिए हमने ये गाना हमारे सभी श्रोताओं के नाम करने के लिए चुना है। तो चलिए अनाड़ी मूवी का ये गाना सुनिए, गुनगुनाइएगा।

मौसम की क्या बात कीजिए, मौसम तो ठंड वाला आया है और इस पर आपको प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे, लेने ही होंगे, हमें भी इस ठंड से लड़ना होगा क्योंकि इसमें इसकी अच्छाई भी है, इसकी थोड़ी बहुत मुश्किलें भी हैं। मुश्किलों का सामना कर लीजिए और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पर ज़रा गौर कीजिएगा। चलिए हम आपके पसंद कार्यक्रम में जो पेश करने जा रहे हैं इस बार वो होगा दिल ही तो है मूवी का गाना। ये गाना हम पेश कर रहे हैं गायत्री जी के लिए जो नोवेल फ्रांस की रहने वाली है, उनके बेटे अजय के लिए, मेबा की मामी कल्याणी मोहन जी के लिए, फिर लॉन्ग माउंटेन की भाभी शकुंतला जी के लिए, नोवेल फ्रांस की सखी गीता बाई जी के लिए, और यही गाना हम पेश करते हैं खोगुप की सुनीता जी के नाम। इस वक्त सुबोध धनपत जी वाकुआ में हैं और वाकुआ के रहने वाले हैं और इस वक्त सोफे पे बैठे बैठे कंबल ओढ़कर ठंड का मज़ा ले रहे हैं और गानों का भी मज़ा ले रहे हैं। तो सुबोध धनपत जी आपके नाम हम ये गाना करते हैं, मुकेश सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है।

0: ना।
1: अकेले न जाने की ये इल्तिजा है या फिर छेड़छाड़ का ये मौसम है, जरा गौर कीजिएगा। इस समय 2:27 हुए हैं, हमारी आपकी मुलाकात आपकी पसंद कार्यक्रम में हो रही है, बहुत प्यार से, बहुत ही गहराई के साथ। चलिए ज़रा हम इस बार सुनते हैं तकदीर मूवी का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और ये गाना हम ईश्वरी जी के लिए बजवा रहे हैं। ईश्वरी जी ने गुडलैंड से इस गाने की फरमाइश की है, प्रेंदी पापा की अपनी बहन विश्वानी जी के लिए और उनके बेटे आतिश के लिए, फिर गुडलैंड के पूरे बंसी परिवार के लिए।

हमारे श्रोताओं के बीच हमें जितनी मोहब्बत मिलती है उस मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। फिलहाल हम चलेंगे गाइड की ओर और गाइड फिल्म का ये गाना हम मौदालविया की मालिनी जी के नाम करेंगे। मालिनी जी ने ये गाना मांगा है अपनी बेटी छाया के लिए, अपने पति इंद्रजीत के लिए, अपनी माँ के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए जरा बर्थडे मनाते हैं हम कमल जी का। कमल जी का बर्थडे है आज और पोंफे से उनकी माता जी गीता, उनके पापा रोहित, उनकी पत्नी जानिक, बेटी जानवी, भाई राजीव और रवि, दो भाभियाँ, उनके भतीजे आदित्य, आरव और तनिष, उनकी मौसी मीला और न्यूग्रो से उनको बहुत सारी खुश शुभकामनाएँ दे रही है, खुश रहने की दुआएं दे रहा है पूरा परिवार और पूरे परिवार की ओर से ढेर सारी मंगल कामनाएं कमल जी को। तो चलिए गीता जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद उनके बेटे के नाम।

शांति जी ने फोन किया, बताया कि उनकी बेटी रेशमा का है जन्मदिन आज। उन्हें बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही हैं शांति जी, और रेशमा जी को उनके पति, उनके बच्चों की तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएं, उनकी दो बहनों की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। शांति जी का ये भी कहना है कि उनकी बेटी रागिनी का बर्थडे बुधवार को था, और रागिनी जी को भी बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं शांति जी। रागिनी जी को मंगल कामनाएं उनकी दो बहनों की तरफ से, उनके पति की तरफ से और उनके बच्चों की तरफ से। तो रागिनी जी आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, रेशमा जी आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले, आपको बहुत सारा आशीर्वाद आपकी मामा शांति की तरफ से प्राप्त है।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: आपकी पसंदों से घिरे हुए हैं हम, आपकी पसंदों को आप तक पहुंचा रहे हैं हम, चिन चिन के गुलदस्ता बना रहे हैं आपकी पसंदों का हम, और इनमें से हर एक फूल आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे कश्मीर की कल्ली मूवी का एक गाना हम पेश करेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये गाना हम पेश कर रहे हैं धनी जी के लिए, जो बॉश के रहने वाले हैं। यश और हेमिश के लिए उन्होंने ये गाना मांगा है।
2: वे दुनियाओं से की

और आपकी पसंद कार्यक्रम में इस बार हम आफेज जी की पसंद का गाना चलवाएंगे, लावेनिया के आफेज जी हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेना बहुत पसंद करती हैं और गाने सुनना भी बहुत पसंद करती हैं। तो आफेज जी, आपने मांगा है जो गाना, वो गाना हम बताएं आपको, दिल अपना और प्रीत पराई मूवी से लिया गया है और ये गाना आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिएगा। आफेज जी ने ये गाना अपने शौहर की याद में मांगा है।

बस इसी गाने के साथ थोड़ा सा हम रोकेंगे अभी थोड़ी देर में हमारे कार्यक्रम को। 3:02 बाकी हैं, 3 बजे हम थोड़ा सा ये प्रोग्राम रोकेंगे और ले चलेंगे आपको संक्षिप्त समाचारों की ओर। तो जरूर साथ देते रहिएगा, संक्षिप्त समाचारों के बाद हम आगे बढ़ाएंगे आपकी पसंद कार्यक्रम।

0: 890 kilohertz. This is Radio Marxus.
1: 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी। आपको नमस्कार।
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रसभा में बजट पर अपने समिंग अप को पेश करते हुए कहा कि आज लिए गए फैसले देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि वे उनकी चिंताओं और आशंकाओं को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। मॉरिशस के सामने दो विकल्प हैं, या तो अभी नियंत्रित और आवश्यक सुधार लागू किए जाएं, या फिर भविष्य में गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़े। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज सेशल्स के उपस्थान में सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों में भाग लेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी ने उन्हें आमंत्रित किया था। इसकी बदौलत मॉरिशस और सेशल्स के बीच संबंध मजबूत किए जाएंगे। मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष को लेकर। इसके अतिरिक्त इस दौरे के अंतर्गत डॉक्टर नवीन राम गुलाम अन्य कई महानुभावों के साथ भी मुलाकात करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून 2026 तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे अपने मित्र और सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एमिनी के निमंत्रण पर सेशल्स के राज दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा से पहले जारी प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। रिश्ली वुमन एम्पावरमेंट सेंटर को बंद किया गया था और पिछले कुछ महीनों से इसे फिर से खोल दिया गया है। आज यहां पर महिलाओं की रचनाओं को सम्मानित करने का दिन रहा। महिलाओं को अपनी रचनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इसके अलावा नए उपकरण भी दिए गए। आज रिफॉर्म पार्टी ने हेनेसी पार्क होटल में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। कई विषयों पर चर्चा हुई, पब्लिक बीचेस, मैटरनिटी लीव, मेंस्ट्रुअल लीव आदि। पार्टी ने एक बार फिर से दोहराया कि समुद्र तट अच्छा समय बिताने का एक स्थल है और ये सभी मॉरिशनों के लिए है। विदेश समाचारों में यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में और रिकॉर्ड तोड़ लू चल रही है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच नेदरलैंड्स ने पहली बार हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। रेड अलर्ट देश के 12 प्रांतों में से 8 पर लागू है। और वेनेजुएला में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 920 तक पहुंच गई है। 3,300 से अधिक लोग घायल और अन्य कई लोग लापता बताए जाते हैं। राहत कर्मी जीवित बचे लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश जारी रख रहे हैं। कई देशों एवं वैश्विक संगठनों ने समर्थन और मदद का वचन दिया। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद।

0: कुछ ही समय में शोक समाचार। कंपोर स्ट्रीट नुवेल फ्रांस में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री फोकराज मनिक जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके भाई श्री सुधीर मनिक के घर कंपोर स्ट्रीट नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मार जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3:30 PM। रोथ रॉयल बेलेरिवे सेश में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री रागा संगम पांजानादेन श्री राजा रान संगम पांजानादेन श्री रान संगम पांजानादेन जो सिल्वा नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनकी पत्नी श्रीमती रोजी पांजानादेन के घर रोथ रॉयल बेलेरिवे सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वा इलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 4:00 PM। शोक मरुबेन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kHz. This is Radio Mauritius.
3: तो अभी रजनी से आप सुन रहे थे आज के समाचार और शोक समाचार। इस समय 3:05 हुए हैं और हमारा प्रोग्राम चल रहा था आपकी पसंद। अगर अभी अभी जुड़े होंगे आप रेडियो मॉरिशस के साथ तो याद रखिएगा आपकी पसंद कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं आपकी पसंदों पर ही आधारित, यानी कि आप लोगों की फरमाइशी गीतों पर आधारित। हमारे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए 4028085 है नंबर, आप ज़रूर कॉल कीजिए। और अगर मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो 5251705 है नंबर हमारा, और ये है आपका ही प्रोग्राम
4: आपकी पसंद।
3: चलिए इस बार पसंद हम पेश करते हैं लीला जी की। बहुत शक्ति से लीला जी ने मांगा है गाना। ये नया जमाना मूवी से लिया गया और नया जमाना मूवी का ये गाना हम पेश कर रहे हैं लीला जी की तरफ से हमारे सभी सुनने वालों के लिए और हमारे सभी उनके पूरे परिवार के लिए। नया ज़माना मूवी का ये गाना आप लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिएगा।

और इस बार फरमाइश है आरती जी की। आरती जी जो त्रियोली की रहने वाली है, उन्होंने मांगा है संजोग मूवी का गाना मुकेश की आवाज़ में। चलिए ज़रा आरती जी की तरफ से उनके पति सुरेंद्र जी के नाम, उनकी बेटियों के लिए रीना अनंती और शिमला के लिए और बेटे आशले के लिए पेश करते हैं ये गाना। सो त्रियोली की आरती जी, आप अपनी पसंद का गाना ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर खुश रहिएगा।

अब हम आपको सीमा मूवी का गाना सुनवाएंगे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का गाना है ये, और इसकी फरमाइश विद्यानंद जी ने की है मेबर्ग से। उन्होंने ये गाना मांगा है सोहंती जी के लिए, अमित, शीतल, आशु, कृषिका, विशाल, राजीव, स्वीटी, हरवेश के लिए, और शिवाला लेन मेबर्ग के अपने दोस्त विष्णु गजाधर जी के लिए, और उन्होंने यही गाना अपनी बहन बिंदु कालीचरण जी के लिए मांगा है।

वाकवा के नंदलाल जी, उन्होंने गाना मांगा है फिल्म मुझे जीने दो से लिया गया और ये गाना है लता मंगेशकर की आवाज़ में। नंदलाल जी ने ये गीत मांगा है अमिता देवी का और शनाया के लिए।

0: On the hour, every hour, Radio Marches.
1: जादू है ये संगीत का, जादू है ये गीतों का कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में इस प्रकार प्रेम से भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की दोस्ती के लिए। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं, साथ देते हुए बेहद खुशी हो रही है हमको और आपकी पसंदों को आप तक पहुंचाने में भी बहुत खुशी हो रही है। अभी तो ये गाना जो हम चलाएंगे इसको सीधा फ्रांस तक भेजेंगे हम। फ्रांस की मनीता जी ने हमें मैसेज भेजा है और उनका कहना है कि मेरी प्यारी बहन बबीता का जन्मदिन है आज और प्यारी बहन बबीता को जन्मदिन की मंगल कामनाएं पूरे परिवार की तरफ से प्राप्त हुई है। इनको बहुत प्यार और खुशियां सभी बहनों की तरफ से आरती, सचिता, रेखा, मनीता और मामा सुमंती की तरफ से, भाभी उषा, भाई सत्यम की तरफ से बहुत सारी खुशियों की दुआएं, फूलों का, तारों का, सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है गाने के साथ। बेशक ये तो बड़ा ही एग्जैक्ट गाना है आपकी बहन के लिए। सो मनीता जी की तरफ से ये गाना, पूरे परिवार की तरफ से ये गाना बबीता जी के नाम करते हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बबीता जी।

तो बस चलिए हम साजन के घर, साजन का घर मूवी का ये गाना पेश करते हैं कुमार सानू की आवाज़ में, और कुमार सानू का साथ अलका याग्निक भी दे रही हैं। ये गाना हम अपने उन सभी श्रोताओं के नाम करते हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ देना बहुत ही प्यारा समझा। तो चलिए हम सुदेवी जी के नाम करते हैं ये गाना। वाक वाक की सुदेवी जी ने त्रियोली की दीदी ललिता और कुशल फैमिली के नाम किया है ये गाना। दीदी सुनीता, शोभा, देविना, बिंदु, संगीता के लिए, मानेगा के अनुषा, किरण, केशनी, कृषय, प्रणीता के लिए, राम रतन परिवार, राम गुलाम, कुआऊ और रघु परिवार के लिए। तो यही गीत हम पेश करते हैं अनिता जी के लिए जो मौदालबेया की रहने वाली हैं, उनकी तरफ से करुणा, अमृता और पूरे परिवार के नाम। और अनिता जी जो फ्लिकॉन्फ्लाक रहती हैं उनकी तरफ से उनके सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के नाम करते हैं ये गाना। और यही गीत हम बजवाते हैं त्रियोले के बंधु परिवार के लिए, विश्वानी जी के लिए जो वाकवा की रहने वाली हैं, उनकी तरफ से उनकी बहनों के लिए इंदिरा और शारदा के लिए, उनकी सखियों के लिए नीला और प्रतिभा, फिर शोभा जी के लिए, गीता गजाधर जी के लिए, और महेंद्र जी के नाम भी करते हैं ये गाना हम। महेंद्र जी पालमा से हमें सुन रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत

गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर गा रहे हैं ये गाना, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं शातो बेनागस की रेखा जी के लिए, और शातो बेनागस से ज्योति जी ने रेखा जी के नाम ये गाना किया है, आशनी रेखा सुरेखा के लिए और मंधव परिवार के लिए। सो ये गाना शातो बेनागस की ओर तो जा ही रहा है, साथ ही साथ जा रहा है कुंगुमा की ओर भी। इसकी फरमाइश करने वाले हैं दिलीप जी कुंगुमा से, उन्होंने ये गाना मांगा है संगीता, योगेश, कविता और किसनवी के लिए।

अजय चलिए गाने सुनते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, संगीत में मस्त रहते हैं और जो भी काम कर रहे हैं हम संगीत के साथ साथ करते हैं। आपके पसंद कार्यक्रम में हम इस बार सुन पेश कर रहे हैं आपके लिए अपना देश मूवी।

मुकेश की आवाज। चलिए मुकेश की आवाज गूंजेगी अब सूरत और सीरत मूवी से लिए गए गाने के जरिए। और ये गाना हम थयोले थ्वापुचिक थयोले की अनीता जी के लिए पेश कर रहे हैं। थ्वापुचिक थयोले की अनीता जी ने ये गाना अपनी बेटी अंजू, दामाद वेद के लिए, अपने बेटे सचिन और बहू पूजा के लिए, पोते कियांश और पोती सिया के लिए मांगा है और पूरे परिवार के लिए मांगा है।

गाने के बाद अब हम पेश करेंगे आप लोगों के लिए फिल्म साथी का ये गाना, जिसे सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी ने गाया है। चलिए गाना हम पेश करते हैं शीला जी के लिए, जो बन में अकी रहने वाली है। शीला जी ने ये गाना सुनना भी चाहा है और सुनवाना भी चाहा है अपनी पूरी फैमिली के लिए, पूरे माकुना फैमिली को उन्होंने ये गाना सुनवाना चाहा है जो बन में अकी रहने वाले हैं। ये है साथी मूवी का गीत।

तो बस हम अंतिम गाना पेश कर रहे हैं हमारे आपके पसंद कार्यक्रम का, और ये अंतिम गाना होगा मम्मा को हैप्पी बर्थडे कहता हुआ गाना, और ये गाना जाता है मीला राम स्वामी जी की ओर। मीला राम स्वामी जी कल अपना जन्मदिन मना रही है और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं मिली हैं उनकी मम्मा प्रेमा सन्यासी जी की तरफ से, उनकी बहन सीमिया पाडू की तरफ से, तीन बेटियों की तरफ से रोदीना, शिवना और लोना, और उनकी दो नातिनें हैं कायरा और आनिया, उनके पति श्याम की तरफ से, उनके दामाद नीलेश और दिलान की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी पूरी टीम की तरफ से मीरा जी आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं। सो आपके नाम करते हैं हम साजन बिना सुहागन मूवी का ये गाना, और इस गाने के साथ साथ हमारा आपकी पसंद कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा। आप लोगों का साथ मिला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की फरमाइशों की बदौलत ये इस प्रोग्राम में इतनी रौनक बनी रही, इसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके। हमसे रेखा आपसे कल सुबह 6 बजे फिर से मिलने वाले हैं, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, शुभ शाम, नमस्कार। थोड़ी ही देर में आपसे निगाज का साहित्य दर्पण कार्यक्रम अंजू घरवरन जी की प्रस्तुति में।

0: On the hour, every hour.
1: Radio Marches.
2: सहित हो जाएं जब दो मन, साहित्य का तब हो सृजन, संवेदनाओं को दे आधार, साहित्य जोड़े दिलों के तार। साहित्य दर्पण, श्रीमती अंजू गर्बरन की प्रस्तुति में।

0: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। नाम तो आप सुन ही चुके हैं, कार्यक्रम है साहित्य दर्पण। श्रोताओं, आज हमारे साथ एक बहुत विशेष अतिथि जुड़े हैं जो कि भारत से आए हुए हैं, जिनका नाम है शशि भूषण जौहरी जी। और वे इतने अनुभवी हैं कि मेरे को उनका अगर CV पढ़ने बैठूंगी तो समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। पर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इतिहास से, बैंकिंग का अनुभव रखते हैं, कृषि का भी अनुभव रखते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता हैं, पशुपालन और डेयरी का भी अनुभव है, जूनियर हाई स्कूल में संचालक रहे, बैंकिंग ट्रेनिंग भी दी हुई है फैकल्टी में रहते हुए, और बैंक प्रबंधन का कार्य भी खूब बखूबी से संभाला हुआ था। आज हमारे साथ जुड़े हैं नाट्यकर्म में भी, अपनी पत्नी द्वारा लिखे गए नाटक पर अपनी प्रस्तुति दी इन्होंने, थिएटर रंगमंच का भी अनुभव रखते हैं। तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं इनके जीवन के अनुभव, इसी विचार से आज हमने आपको आमंत्रित किया है, जो है श्री शशि भूषण जौहरी जी। आपका हम स्वागत करते हैं।
1: अंजू बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतनी सारी प्रशंसा की है, इसमें आपका प्रेम बहुत शामिल है। योग्यता तो कह नहीं सकते किसकी कितनी है। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं सभी सुधी श्रोताओं का जो रेडियो सुन रहे हैं, उनमें जो मुझसे बड़े हैं उनको मैं सादा अभिवादन कहता हूँ, और जो मुझसे छोटे हैं, क्योंकि मेरी अवस्था 75 साल हो गई है तो काफ़ी छोटे ही होंगे, तो उनको सबको आशीर्वाद भी, प्रेम भी, सप्रेम नमस्कार
0: जी। अब हम आते हैं, साहित्य दर्पण कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम होता है हिंदी भाषा में, तो आप मॉरिशियस अनेक बार आ चुके हैं, तो हिंदी को आप कहाँ और कैसा पाते हैं?
1: जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हिंदी मेरी मौलिक भाषा है, और उसके बाद जो भाषाएं सीखी हैं उनको सीखने में भी हिंदी के माध्यम से सीखने का काफ़ी कुछ प्रयास रहा है। भारत बहुत बड़ा देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं, तो जो शक्तिशाली होता है उसकी भाषा कल्चर सब लोग सीखना चाहते हैं। हिंदी वो भाषा है जो भारत के कल्चर का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारा संस्कृति है उसको भी प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

0: और हिंदी भाषा जो ना आ हिंदी भाषी लोग हैं या जो और भाषाओं के लोग हैं वो इसमें सीखने में रुचि रखते हैं। मैं समझता हूँ कि दो भाषाएं सबसे ज़्यादा अब सीखी जाएंगी आने वाले वक्त में, एक है चाइनीज़ मैंडारिन, दूसरी हिंदी। तो हिंदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, जो जो हिंदी सीखेगा आगे बढ़ेगा, अपना जीवन समृद्ध करेगा और समृद्धता में भागीदार होगा।
1: शशिभूषण जी, हम कार्यक्रम है हमारा साहित्य दर्पण, तो आपको एक भाषा के साहित्य पर जो आपके विचार हैं वो हम जानना चाहेंगे कि साहित्य हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी हो जाता है कि एक भाषा के साथ साथ हम साहित्य को अपनाएं, क्योंकि शब्द साहित्य जो है साहित्य मतलब सबका हित करने वाला, तो वो हित आप कैसे पाते हैं कि किस साहित्य सीखने में क्या हित पाते हैं या एक भाषा के साहित्य कैसे जुड़ा हुआ है?
0: भाषा से साहित्य बहन इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि एक तोता भी कोई भाषा बोल सकता है सुन करके
1: जी,
0: लेकिन इंसान को ये सुविधा उपलब्ध है कि वो न केवल भाषा तोते की तरह सीखे, क्योंकि बोल बोल करके अनपढ़ लोग भी जहाँ रहते हैं वो भाषा बोलने लगते हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: लेकिन उस भाषा की जो गहराई है, उस भाषा की जो पीछे सारी समृद्धि है, जो सदियों सदियों की जो समृद्धि हमारे पास संचित है, जो पुस्तकों के रूप में है, जब पुस्तकें नहीं थी, लेखन शैली नहीं थी, तो सब चीज़ें जो हैं वो श्रुति के आधार पर चलती थी। जैसे जैसे लिपि आई वैसे वैसे चीज़ों को लोगों ने उसको रिकॉर्ड कर दिया। मैं थोड़े शब्द माफ़ी चाहता हूँ, कुछ शब्द मैं मजबूरी में इंग्लिश में बोलूँगा
1: जी जी,
0: क्योंकि मैं हिंदी विज्ञ नहीं हूँ उस तरीके से, तो उसे क्षमा करेंगे। तो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में साहित्य में कई उसके अंग हैं, संगीत है, नाट्य है, गद्य है, पद्य है, फिर जो रूरल एरिया में है उसमें लोकगीत हैं, फिर नृत्य भी संगीत साहित्य में ही जाता है क्योंकि नृत्य में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं साहित्य से लेकर के हैं।
1: बिल्कुल।
0: लिपि पे हाँ, अगर हम केवल लिपि को अगर भाषा कहेंगे तो शायद अनुचित होगा। इसका समग्र रूप ये है कि हम उसकी सब विधाओं को जानें जिससे हमको बहुत कम समय में बहुत सारी विरासत मिले, इतिहास जानें, सब कुछ जानें। और एक कहते हैं कि इतिहास और इतिहास दोनों एक ही शब्द में छोटा सा अंतर है, यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो इतिहास हो जाएगा और सीखेंगे तो इतिहास हो जाएगा। जो आज हम कर रहे हैं वो आज हमारा वर्तमान है, लेकिन कल अगले क्षण में ये इतिहास हो जाएगा
1: जी।
0: आज रेडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं कुछ लिख के जाएगा, कुछ पढ़ के जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियां हर चीज़ का लाभ उठा सकती हैं जब तक वो संरक्षित हैं।
1: बहुत सुंदर आपने हमें उदाहरण दिया कि इतिहास बनने में, और जो शब्द आपने प्रयोग किया इतिहास, उस शब्द को लेके एक छोटा सा अंतर है, पर कहीं हमें अपने इतिहास से सीखने को मिलता है और उसमें हम सब कुछ बर्बाद पाते हैं। जो दूसरा शब्द आपने प्रयोग किया इतिहास, तो इतिहास से हम बहुत सारी जानकारियां पाते हैं, इसी प्रकार हम साहित्य को भी संजोते हैं क्योंकि साहित्य से हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कृति के साथ अपनी परंपराएं और बहुत कुछ संजोने का माध्यम है और उसी माध्यम से हम सीख पाते हैं। चलिए एक गीत के साथ कार्यक्रम को सजाते हैं, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ जाएगा। लुडोविक आज हमारा साथ दे रहे हैं तकनीकी रूप से आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में, उनका भी आभार प्रकट करते हैं।

0: इस सुंदर गीत के बाद चर्चा जारी रखेंगे, पर आपने ये देखा होगा सुनने में उर्दू के कितने शब्दों का प्रयोग रहा, और हमारे समक्ष जो अतिथि बैठे हैं वे उर्दू के भी ज्ञाता हैं। तो एक से अनेक भाषाओं के जानकार उर्दू पर कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए हम सुनते हैं उनको।
1: देखिए, अभी जो आपने बहुत मनोरम गीत सुना गाने का, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उसमें उर्दू के शब्द भी हैं और हिंदी के शब्द भी हैं, और उर्दू और हिंदी के मिला करके उपयोग भी किया गया है।
0: बिल्कुल।
1: और जहाँ तक उर्दू का बात है, ये वो बेटी है जो भारतवर्ष में, जिसने जन्म लिया मुगलों के आक्रमण के बाद, जब वो लोग आए, वो उनकी लिपि अरबी थी, तो उन्होंने अपनी सेना के अनुसार उसकी लिपि तो अरबी रखी, लेकिन भाषा 50% से भी ज़्यादा हिंदी ही है। उसका जो शब्द विन्यास है वो भी हिंदी का ही है, वो हिंदी ही है, बस उसमें 50% जो अन्य शब्द हैं वो विभिन्न भाषाओं के हैं, फारसी के हैं, उर्दू के हैं, अरबी के हैं, कुछ और भाषाओं के भी हैं, यूरोप की भाषाओं के भी हैं। और मुझे शौक़ था, मेरे पिता जानते थे, मैंने उर्दू सीखने का बड़ा मेरा मन था। मैंने 54 वर्ष की उम्र में उर्दू को पढ़ना सीखा, और मैं बहुत जल्दी लिपि पढ़ना सिखाने की क्षमता रखता हूँ, उसका तरीका ही अलग है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आप भारत की बात करें, या आप मॉरिशस की भी अगर बात करें, तो मॉरिशस में भी एक बड़ी संख्या मुस्लिमों की है जो उर्दू ही जानते हैं, अरबी तो वो कुरान में पढ़ते हैं, बाकी उनकी भाषा उर्दू है। तो जो यहाँ सामंजस्य आपस में हिंदी उर्दू का होता है मॉरिशस में, उसमें उर्दू का इस्तेमाल बखूबी उतनी ही ज़्यादा होता है जितना भारत में होता है। हमारे उत्तर भारत में तो ये समझ लीजिए कि हम लोग हिंदी और उर्दू में इतना मिक्स्ड हैं कि जिसको गंगा

0: तहजीब कहते हैं उसके अंतर्गत है, साहित्य भी है, कविता भी है, सब में उर्दू है, और मैं तो एक मिशन है कि मैं उर्दू सबको सिखाऊं।
1: बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि भाषाएं, सभी भाषाएं सम्मानित है और एक से अधिक भाषाएं सीखने का जो सबसे बड़ा उदाहरण पाते हैं वो मॉरिशस स्वयं है, क्योंकि मॉरिशस में आज किसी भी शिक्षालय में जाएं तो हिंदी या जो भी ओरिएंटल लैंग्वेज बच्चा जानना चाहे, करना चाहे, पढ़ना चाहे, उसके साथ अंग्रेजी फ्रेंच भी अनिवार्य है। तो तीन भाषाओं का ज्ञाता तो हर छात्र है जो यहाँ पर हम पाते हैं, और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने का भी प्रावधान है कि आप एक भाषा और सीख सकते हैं। तो चार भाषाओं के ज्ञाता, अब जैसे हम ही हैं, भोजपुरी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, फ्रेंच भी समझते हैं, क्रियोल भी बोलते हैं, तो ऐसे कितनी भाषाओं के जानकार हैं मॉरिशस में स्वयं, कि आज का बच्चा मंदारिन भी सीख रहा है क्योंकि उसे पता है भविष्य में इस भाषा की आवश्यकता है और इसको सीखने में लाभ है। इसी प्रकार हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में भी संस्कृति सबसे बड़ा एक भाग होती है जो कि भाषा को के प्रवाह को रुकने नहीं देती है। जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं, सबसे पहले हम प्रार्थना शुरू करते हैं तो एक गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं, या कोई भी वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारी संस्कृति और हमारी भाषा भी समृद्ध हो रही है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक आप पाएंगे कि महिलाएं मंदिरों में जो प्रार्थनाएं करती हैं तो वो संस्कृति का एक भाग है, परिधान उनका जो है वे भी संस्कृति का एक भाग है। साहित्य में संस्कृति के प्रभाव को आप कैसा पाते हैं?
0: देखिए, हम संस्कृति को तो ये कहेंगे कि जैसे एक बाज़ार होता है, उसमें सब तरह की दुकानें लगी होती हैं
1: जी,
0: वहाँ सब कुछ आदान प्रदान होता है, आना जाना, देना और लेना। संस्कृति वो चीज़ है जो सब जगह की चीज़ों को जोड़ के एक बाजार, बाजार शब्द मार्केट में मत समझिए, बाजार का मतलब उपलब्धि रहती है
1: जी।
0: और हम जब जैसे हमारे यहाँ वो होते हैं, पर्यटन होता है, धार्मिक पर्यटन होता है, तो हम सब लोग मिलते जुलते हैं, मिलते जुलने से संस्कृति का विकास होता है। जैसे अभी एक उदाहरण मैं अगर दूंगा तो महाकुंभ भी हुआ था 144 साल पहले वाला भारत में, तो उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे कि जिसकी कल्पना से परे चीज़ थी। और जब इतने लोग आते हैं तो संस्कृति का आगे अगला स्टेप आता है। तो हम जितनी देशाटन होता है, जिस प्रकार की बीच बात होती है, भाषा बढ़ती है, साहित्य बढ़ता है, और जब तक हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे क्या। हमारी सामूहिक विरासत बढ़ाने में संस्कृति का बहुत हाथ है। अब रह गई बात लिपि की। लिपि एक माध्यम है। सबसे बड़ी जो मुझे विलक्षण बात मॉरिशस में लगी वो ये लगी कि यहाँ सब लोग वो भाषा बोलते हैं जिसकी आज लिपि नहीं है, आज वो भाषा बोलते हैं जिसका साहित्य नहीं है, जिसकी ग्रामर नहीं है। आज मॉरिशस सरकार कोशिश करके क्रियोल को बना रही है, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रश्न है, इसके लिए जितना साधुवाद किया जाए वो अच्छा है।
1: उसी प्रकार भोजपुरी के लिए अच्छा, भी प्रयास।
0: अब रह गई बात भोजपुरी के, भोजपुरी का सवाल ये, जब मैं पढ़ रहा था इतिहास वगैरह मॉरिशस का, तो मुझे लगा कि जो लोग पहले आए थे उसमें अधिकतर लोग संभवतः, क्योंकि मजदूर वर्ग से ज़्यादा आए थे, तो वो अनपढ़ थे, तो पढ़ना उन्होंने मॉरिशस में आके सीखा।
1: बिल्कुल,
0: बोली वो अपने साथ लाए, सारी ग्रामर सब कुछ लाए, सब रूप प्रधान लाए, सब कुछ लाए, और वो संस्कृति आज जीवित है। अभी तीन दिन पहले विवाह के एक फंक्शन था, चार दिन का, उसमें गीत गवाई भी हुआ, उसमें दशरथ भी आए, राम भी आए, सारे जो रीत रिवाज थे वो सारे उस प्रकार से किए गए जैसे कि रामचंद्र जी की शादी हो रही हो और उसमें सीता जी का विवाह हो रहा हो। ये संस्कृति को ले जाने का सशक्त माध्यम है, किसी भी रेडियो टीवी पिक्चर से बड़ा है। दूसरी बात, जहाँ तक संस्कृति की बात है, वो मैं कहूँगा कि जो हमारा बम्बई का सिनेमा है वो इतना पॉपुलर है कि ये संस्कृति को कुछ अच्छे रूप में, कुछ खराब रूप में, वो बराबर आगे बढ़ा रहा है, उसका योगदान बहुत बड़ा है।
1: हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसकी अच्छाई भी है, बुराई भी है।
0: जैसे महाभारत सीरियल बना और रामायण सीरियल बना, उसने इतिहास को पुनर्जीवित कर दिया वीडियो फॉर्म में,
1: बिल्कुल,
0: जो लेखन से संभव नहीं था, जो
1: घर
0: भी जब देखे
1: तक पहुंचाना संभव
0: इतना
1: नहीं
0: पहुंचाया कि सड़कें बंद हो जाती थीं जब उसका प्रसारण होता था, इतनी उसकी संतुष्टि थी। अब रह गई बात भाषा की। भाषा में हर थोड़ी थोड़ी देर पे बोली बदलती है, लिपि तो कम से कम 10-11 राज्यों में हिंदी में ही सारा कार्य होता है, हिंदी ही लोग समझते पढ़ते हैं। और उर्दू और हिंदी को अगर हम एक मान लें, क्योंकि उन लोगों का आपसी संबंध इतना है लोगों का कि वो वर्ग

0: अलग नहीं है। अगर मैं उर्दू के जो मुसलमान हैं उनकी संस्कृति भी भारतीय है, इसीलिए जब हमारे यहाँ कभी कोई भारत में वो कहती है तो हमारे 125-30 करोड़ हमारे प्रधानमंत्री यही बोलते हैं कि सब लोग को संस्कृति को एक मानते हैं। हम संस्कृति वो होती है जो धर्म में के कारण विभाजन को रोकती है। दुर्भाग्य है कि कहीं कहीं लोगों ने गलती से सीमित व्यू में धर्म और राजभाषा को राज को जोड़ लिया है, जो गलती है। हम जहाँ रहते हैं हम एक पूरे समुदाय हैं, समूह हैं, जो मॉरिशस में बहुत बड़ी बात है और भारत में भी हम चाहेंगे कि इसी का अनुपालन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो, है बहुत है लेकिन कोई अपभ्रंश ना हो।
1: बिल्कुल।
0: और मैं तो ये कहूँगा कि आज मैं इस कार्यक्रम में जब आया हूँ तो मैं एक तरीके से भारत का प्रतिनिधि हूँ आज।
1: बिल्कुल।
0: और एक मजाक में कहूँ तो मैं मोदी जी से 2 दिन केवल उम्र में छोटा हूँ।
1: ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 4028085 पर आप अपने विचार बांट सकते हैं हमारे साथ, और जो अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं अगर उनके लिए भी कोई प्रश्न हो तो वे यहाँ पर आपका उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं। चलिए हम अब जो बातचीत जारी रखेंगे वे है कि संस्कृति के साथ भाषा का माध्यम तो बना ही हुआ है, पर कृषि का भी अपने आप में बड़ा अनुभव है आपको, तो उसके माध्यम से भी हम लोगों को जोड़ सकते हैं, और इस पर आपका अनुभव ज़्यादा है, मैं ना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, आप बताएं।
0: देखिए जहाँ तक कृषि का सवाल है, मैंने कृषि में ग्रेजुएशन किया है, एनिमल हस्बेंड्री में ग्रेजुएशन किया है, ये एक अलग बात है
1: जी।
0: हमारे यहाँ गाय पलती थी और क्यारी में हम खेती में काम करते थे, तो शिक्षा से कृषि बात की बात है, लेकिन हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ पर कृषि करते ही हैं।
1: भारत एक कृषि प्रधान देश है
0: और भारत गोपालन गोपालन जी गोपालन और कृषि पालन विभाग जो है। मॉरिशस में इत्तफाक से जो लोग आए थे वो क्योंकि गन्ने के खेत में मजदूरी करने के लिए आए थे, लेबर के लिए आए थे
1: जी,
0: तो उनका सीमित अनुभव हो गया क्योंकि वो गन्ने में केंद्रित हो गया।
1: बिल्कुल।
0: जबकि यहाँ पर लीची होती है, आम होती है, पपीता होता है, केला होता है,
1: बहुत से फल होते हैं
0: और बहुत सी सब्जियां होती हैं, हम लोग किचन गार्डन में उगाते हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो मेथी है जिसके बिना काम ही नहीं चलता, चिली एंड पेमा तो बहुत ही जरूरी है
1: जी।
0: तो जब हम अभी घूम रहे हैं मॉरिशस में, मैंने काफ़ी कई बार आया हूँ देखा है, मुझे कृषि की अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं मॉरिशस में, जिनका दोहन अभी नहीं किया गया है। दूसरी बात, पशुपालन का यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा रोजगार हो सकता है और हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं दूध में। दूध में हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो सकते हैं जब हमारा अमूल का, जिसका नाम सबने सुना है, जब एक जिला 50 जिलों को सप्लाई कर सकता है, तो यहाँ तो हरियाली बहुत है, पानी बहुत है, घास बहुत है, ज़मीन बहुत है। हमें तुरंत प्रायोरिटी से कृषि जो है, असल में हिंदू धर्म का और हिंदी का कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारी सब चीज़, हमारे त्यौहार भी कृषि के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे पंजाब की
1: बैसाखी
0: हो, या ओणम हो, या कहीं पर कोई पोंगल हो, सारे धर्म के जो तीर्थ वो हमारे फंक्शन हैं वो हमारे तीर्थ त्यौहार से जुड़े हैं और हमारे कृषि के उत्पादन के नेचुरल साइकिल से जुड़े हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो हमें संस्कृति को जोड़ के रखती है। मॉरिशस में मेरा ये कहना होगा कि जो भी स्तर इसको कर सकते हैं वो कृपया पशुपालन और कृषि को इतनी प्राथमिकता दें जितनी प्राथमिकता किसी भी चीज़ को दी जा सकती है, जैसे दवाई को दी जाती है मरीज के लिए। मॉरिशस का इलाज कृषि और पशुपालन का विकास है और बहुत बहुत बड़ी संभावना है।
1: बहुत सही कहा आपने कि मॉरिशस के विकास में कृषि अपना बहुत बड़ा योगदान है कृषि के माध्यम से। चलिए एक गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी। लुडोविक जी हमारे लिए एक गीत सजाने जा रहे हैं।

0: हेलो हेलो
1: नमस्ते
0: हेलो,
1: बेटी।
0: नमस्ते नानी, कैसन हवा?
1: अच्छा हाय बेटी, तोहा छो से तनी कुछ अच्छा हाय कुछ नाय, सब नहीं सकत है बोले। एगो हाथ बीमार बा हमार,
0: अच्छा,
1: तनी यही सब में बजल है। अभी
0: ईश्वर से
1: हलोग अच्छा
0: प्रार्थना
1: हवा
0: है कि
1: जाता
0: आपका
1: ही
0: हाथ
1: बस बा।
0: अच्छे जल्दी से अच्छा हो जाए।
1: आज हमें वो कबीर भजन बोला बेटी, खुशी
0: बोलिए
1: हवा।
0: जी।
1: हाँ, मना लागा हमारा फकीरी में, मना लागा हमारा फकीरी में, जो सुख पावे रामा भजन में, जो सुख पावे रामा भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में, मना लागा हमारा फकीरी में, मना लागा हमारा फकीरी में, भला बुरा सबको सुना लीजिए, भला बुरा सबको सुना लीजिए, कर गुजराना गरीबी में, मना लागा हमारा फकीरी में, मना लागा हमारा, हाथ में कुंडल बगल में सोटा, हाथ में कुंडल बगल में सोटा, का फिरत मगरूरी में, मना लागा हमारा फकीरी में, मना लागा हमारा फकीरी में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिलेगा सबूरी में, मना लागा हमारा फकीरी में, मना लागा हमारा फकीरी में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रूप से आपने कबीर का साहित्य हमारे साथ साझा किया।
2: बहुत बहुत आदरणीय, आपको प्रणाम। आप हमसे बड़ी हैं तो चरण स्पर्श।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सुना था वाह। चलिए देखिए, उन्होंने कबीर का साहित्य कंठस्थ किया हुआ है, ये लोक साहित्य में जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है इतना। ये दादी कम से कम 80 वर्ष से भी ऊपर के,
2: हाँ, बड़ी है।
0: पर कार्यक्रम में निरंतर भाग लेती हैं, तो उनकी रुचि है साहित्य, साहित्यिक कार्यक्रमों में, तभी वे ऐसा कर पाती हैं। जी, आपने इस को सुना,
2: जी
0: आपकी प्रक्रिया।
2: देखिए, मेरी पहली प्रक्रिया तो यह है, जो मैं कहने जा रहा था उसका मूल मंत्र इन्होंने कह दिया। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जो मूल मंत्र है फकीरी,
0: जी,
2: फकीरी का मतलब ये नहीं कि आप उसमें रहें, मतलब भूखे पैसे में रहें, वो
0: निर्धन
2: नहीं है,
0: है ये,
2: निर्धन
0: नहीं
2: नहीं है। फकीरी
0: बिल्कुल
2: का मतलब होता है कि जब धन के प्रति आपका आग्रह ना रहे, उसको जोड़ने की प्रतिक्रिया ना रहे,
0: बिल्कुल
2: तो जो आप कमाते

0: हैं उसका सबके लिए लाभ होता है और आप संतोष में जीवन जीते हैं, परमानंद से प्राप्त होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जो बात मैं कहने का पॉइंट था मेरा, वो ये था कि आज जो हम देखते हैं संस्कृति का जो मुख्य भाग जिससे चिंता का विषय है आज, वो ये है कि भारत में या जहाँ भी आप हिंदी की 5000 साल की परंपराएं कहें, कोई भी व्यक्ति कभी असुरक्षित नहीं रहता था, न बच्चा न लड़की न लड़का न वृद्ध।
1: बिल्कुल।
0: परिवार की एक ऐसी संरचना होती थी जिसमें कि ये माना जाता था कि अपने बूढ़े लोगों का जब वो बिस्तर पर असहाय अवस्था में हो तो उनका जो हम लोग सफाई करते थे उसको हम लोग सेवा का सर्वोच्च उदाहरण मानते थे। अब स्थिति यह है कि ना तो हम बच्चे का करने को तैयार हैं ना हम बूढ़े का करने को तैयार हैं और हम पैम्पर्स में रख करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एनीवे इसका कोई बहस का मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट के अपने नुकसान होते हैं फायदे होते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि जहां तक संस्कृत की बात है,
1: सबसे
0: सशक्त इकाई जो है वो परिवार है और उसमें किसी प्रकार का विघटन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की टूट नहीं होना चाहिए। कम से कम 4 पीढ़ी जहाँ एक साथ रहती हैं तो कहते हैं साक्षात स्वर्ग उपलब्ध है। जब आप परपोते को देखते हैं तो स्वर्ग की सोने की सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब ना रहो क्योंकि काफ़ी हो गया। दूसरी बात यह है कि जो विवाह जो हमारी संस्कृति का सबसे सर्वोच्च उदाहरण है वो जीवन पर, हम कहते हैं जीवन में हमारा जीवन साथी है और वो जीवन के अंत तक रहता है। ये बात क्रिश्चियनिटी में भी कही जाती है जब विवाह होता है कि अब हम अनटिल द गॉड डाइवर्स तब तक हम विवाह मानते हैं। हमारे यहाँ विवाह की जो पद्धति है इसमें थोड़ी सी टूट फूट हो रही है जिसके प्रति हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।
1: चलिए एक फोन कॉल है फिर चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो
2: हेलो दीदी, मैं हूँ राधा मोचिदा से।
1: राधा जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, कैसी हैं आप?
2: धन्यवाद, और आए हुए मेहमान को भी मेरा सादर प्रणाम है।
1: जी
0: प्रणाम
2: जी। देखिए आप लोग साहित्य की बात कर रहे हैं
1: जी,
2: तो साहित्य के साथ हर कुछ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, लोक गाथाएं हो, लोक कथा हो, लोक गीत
1: नाटक हो, सभी
2: नाटक हो, कुछ भी हो, सभी साहित्य विधाएं वो साहित्य के साथ जुड़े होते हैं। और जो कुछ भी हमारे समाज में होता है वही साहित्य हमें दिखाता है, वो तो दर्पण है हमारा।
1: बिल्कुल, समाज का तो, दर्पण होता है साहित्य और साहित्य का दर्पण है समाज।
2: समाज तो देखिए मैं एक छोटा सा लोकगीत सुनाऊंगी जो हमारे पूर्वज गाते थे
1: जी,
2: काली माई में अभी तक हम गाते हैं क्योंकि हम मानते हैं, हम उसको मनाते हैं, उसको हम करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दो लाइन में आप लोगों को
1: अवश्य स्वागत है आपका।
2: हाँ जी धन्यवाद। सुने के खड़ा

0: रे।
1: हेलो
0: हाँ
1: जी।
0: तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये सब है, ये हमारे साहित्य के साथ ही जुड़े हुए हैं।
1: हमारी संस्कृति का एक अंग है जी।
0: हाँ, हमारा संस्कृति देखिए, आज तक भी हम काली माई की पूजा करते हैं, मतलब कि गांव की
1: एक
0: सुविधा
1: आस्था
0: के
1: है,
0: लिए।
1: एक आस्था है, एक
0: हाँ
1: विश्वास है,
0: हाँ
1: तभी तो आप पूछती हैं। वो
0: हाँ
1: आस्था
0: हाँ
1: और
0: पूछती हैं।
1: विश्वास रहना ही तो सबसे बड़ी बात है, चाहे वे परिवार में
0: हाँ
1: आस्था हो, चाहे वो ईश्वर में आस्था हो, चाहे वे
0: हाँ चाहे वो
1: बिल्कुल।
0: आपके घर गृहस्थी में हो।
1: तो
0: हाँ, ये सब।
1: आप जब इनका पालन करती हैं तो आप भटकते नहीं हैं, आपको सही
0: हाँ
1: मार्ग मिलता है, सही
0: जी,
1: मार्गदर्शन
0: हाँ
1: वो देवी करती है,
0: हाँ वो माँ करती है
1: वो
0: हमारे
1: माँ
0: लिए।
1: करती है, क्योंकि विश्वास है ना। तो कोई भी
0: हाँ,
1: माता
0: हमारा
1: पिता किसी
0: जी
1: अपने बच्चे को गलत दिशा तो दे ही नहीं सकते। आपका क्या कहना
0: जरूर।
1: है?
2: निश्चित रूप से,
0: हाँ
2: असल में काली माई का काला रूप छोड़ दीजिए, असल में माँ ही सर्वोच्च है,
1: बिल्कुल
2: और माँ के बाद पिता का योगदान है, ये बात सच है। इसीलिए हम सारे भगवान के नामों में पहले माँ का नाम लेते हैं और बाद में सीताराम कहते हैं, सीता पहले बोलते हैं, राम बाद में बोलते हैं।
1: बिल्कुल
2: तो माँ काली माई जो है, माँ संपूर्ण मातृत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो जीवन की प्रकृति को आगे ले जाने का काम करती है, और सारा भार उसका भार सहन करती है, और अति भार, अति भारी भार को वो खुशी खुशी सहन करके

0: अगली संतति बनाती है, आगे समाज को आगे बढ़ाती है, इसलिए उसके लिए हमेशा नमन नमन नमन।
1: बहुत सुंदर, चलिए राधा जी बहुत बहुत आभार आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। चर्चा को जारी रखते हैं कि जैसे राधा जी ने कहा कि वे काली माँ की पूजा करती हैं, अभी हमारी बातचीत जब हो रही थी तो हमने कहा कि समाज की सबसे सशक्त कड़ी जो है वे शुरू होती है परिवार से, परिवार के बाद समाज है, समाज के बाद देश है, देश के बाद विश्व है। तो सबसे सशक्त जो है माता पिता और बच्चे एकजुट होके रहें, माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास कर पाएं और बच्चे अपने माता पिता पर विश्वास रख पाएं, ये हमारा हमारी सोच होनी चाहिए और यही शिक्षा हमें मिलनी चाहिए
0: जी।
1: और यही शिक्षा हमें स्वीकारनी भी चाहिए। हम एक फोन कॉल लेते हैं, फिर इस पर चर्चा आपसे जानेंगे कि क्या आपका विचार है। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, मैं हूँ धनेश्वर चोवा जवेल से।
1: जी धनेश्वर जी, स्वागत है आपका।
2: और हमारे मेहमान को बारंबार प्रणाम है।
0: प्रणाम भाई जी, प्रणाम।
2: तो मैं भी एक दो लाइन गुनगुना देता हूँ।
1: जी अवश्य।
2: ऐसी वाणी

बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंठी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।

0: धन्यवाद बहन जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सशक्त कड़ियों को हमारे साथ साझा किया है। हमारे अतिथि से पूछेंगे कि आपने क्या अनुभव किया
2: उनकी वाणी से।
1: जी बिल्कुल।
2: देखिए, पहली बात मैं कह सकता हूँ कि मैं देख तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे अनुभव हो गया कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपने जो मीठी वाणी की बात कही है वो तो है ही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो यहाँ के भोजपुरी भाषा लोग हैं उनकी भाषा बहुत ही मधुर है, मीठी वाली है, जब वो बोलते हैं तो प्रेम झरता है। और आपके, मुझे लगता है कि ईश्वर की मैं कामना करूँगा कि आपका जैसा खजूर का पेड़ नहीं मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दिन तक जिंदा रहें और हम लोगों के ऊपर आश्रय बनाए रखें और हम आपकी छत छाया में बहुत दिनों तक रहें। आप एक अमूल्य अमानत हैं समाज की। हम चाहेंगे कि 100 साल के जब आप हो जाएं तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके घर कोई आपके यहाँ मिलने आए, जो यहाँ की प्रथा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने विचार दिया। पर आगे जो हमारी चर्चा हो रही थी पहले कि सशक्त कड़ी है परिवार, तो परिवार आज बहुत हम देखते हैं समाज में बहुत विघटित हो रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार?
2: देखिए, मैं तो वही कह सकता हूँ जो मैं देख रहा हूँ और मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है। जो मैं कहूँगा, ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें पूरी पूरी 100% सब पे लागू होती हों, लेकिन वो एक वो इशारा तो देती ही है।
1: जी,
2: मैं एक परिवार को जानता हूँ जिसमें लड़की की तीसरी शादी है, आदमी की चौथी शादी है, और वो आज खुशी से रह रहे हैं, ये तो खुशी की बात है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कहीं भी, क्योंकि बच्चों का, पत्नी का विघटन होता है, पतियों का विघटन होता है, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। लेकिन कहते हैं अगर कुछ आग लगी जाए तो फिर से छप्पर डालना अच्छा है, इसमें कोई बुराई मैं नहीं मानता।
1: बिल्कुल,
2: मेरा कहना यह है कि जब पहले शादी होती थी तो सब कुछ विचार करके माँ बाप शादी तय करते थे बच्चों की, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई उनका अच्छा सोच नहीं।

0: सकता था। अब कुछ ऐसा हो गया है कि पीढ़ी के कारण, परिवर्तनों के कारण, और जो देश ऐसे हैं जिनमें सब चीज़ें नहीं इस तरीके से हैं, उनके प्रभाव स्वरूप लड़के लड़की, मैं वो वैसे नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वो इधर से वेस्ट है उधर से ईस्ट है,
1: बिल्कुल
0: तो कोई भी जगह जो है सापेक्ष है,
1: बिल्कुल
0: जो ईस्ट और वेस्ट है वो लेफ्ट राइट में है
1: जी।
0: तो ये जो विचार बनने लगा है पढ़ने लिखने के बाद, हम ये समझते हैं कि हमारे माता पिता को किसी प्रकार की कोई समझ नहीं है हमारे जीवन साथी चुनने में, और वो सारा निर्णय हम एकाधिकार अपने हाथ में लेके शादी कर लेते हैं। यदि आप निर्णय लेते हैं और आपका निर्णय पूरा सही रहता है, आप जीवन अच्छा गुजारते हैं, तो इस बात में कोई मैं बुराई नहीं मानता। लेकिन जब आप गलती कर लेते हैं, चाहे लड़का गलती करे चाहे लड़की करे, और चुनाव करते समय गलती करते हैं, तो एक तलाक की स्थिति, विग्रह की स्थिति आती है। और यदि बच्चा हो गया तो उसके माँ बाप में से एक छिन जाता है, उसका परिवार छिन जाता है, आर्थिक सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, और फिर पुनर्विवाह होता है एक बार, फिर दोबारा, फिर तिबारा। तो ये सब चीज़ें जो है मानव जाति के अनुरूप नहीं हैं, इसको मैं किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। मजबूरी में ये बात है, जैसे किसी का पैर काट के भी नकली पैर लगता है, जो ओरिजिनल माँ बाप हैं वही जीवन भर रहे हैं, और परिवार में माता पिता बच्चों के साथ रहें, उनके बच्चे उनके साथ रहें, उनके बच्चे उनके साथ रहें, यही सबसे सर्वोच्चम उदाहरण है जीवन का। तो इसमें जो कमी आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है सबके लिए।
1: बिल्कुल,
0: बस परिवार ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वृद्धाश्रम की आवश्यकता ना पड़े, बच्चों को क्रेश में ना जाना पड़े, और हंसी खुशी कम से कम साधनों में रहते हुए सब अच्छे से जीवन सुखी व्यतीत करें। बस
1: कम से कम साधनों में, ये एक बहुत बड़ी बात है।
0: मितव्ययता
1: जब हमने अपना बचपन बिताया तो दो कमरे थे घर में, आज जब बच्चा जन्म लेता है उसके लिए कमरा क्या, हर चीज अलग हो जाती है उसको। जब हम बात करते हैं ये अब स्टडी टाइम है तो स्टडी टेबल भी चाहिए, उसे अपनी स्पेस भी चाहिए, उसे अपना कंप्यूटर भी चाहिए, उसे हर चीज व्यक्ति गत चाहिए। तो क्यों हम ऐसे समाज, मतलब हम दिन ब दिन हम बढ़ावा दे रहे हैं इस बात
0: बहन
1: का?
0: मैं इसके लिए बहन मैं आपको ये कहना चाहूँगा इस बारे में, इसके पीछे असल में सुनियोजित साजिश है जो किसी को दिखाई नहीं देती है
1: जी।
0: वो साजिश ये है कि एक कहते हैं ब्याज, और दूसरा कहते हैं बीमा, और तीसरा कहते हैं डर। डर का व्यवसाय करके बीमा किया जाता है
1: जी,
0: ठीक है ना। ब्याज कमाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोन दिया जाए, मकान बड़े से बड़ा बनाएं, अपनी सीमा से बाहर बनाएं।
1: आप अपने बैंकिंग के अनुभव से बता रहे हैं?
0: नहीं, ये मैं पूरा टोटल में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है कि एक शाइलॉक करके एक नाटक था, उसमें ब्याज की ही दिखाया गया था
1: जी,
0: जिसमें अदायगी में उसका मांस काटा गया था।
1: बिल्कुल।
0: तो जी
1: हम फोन कॉल लेते हैं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्ते अंजू जी।
1: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
2: मैं लीला बोल रही हूँ
1: जी। लीला जी,
2: और मेहमान को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: प्रणाम प्रणाम।
2: तो पहले अभी जब से मैं सुन रही हूँ, आप इतनी मीठी वाणी में आप दोनों बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है सुन रहे थे, और हमारी यहाँ इतनी बारिश हो रही है
1: जी।
2: मैं तो
1: कहाँ रहती हैं आप?
2: हाँ, मैं बसेरी रहती हूँ
1: जी। तो वो तो घर है बारिश का। जी कहिए।
2: तो मैं सुन रही हूँ।
1: चाय का आनंद लीजिए, बसेरी में बैठी हुई है। चाय की चुस्की लीजिए।
2: चाय पी रही हूँ और आप लोगों को सुन रही हूँ। इतनी मीठी मीठी वाणी में आप बोल रहे हैं
1: जी,
2: चाय की मिठास तो और बढ़ गई।
1: चलिए आनंद लीजिए चाय का और अपना विचार दीजिए हमें।
2: तो मैं दो लाइन सुनाना चाहती हूँ
1: जी। स्वागत है।
2: दो लाइन सबसे

0: आप लोगों को प्यार ही हमें घींच लाई, अब सुनाने को मन कर दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या आप दोनों को। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। देखिए प्रेम जो है वो दुर्योधन का मेवा त्याग कर और विदुर के घर साग के लिए भगवान कृष्ण पहुँचे, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रेम जो है बहुत ही सशक्त

0: शक्त है। प्रेम आपको कार्यक्रम में खींच के लाया हमारे विचारों के साथ, अपने आपने विचार बांटे, बहुत अच्छा लगा। हम चर्चा को जारी रखते हैं। आप अभी बात कर रहे थे कि परिवार में हर बच्चा आज व्यक्तिगत साधन चाहता है कि उसका कमरा अलग हो, उसको पढ़ाई के लिए अलग प्रावधान किया जाए, उसका लैपटॉप भी होना चाहिए। आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हर चीज़ बच्चे को उपलब्ध, जैसे कहते हैं कि हर चीज़ सजी सजाई उनके थाली में रखी हुई है, तब भी विघटन की ओर जा रहे हैं परिवार। इस पर आपका विचार?
1: देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि समाज जैसा है और जैसा चल रहा है उसमें तो आपका कोई जोर है नहीं।
0: बिल्कुल,
1: हम समाज की कमियों को अपने घर ना आने दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी ये है कि हम अपने संपूर्ण दायित्वों को छोड़ करके अपने बच्चों का मन पूरा करने लगते हैं, जो बात हमको समझ में दिखाई नहीं देती है। इसकी हम लोग, मैं कहूँगा तो शायद आपको ध्यान जाएगा, असल में जो भी व्यक्ति की कमाई होती है, मैं पुरुष की कमाई की बात करता हूँ, पहले स्त्री की नहीं कर रहा हूँ, पुरुष की कमाई में उसका पहला फर्ज ये है कि अपने माता पिता को ठीक से रखे, भरण पोषण करे, और उसके बाद अपना करे और अपने बच्चों का करे। लेकिन हम बच्चों का करने में माता पिता का छोड़ते जाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा धन मिल जाता है और हमें ये अपनी गलती दिखाई नहीं देती। समाज में दो भाई हैं, बराबर नहीं होंगे, कोई ऊंचा होगा कोई नीचा होगा। जो सबसे संपन्न होता है वो क्या करता है कि सबसे अपने को काट लेता है समाज में और सब कुछ अपने बच्चों पर लगा देता है। जब बच्चे उस काम को आगे करेंगे 20 साल बाद 15 साल बाद, तब उसको अपना बोया हुआ विष सामने आएगा और 80% केसेस में आएगा।
0: चलिए एक फ़ोन कॉल लेते हैं, चर्चा को जारी रखेंगे फिर इसके बाद। हेलो,
2: हाँ बहन जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका शुभ नाम?
2: मैं हूँ श्यामा रघुनंदन गौगुप से और भाई जी को मेरा नमन।
1: नमस्कार बहन।
0: श्यामा जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: तो मेरा ये कहना है बहन जी, घर बड़ा है पर परिवार छोटा है
0: जी।
2: रिश्ता टूट रहा है, घर परिवार बिखर रहा है
0: जी,
2: आपस में मेल मिलाप नहीं है
0: जी।
2: सच में यह जीवन संघर्षमय है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
2: अपने आप से छूट रहे हैं, अपने घर परिवार में वैमनस्य है, जलन है, तेरा मेरा है। जिस घर में परिवार को युगों से सजा कर रखा, संवार कर रखा, बचा कर रखा, आज वह टुकड़ों में बट रहा है बहन जी।
0: जी,
2: ईंट से ईंट का हिसाब हो रहा है।
0: बिल्कुल,
2: अब न वह सुख रहा, न चैन रहा, न शांति रही।
0: तो फिर हम साहित्य को कहाँ पाते हैं, सबका हित कहाँ पाते हैं, जब हम इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं पर ज्ञान नहीं पाते हैं।
2: बहन जी, कोई अभी के समय में कोई न पंडित न आचार्य न मुला को सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल,
2: आपको पता है
0: जी जी,
2: हम इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। जैसे भाई जी ने कहा, मैं शुरू से सुन रही हूँ, मेरा तो रेडियो ही पता नहीं क्या हो गया है बहन जी, मैं तो मोबाइल में सुन रही हूँ आप लोगों को।
0: जी बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। पर अंतर यही है कि लोग आजकल डिग्री लेकर शिक्षित हैं पर ज्ञान की कमी है, तभी तो मार्ग से भटक रहे हैं। तो हमें सादा जीवन, उच्च विचार होने चाहिए। आजकल विचार तो उच्च कहाँ ही हो पा रहे हैं। पर हमारी चर्चा सुनते रहिए, आपने भाग लिया इसमें, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम को अंत की ओर ले जा रहे हैं तो मैं आज अतिथि से सुनवाना चाहती हूँ कि उनके विचार आप तक पहुँच पाएं। चलिए हम बातचीत को जारी रखते हैं कि परिवार विघटित हो रहे हैं और आपने कहा कि माता पिता को भूलकर अपने बच्चों पर अधिक व्यय करते हैं, इस पर आगे बातचीत जाती है।
1: देखिए, असल में परिवार जो अगर हम देखें, रामायण की बात करें तो वहाँ पर पूरा वो दिखाते हैं, जिसमें पति भाई भी हैं और भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, रक्षक भी हैं, सेवक भी हैं, सब लोग हैं
0: जी।
1: तो असल में परिवार तो वही होता है। पता नहीं कहाँ से ये बीमारी पड़ गई है कि हम दो, मतलब पति पत्नी बस
0: जी,
1: और अधिक से अधिक अगर बच्चे हैं तो वो भी अधिक से अधिक दो, और वो भी दो के बजाय एक
0: एक।
1: हम उनको असल में, सच में बताएं, मैं कह ही देता हूँ, ईश्वर की प्रकृति ये कहती है कि जितने युवा हों उससे ज़्यादा और युवा होने चाहिए ताकि उनका भार वो वहन कर सकें। हमने उस प्रकृति के क्रम को उलटने की कोशिश की है कि हम चाहते हैं कि हम दो लोगों में हमारा एक बच्चा हो। आप सोचिए, कल्पना करिए, जो वो एक मियाँ बीबी होंगे उनके ऊपर चार बुड्ढों का भार होगा ना
0: जी।
1: एक लड़की के ऊपर माँ बाप का, लड़के

0: के ऊपर माँ बाप का, तो दो युवा चार का भार कैसे उठाएंगे? और वो हम अपनी हाई स्टैंडर्ड लिविंग के चक्कर में जवानी में हमने ये चीज़ को हटा दिया कि अगली पीढ़ी को हमारा भार उठाना है। और दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ओल्ड एज पेंशन भी ज़रूरी है, विडो पेंशन भी ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ये पेंशन देगा कौन? ये तो युवा देंगे। जब युवाओं की संख्या ही घट जाएगी तो ये पेंशन सरकार लाएगी कहाँ से? हर आदमी उस पेंशन के मन से खर्च करके ख़त्म कर दे रहा है पैसे को, कुछ संचय नहीं कर रहा है कि हम तो पेंशन से काम चलाएंगे। वो पेंशन समय के साथ घट जाती है वैल्यू में और सबको गरीबी का सामना करना पड़ेगा। मेरा कहना ये है कि मैं कह देता हूँ कि आप 40 साल से ऊपर नहीं कमाते हैं कोई भी आदमी, तो 10 साल का मकान बना लीजिए, 10 साल सुरक्षित कर लीजिए भविष्य के लिए और 20 साल में अपना परिवार चलाइए। आज स्थिति यह है कि हम 10,000 की आमदनी में 15,000 कर्जा लेके खर्च करते हैं और ब्याज भरते भरते बूढ़े हो जाते हैं, और हमें खर्चे बिना कम करे हम परिवार में सुरक्षा नहीं ला सकते हैं और ना हमारे पास किसी को देने को होगा। और समाज में जो सबसे ज़्यादा कमाता है वो सबसे कम दूसरों को देता है, तो ये बहुत ही खराब प्रवृत्ति है जो हमारे संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? हम अपने पहले आचरण में सुधारेंगे, फिर हमारे आचरण से शायद बच्चे हमसे सीख लें। जब हमारे आचरण में कमी आएगी तो बच्चों में तो उससे चार गुनी आनी ही आनी है। इसका कोई प्रभाव का इलाज नहीं है,
1: क्योंकि जो बीज हम बोते हैं वही
0: वही बढ़ के आता है
1: हमारे सामने। चलिए, हम कार्यक्रम को अंत की ओर जा रहे हैं, हमारे पास केवल 10 मिनट रह गए हैं, 9 मिनट रह गए हैं। आज आपने साहित्य दर्पण में भाग लिया, सबसे पहला संदेश आपका युवा पीढ़ी के लिए क्या होगा?
0: देखिए, हमारा युवा पीढ़ी के लिए संदेश ये है कि अपने जो हम मोबाइल पर समय खर्च करते हैं अनप्रोडक्टिव कामों में, अपने सिर्फ मनोरंजन के लिए, उसमें कुछ कटौती करें, कुछ वो सब पढ़ें जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। हम कहीं पे भी अचानक से नहीं आए हैं, सदियों से हमने जो सीखा है उसको सीखें, उसके जो गुण हैं उनको लें, जो अवगुण थे समाज में हमेशा रहते हैं। जैसे आज मैं कहूँगा कि दो अवगुण बहुत बुरी तरह बढ़ रहे हैं, वो है नशा शराब का, दूसरा जुए का, और तीसरा जो है वो नशा है जो हम एक निष्ठ नहीं रहते हैं पति पत्नी के बीच में। ये वो चीज़ें हैं जो हमें नष्ट करने की तरफ ले जा रही हैं, इनसे हमको पूर्णता बचना है वरना विनाश निश्चित है। दूसरी मैं एक सावधानी कहना चाहता हूँ जो मैं दिल से महसूस करता हूँ कि भारत एक देश था, बहुत अच्छा देश था, वहाँ अलग अलग राजा थे, एक दूसरे से मतलब नहीं रखते थे, उसका लाभ उठा करके बाहर के लोग आए, यवन आए और लोग आए, उन्होंने हमारे देश पर कब्जा करके 200-300 साल गुलाम रखा, ठीक है ना। तो हम मॉरिशस एक अच्छा देश है, मैं इसके लिए अत्यंत शुभकामना करता हूँ, मेरा बच्चा भी यहीं रहता है, पोती भी यहीं रहती है, और वैसे भी किसी का भी शुभकामनाएं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भवावे, इस भावना को ग्रहण करते हुए इस उम्र में, जब मेरी उम्र संन्यास की 75 से ऊपर है, तो मेरा कहना यह है कि मॉरिशस के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम यहाँ का उत्पादन पूरी तरह बढ़ाएँ और हाथ पैर से काम करना सीखें, वही हमारा बुढ़ापे में ठीक रखता है। उत्पादन में हम बिना नौकरी करे भी योगदान दे सकते हैं। दूसरी बात, बच्चों को सब अच्छी चीज़ें सिखाएं जिससे वो खुद अच्छा जीवन जिएं, उनका जीवन सुखी हो और आपका भी जीवन सुखी हो और उनके बच्चों का भी जीवन सुखी हो। तीसरी बात है, कर्ज लेना को प्रवृत्ति को कम से कम करें और मितव्ययता से रहना सीखें जिससे सब खुश रह सकें। जब इंस्टॉलमेंट देनी होती है तो आदमी का सुख चैन चला जाता है, उससे बचें।
1: एक आखिरी कॉल लेते हैं कार्यक्रम की, चलिए। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बसंती जी कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप दोनों के नमस्कार। मैं एक दो शब्द कहने जा रही हूँ।
1: जी
2: जी, भगवान पर। हे सोम हमें तुम शुभ वर दो, हे सोम हमें तुम शुभ वर दो, हृदय हमारे पावन कर दो, परम पवित्र सोम तुम केवल, तुमसे रवि शशि पावन है जल, है तुमसे पावन पावन अनिल अनल, इस जीवन को पावन कर दो, हे सोम हमें तुम शुभ वर दो, दुर्गुण दुरित दूरत हो जाएं, जीवन में हम गुण अपनाएं, मन मंदिर में तुम्हें बिठाएं, सकल मलिनता इसकी धर लो, हे सोम हमें तुम शुभ वर दो। तो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बसंती जी आपके विचारों के लिए, और हम सबके लिए शुभ सोचें ऐसा हमारी सोच है और ऐसा ही होना चाहिए। आप भाषा के ऊपर विचार देना चाह रहे थे, तो आपका भाषा पर क्या विचार है, किस प्रकार हम कार्यक्रम के अंत की ओर जा रहे हैं कुछ शब्दों में।
0: देखिए, मेरा कहना यह कि जो भाषा आपको आती है, मातृभाषा है या आपने क्रियोल आती है

0: या जो आप यहाँ सीखते हैं, भारत एक छोटा, ये मॉरिशस बहुत छोटा देश है, यहाँ के लोगों को कुछ और देशों की भाषा सीख करके अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में मदद लेनी चाहिए, उससे आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है और प्रकृति ने इसको सब कुछ दिया है। तो अगर हमारे यहाँ दुभाषीय कई भाषा जानने वाले लोग होंगे तो और देशों से लोग आएंगे, ये रोज़गार भी मिलेगा, इनकम भी होगी और आप भी वहाँ जाके कमा सकते हैं। ये एक सुलभ साधन है, थोड़ी सी मेहनत करने से एक साल के अंदर एक आदमी एक भाषा में पारंगत हो सकता है
1: जी।
0: और ये मैं चाहूँगा कि लोग अधिक से अधिक, इससे दूसरा फायदा ये होता है जब आप नई भाषा सीखते हैं तो तार्किक शक्ति विकास होता है और आपकी बुद्धि में जो सीखने का जो कहना चाहिए जो पोर्शन है वो राइज करता है, फिर आप कुछ कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और सीख सीख करके ही आप अपनी वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए मेरी कहना ये कि सब लोग बहुभाषी बने और बहुत भाषाएँ सीखें।
1: चलिए, आपने बहुत सुंदर विचार दिया। एक आखिरी फोन कॉल लेते हैं कार्यक्रम की। हेलो, हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
2: मैं मोहनलाल जगेसर
1: जी। जगेसर जी, स्वागत है आपका।
2: आज आप लोगों ने बहुत एक गहरा विषय, गंभीर विषय पर अपने विचार व्यक्त किए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथि को जिन्होंने अपने विचार,
2: मेहमान है
1: जी,
2: वो हमें बताए कि हमारे पूर्वज यहाँ आए थे कि उनका उद्देश्य था कृषि करने के लिए
1: जी,
2: और कुछ महिलाएं खेत के काम करती थी और कुछ परिवार व महिलाएं गो पालती थी,
1: बिल्कुल,
2: जिससे उनकी आमदनी
1: बढ़
2: पाए, वृद्धि हो
1: जी।
2: इस प्रकार बच्चों की शिक्षा दीक्षा के काम आई। उस समय के बच्चे शिक्षित और संस्कारी थे
1: जी,
2: लेकिन 1907 के बाद जब अनुधिकरण होने लगा तब गोपालन कम पड़ गई, अधिक से अधिक महिलाएं अधिनिकरण के से जुड़ गए और कारखाने में काम करने चली गई,
1: बिल्कुल,
2: यहाँ तक कि संस्कृति हमारे पीछे रह गई जिसका दुष्परिणाम वर्तमान में आज उदाहरण बनी हुई है
1: जी।
2: बड़ों का बहुत सी परिवार का बहिष्कार हो रहा है। आपने मुझे धन्यवाद बात करने का कुछ मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद समर्पण करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जगेश्वर जी।
0: धन्यवाद जगेश्वर जी,
1: आपने अपना विचार रखा कि पहले गौपालन भी होता था और कृषि में महिलाएं मदद भी करती थी, पर आज परिवर्तन हो चुका है। आज बहुत से परिवार समृद्ध हैं, वे नहीं चाहते, आज के बच्चे ही नहीं चाहते कि उनकी माँ या पिता खेतों में काम करें, वो समृद्धता की ओर जा रहे हैं। पर हर एक का अपना विचार है, आप अपना विचार हमें बताएं।
0: आपने जो बिंदु उठाया है वो उस समय के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उचित है
1: जी।
0: असल में एक गोपालन के दो रूप हैं, एक है जब गोपालन में हम काम के साथ साथ गोपालन करते हैं और दूसरा गोपालन है कमर्शियल लेवल पर।
1: बिल्कुल,
0: आज जो हम देखते हैं यहाँ जो दूध आता है वहाँ पर दो दो महिलाएं पति पत्नी मिलकर के 40-40 गाय पालते हैं और एक बहुत अच्छी जीविका अर्न करते हैं, उसका स्कोप है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम जानवर के नजदीक नहीं जाएंगे, और उसको व्यावसायिक तौर से करेंगे तो बहुत सफल होंगे, आमदनी भी होगी और सब कुछ होगा।
1: बहुत सारे विचार आपने साझा किए आज के कार्यक्रम में, हम आपको आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतने बहुमूल्य विचार हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ बांटे। आज शशिभूषण जी, हम आपको आभार प्रकट करते हैं कि आपने साहित्य दर्पण कार्यक्रम में और साथ ही लुडोविक ने श्रोताओं तक ये कार्यक्रम पहुंचाया, उनको भी आभार प्रकट करते हैं। एक अन्य कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे आप सबके साथ। चलिए, आज के लिए इतना ही, शुभ संध्या।
0: आपने यहाँ मौका दिया हमको।

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: अभी आपने सुना साहित्य दर्पण, जिसे होवे जीवन का दर्शन, शाम के 5:01।
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी
1: नमस्कार और आदाब प्यारे देवी और सज्जनों, एम टू रेडियो मॉरिशस की लहरों पे स्वागत है श्रोताओं। खेल खिलाड़ी प्रोग्राम आपके लिए 6 बजे तक रोशन के साथ। पहले भाग में सिनेमा दिल से और दूसरे भाग में रैपिड चैलेंज, समय आने पर बताएंगे क्या होने वाला है। एक हल्का सा इशारा वर्ल्ड कप 2026। तो शुरुआत करते हैं सिनेमा दिल से 5:30 बजे तक। आज का जो विषय है बड़ा ही आसान सा विषय है और आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं। मेरे प्यारे मीत, कौन सा है वो गीत? हाँ जी, कौन सा है वो गीत मेरे प्यारे मीत? हम आपको एक बॉलीवुड इक्वेशन देंगे और आपको उसे सुलझाना होगा। जैसे कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन में होता है 1+1=2, वैसे ही एक बॉलीवुड इक्वेशन हम आपको देंगे, उसे आपको सुलझाना होगा और आपका जो सॉल्यूशन होगा, आपका जो जवाब होगा, वो होगा कौन सा गाना। यानी हम 2 कलाकारों का नाम देंगे, उस पे जोड़ेंगे गाने का एक कीवर्ड, एक स्पेसिफिक शब्द, और आपको पहचान कर बताना पड़ेगा कि कौन सा गाना हो सकता है और आपको ऑन एयर मौका दिया जाएगा भाग लेने के लिए। और वही गीत हम चलाएंगे जिस को रिक्रिएट किया गया है नए रूप में, लेकिन हम ओरिजिनल सॉन्ग चलाएंगे। नंबर वही है 402-808-5-92-85। और पहला गाना शुरू होने जा रहा है और तब आप थोड़ा धैर्य रखें, हम पहला प्रश्न आपसे पूछेंगे। और पहले गाने का जो क्लू है वो है देवानंद प्लस आशा पारेख और शब्द है कुछ बोल दो। तो बहुत ही आसान है, कुछ बोल दो देवानंद प्लस आशा पारेख। तो गाना होता है, बहुत ही आसान सा गाना होता है, जब प्यार किसी से होता है, जिया ओ जिया कुछ बोल दो, यही गाना है।

0: तुरंत हम पहला प्रश्न करेंगे, जरा आप ध्यान रखें।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

जी हाँ, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से लिया गया ये गाना चल रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, जरा गौर से सुने। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन जी और गॉर्जियस राखी गुलजार जी, और गाने में बोल आते हैं सच हुए। बहुत ही आसान सा गाना है। अमिताभ बच्चन जी और राखी जी प्लस गाने में ये दो शब्द हैं, सच हुए। आप हमें बताइए कौन सा गाना अभी चलने वाला है, कौन सा गाना है जिस पर हमने ये क्लू आपको दिया है। 402-808-5

0: जी हाँ, जब सच हो जाते हैं प्यार के सपने, तब प्रेम की माला लगते हैं जपने। हमने सवाल किया था कि अमिताभ बच्चन जी, राखी गुलजार जी और शब्द आते हैं सच हुए, कौन सा गाना है वो? और पहला श्रोता लाइन पे आ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मैं अनिता हूँ, मोरारबिया से।
0: अनिता जी का स्वागत है खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में। मोरारबिया से आप बात कर रही हैं ना?
1: जी हाँ।
0: जी अनिता जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और कैसे लगता है आपको गाने और गीत गाना भी, कैसे लगता है आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है गाने, और गाने सुनने को भी
0: सुनने को भी और गाने को भी।
1: गाने को भी।
0: तो अनिता जी, बताइए हमें कौन सा गाना है वो जिसके लिए हमने आपको इशारा दिया, बताइए तो।
1: अपने प्यार के सपने सच हुए।
0: क्या बात है अनिता जी, आपने सही सही जवाब दिया। और ये फिल्म आपने देखी है?
1: नहीं देखी है
0: ये फिल्म। फिल्म का नाम है बरसात की रात, और आपने सही जवाब दिया। बहुत ही धन्यवाद, और गाना चल पड़ा। बहुत धन्यवाद अनिता जी, फिर से मुलाकात होगी।
1: बाय।
0: तो ये थी अनिता जी फ्रॉम मोरारबिया, और फिल्म का नाम बरसात की एक रात, जिसका गाना हम चलाएंगे। और थोड़ी देर में दूसरा प्रश्न आपके लिए।
2: 800 and 19 kilos. This is Radio Mauritius.
3: नहीं बाबा, जरा बाजार चला गया था सामान खरीदने, वहीं देर हो गई। देखो तो

0: लिए क्या लाए?
1: क्या लाए हो बता। पालना
0: आने वाले मेहमान

0: अरे वाह, तुम दोनों सो जाओगे और मैं जागती रहूंगी, कभी नहीं।
1: अरे बाबा, तुम सो जाओगे तो उसे दूध कौन पिलाएगा?
0: दत्त, ठीक है, तुम उसी के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं।
1: अरे भाई, तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे तो और किसके बारे में सोचेंगे? तुम ही तो सब कुछ हो। ये देखो, उसके लिए अगर पालना लाया हूं तो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया हूं।
0: कहां दिखा? सिल्की है?
1: हाँ।
0: कौन सा रंग?
1: लाल धारी वाली। जाओ जल्दी से पहन कर तैयार हो जाओ।
0: क्यों?
1: अरे वाह, भूल गए? अरे भाई, आज हमारी शादी की सालगिरह है, जरा बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, खुशियां मनाएंगे।
0: अच्छा, तुम्हें शादी की तारीख याद है? मैं तो समझती थी ड्यूटी के अलावा तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता।
1: फिर तानेबाजी की?
0: नहीं, यूं कह रही थी। चलो
1: चलो।

जी हाँ, बरसात की एक रात फिल्म का गाना किशोर दा और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में, और इस गाने को फिर भी रिक्रिएट किया गया और नए रूप में इसे हम ढाला गया, और आप लोगों ने तो सुना ही होगा रेडियो पर। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। बड़ा ही आसान सा है और क्लू इस प्रकार है, बॉलीवुड इक्वेशन इस प्रकार है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान प्लस ममता कुलकर्णी जी। और गाने जो गाने हैं जिसको आपको ढूंढना है उस समय ये शब्द आते हैं, दिल के मेहमा। बड़ा ही आसान, ममता कुलकर्णी प्लस आमिर खान और गाने में शब्द आते हैं दिल के मेहमान। कौन सा गाना है? 4082808585।

0: जी हाँ, उनमें खिली है अब कलियां, क्या आवाज है किशोरदा की, क्या आवाज है लता जी की। और हमने सवाल किया था कि आमिर खान प्लस ममता कुलकर्णी और गाने के शब्द हैं इस प्रकार दिल के मेहमान। दूसरे श्रोता लाइन पर हैं, चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, किसका क्या आवाज हम सुन रहे हैं?
1: या रितेश दुलब फ्रॉम रोजवेल।
0: रितेश दुलब फ्रॉम रोजवेल। जहाँ तक मुझे याद है, रितेश दुलब तो एक बहुत ही बढ़िया गायक है।

0: all good singers, isn't it? No one is perfect. So anyone can sing nowadays.
1: हाँ जी, कोई भी गा सकता है. Anybody can dance, anybody can sing.
0: Yes, of course. Just like जैसे कि हम कहते हैं, everyone is like born with a talent. So you just need to try your talent and you see yourself that you can sing, you can dance.
1: लेकिन हमने आपका talent देखा है, आपकी निपुणता देखी है हमने. आपने ढेर सारे competition में भाग लिया है और मुझे याद है कि MBC में तो आते रहते हैं, आप प्रोग्राम करते रहते हैं और कंपटीशन में भी भाग लेते रहते हैं.
0: Yes, you're right, you're
1: बहुत
0: right.
1: बहुत
0: just for the sake of loving songs and music, जैसे कि हम कहते हैं, you know, we are born with the songs and developing such liking.
1: बिल्कुल, हाँ जी, जैसे कि संगीत हमारे रग में खून भरकर दौड़ रही है, दौड़ रहा है ये संगीत. बहुत धन्यवाद रितेश जी, आप इस प्रोग्राम में पधारे. तो चलिए, आप हमें बताइए कि ये कौन सा गाना है.
0: ये तो 1994. धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए. With a nice music.
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. और आपने क्या जवाब दिया, क्या गाना गाया अपनी मधुर आवाज में. It was just marvelous talking to you on air.
0: Same here. Thank you.
1: Okay.
0: Thank you. Every time I come to my mom's place, it's just like my lucky day. So I think I need to buy some lotto.
1: Oh, okay. So just do it.
0: Yes.
1: हाँ जी, नेकर पुश पुश.
0: Namaste. Spoken to you.
1: Bye.
0: Bye bye.
2: On the hour. Every hour, Radio Mauritius.
1: जी हाँ, रितेश जी की ओर से बहुत ही सही जवाब रहा. बाजी फिल्म का गाना, आमिर खान, ममता कुलकर्णी स्टारर. और ये गाना उन्होंने क्या खूब पहचाना. थोड़ी देर में तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए.

धीरे धीरे आप भी हमारे दिल के मेहमान होते जा रहे हैं और आपका स्वागत है खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में। चलिए अगला प्रश्न जरा गौर से हम आपको एक गौर से सुने, हम आपको इशारा करते हैं, क्लू देते हैं। एक्स मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन प्लस संजय कपूर और जो कीवर्ड्स हैं वो हैं होश ना खबर। बहुत ही आसान, संजय कपूर, सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन प्लस शब्द है होश ना खबर। कौन सा गाना है? 4028085।

0: जी हाँ, सवाल किया हमने सुष्मिता सेन, संजय कपूर और शब्द है होश ना खबर। चलिए हम सुनते हैं अगले श्रोता को। हेलो हेलो,
1: नमस्कार भाई रोशन।
0: भाई हरीश फ्रॉम बोबासे,
1: नमस्कार।
0: सभी को नमस्कार, आपका नमस्कार सभी ने स्वीकार किया है। तो भाई हरीश जी बताइए कौन सा जवाब हो सकता है।
1: मेरा जवाब है फिल्म है सिर्फ तुम।
0: सिर्फ तुम, अच्छा कौन सा
1: गाना है? होश न खबर है ये कैसा असर है, तुझसे मिलने के बाद दिलबर, ओ तुझसे मिलने के बाद दिलबर, दिलबर दिलबर, ओ दिलबर दिलबर।
0: क्या बात है भाई हरीश जी, आपने तो गाया और क्या खूब गाया आपने, बहुत ही बढ़िया।
1: थैंक यू थैंक यू।
0: ऐसे ही आप भाग लेते रहें, धन्यवाद आपको, बाय।
1: थैंक यू, बाय।
0: तो ये भाई हरीश जी ने क्या खूब गाना गाया है, और दिलबर दिलबर थोड़ी देर में अगला प्रश्न आप लोगों के लिए।

जी दोस्तों, इस गाने को भी रिक्रिएट किया गया था फिल्म सत्यमेव जयते में, जहां पर नोरा फतेही नजर आते हैं उस नए गाने में। और चलिए हम अगला सवाल करते हैं आपके साथ। कमल हासन प्लस श्रीदेवी और गाने में बोल आते हैं गले लगा ले, बहुत ही आसान। श्रीदेवी, कमल हासन और शब्द है गले लगा ले, कौन सा गाना है? 402-808-5।

0: जी हाँ, प्रश्नों से चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, लेकिन क्या हो गया है आपको हमें तो पता नहीं। अगले श्रोता बताएंगे कि क्या हो गया है उन्हें। हेलो।
1: हेलो नमस्ते दर्शन जी, मैं कोटे से आशा जानू बोल रही हूँ।
0: आशा जानू जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में। बिल्कुल आप फिट हैं।
1: और सच में आपने कहा ना, क्या हो गया है, मुझे इस प्रोग्राम से प्यार हो गया। इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप लाते हैं ना कि सच में शाम जो है रंगीन हो जाती है।
0: बहुत धन्यवाद आशा जी, हमेशा आप आती हैं और उत्साह बढ़ा के चली जाती हैं। बहुत धन्यवाद आशा जी। चलिए, हमने कहा कमल हासन, श्रीदेवी और गली लगा ले, कौन सा गाना हो सकता है बताइए तो।
1: मूवी है सदमा।
0: हाँ जी।
1: और गाना है ए जिंदगी गली लगा ले, हमने तो तेरे हर

क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और आपने सही अनुमान लगाया और गाया भी। बहुत धन्यवाद आशा जी, ऐसे ही आप भाग लेती रहें। धन्यवाद, बाय। सदमा का ये गाना कैसे न चलाएं सुरेश वादकर जी की मधुर आवाज में। इस गाने को भी रिक्रिएट किया गया था फिल्म डियर जिंदगी में, शाहरुख खान और आलिया भट्ट नजर आए थे और अरिजीत सिंह ने गाया था, और ये सुरेश वादकर जी का गाना। थोड़ी देर में अगला प्रश्न।

जी हाँ, जिंदगी को गले लगाना चाहिए। जिंदगी बहुत प्यारी चीज है, ईश्वर ने हमें देन की है, तो इसका हम स्वागत करें और इसका सम्मान भी करें। चलिए अगला प्रश्न जरा गौर से सुने। नागार्जुना प्लस मनीषा कोइराला और गाने में बोलाते हैं दिल खिले। बिल्कुल दिल खिले, मनीषा कोइराला प्लस नागार्जुना इज इक्वल टू विच सॉन्ग, कौन सा गाना? 4028085।

0: जिंदगी।
1: जी हाँ, आपका सहारा मिल गया है इस प्रोग्राम में, इसीलिए तो आप आ रहे हैं, बार बार प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, और वो भी क्या बात, किस तरीके से, वाह। चलिए हम अगले श्रोता से बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
1: नमस्ते,
2: मैं
1: कटबोन
2: सरिता
1: के।
2: हूँ।
1: हाँ जी,
2: से।
1: हाँ सरिता जी, आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? ठीक?
2: मैं ठीक हूँ, और आप?
1: हम भी ठीक हैं जी। तो चलिए आप हमें बताइए, नागार्जुना प्लस मनीषा कोइराला और दिल खिले, कौन सा गाना हो सकता है?
2: तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।
1: क्या बात है सरिता जी, क्या खूब गाया आपने, और आपको कहेंगे बहुत बधाई हो। ऐसे ही आप भाग लेती रहें, दूसरे सेगमेंट में भी भाग लेना, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड कप है, तो वहाँ पर भी आपको भाग लेना है। ओके, धन्यवाद।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जी हाँ, रेडियो मॉरिशस के साथ आप जुड़े हुए हैं AM2 रेडियो मॉरिशस।

0: जो आपका मनपसंद रेडियो चैनल है और अभी 5:23 हो गए हैं।
1: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।

खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं AM2 रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। और आप तो जान हम तो जानते हैं कि आप लोग स्पोर्ट्स के बहुत ही शौकीन हैं और संगीत प्रेमी भी तो है। और चलिए इस सेगमेंट को हमने नाम दिया है रैपिड चैलेंज, जहां पर ज्यादातर प्रश्न हम वर्ल्ड कप पर करेंगे और सामान्य ज्ञान पर भी। स्पेशल वर्ल्ड कप 2026 वर्ल्ड कप का जादू दिल पर कैसे हम रखें काबू। 11 जून से आरंभ हुआ वर्ल्ड कप का और कल 28 जून को प्रिलिमिनरी राउंड हो जाएगा समाप्त। क्वालिफिकेशन किसने की है प्राप्त? 48 टीम्स में से केवल 32 टीम्स राउंड ऑफ 32 में शामिल है, बाकी 16 टीम्स लौटेंगे अपने देश। 3 मेजबान देशों में केवल मेक्सिको ने 100% विन प्राप्त किया, यानी 3 जीत 9 अंक। यूएसए और कनाडा की हार हो गई, याद रख रहे जर्मनी की भी आश्चर्यजनक हार हुई इक्वाडोर के विरुद्ध। और काबो वर्डे ने मुर्गा बनाया स्पेन और यूरुग्वे को। और डॉग होर्स जिसे हम कहते थे नोवे, जो छुपा रस्तम हुआ था, लेकिन कल उनकी भारी हार हुई फ्रांस के खिलाफ 1-4 के स्कोर से। और साउथ अफ्रीका राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाइड, मेसी और रोनाल्डो ने रिकॉर्ड तोड़ा। और कौन कौन से रिकॉर्ड्स तोड़े जाने वाले हैं, आप अंत तक इस वर्ल्ड कप के साथ रहें, यानी 19 जुलाई को जहां पर महाफाइनल होगा न्यूयॉर्क में। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर, और बहुत ही आसान से प्रश्न हमने आपके लिए तैयार किया है।

तो चलिए आप हमें बताइए कि लियोनेल मेसी ने केवल लियोनेल मेसी नहीं अपने टीम के लिए गोल स्कोर किए हैं और अभी तक वो टॉप स्कोरर हैं इस वर्ल्ड कप 2026 में। आप केवल हमें 4028085 पर जल्दी जल्दी बताइए कि लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप 2026 में कितने गोल स्कोर किए हैं अब तक। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कितने गोल्स अब तक लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप में स्कोर किए हैं, और 4028085 पर प्लीज आप लोग हमें जवाब दें।

0: जी हाँ, लफ्ज़ों से बयान ना हो पाए लेकिन आपको लफ्ज़ों से बयान करना पड़ेगा कि कौन सा वो है जवाब। लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप 2026 में अब तक कितने गोल स्कोर किए हैं? चलिए हम पहले श्रोता से मिलते हैं। हेलो
1: हेलो रोशन भाई, नमस्ते।
0: नमस्ते विजय भाई, बोलत हुआ सेवास्तोपोल से।
1: विजय बंदानी क्लाबेट से।
0: हाँ जी, कैसे बात चलता?
1: सब ठीक है, तू कैसे? ठीक हो ना?
0: ठीक है जब भाई जा चले यहाँ तब तुहर सेवा करे खातिर तो ठीक ही है।
1: इंतजार कैसे तुहर प्रोग्राम बहुत बढ़िया बाटे। इंतजार कैसे हम यार, हर प्रोग्राम जो तुहर पैसाते कहे हमने के बहुत अच्छा लगेगा। सबके प्रोग्राम अच्छा बात तुहर स्पोर्ट्स के जो स्पेशल वे रहे हमने खातिर।
0: धन्यवाद, हम जानीला तो लोग स्पोर्ट्स बहुत ही पसंद करे ला जा यही खातिर। चल विजय भाई अपन जवाब द।
1: हाँ हाँ, यही कुछ बीमार में दे मिल बैंक के पांच गोल दले बा।
0: पांच को गोल दले बा?
1: हाँ।
0: शो?
1: हाँ।
0: कॉन्फिडेंट?
1: हाँ।
0: लॉक किया जाए?
1: लॉक। हाँ।
0: बहुत ही बढ़िया भाई विजय जी, 10 अंक तोहरा प्राप्त हो गल बा। तो चला तुरंत एगो दूसरा प्रश्न तुहरा संगे, क्योंकि एकर टाइटल दियल गल बा है, एक सेगमेंट के टाइटल है रैपिड चैलेंज। तो एगो चैलेंज कर रहे तुहर से, तो पहला जवाब देला बहुत ही सही, पांच गोल डलन। तो अब हमके बताओ कि उ मिरोस्लाव क्लोजे के रिकॉर्ड तोड़ देलन। कितना बरिस से मिरोस्लाव क्लोजे जो न जर्मेनियन प्लेयर है वो रिकॉर्ड बनेले रह, तो झट से लियोनेल मेसी ने हई रिकॉर्ड तोड़ दिलक है वर्ल्ड कप में। तो बताओ हमने के कुल मिला के सब कुप जुमोन में अब तक मेसी कितना गोल दले बा?
1: 18 गोल।
0: 18 गोल तुरंत बोल दिला हमके तू तो। क्या बात है विजय भाई, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे ही भाग लेते रहिए और फुटबॉल देखते रहिए। कौन है तुम्हारा फेवरेट टीम?
1: टीम है इंग्लैंड।
0: इंग्लैंड जो गाना से खाली गाना गए गोल नहीं दलक।
1: आज जीती,
0: आज जीती। अच्छा देखब सब पनामा के मार मारी की नहीं?
1: मारी।
0: अच्छा नहीं तो के बेरना के मार पर ही नहीं था।
1: धन्यवाद भाई।
0: ओके भाई विजय जी, धन्यवाद।

0: जी हाँ, लम्हा लम्हा हम आपको सोचते हैं और अपने आप में कहते हैं कि क्या बात है, इतना समय निकाल कर खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में आप भाग लेते हैं, दिलचस्पी बढ़ाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमने अभी जिक्र किया भाई विजय से इंग्लैंड वर्सेस घाना। जी हाँ, ये स्कोर आपको बताना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में दोनों एक ही ग्रुप में हैं। घाना ने इंग्लैंड के साथ मैच खेला था, तो आप केवल हमें बताइए वो स्कोर क्या हुआ था। बहुत ही आसान सा प्रश्न, 4-0-2, 8-0-8-5 पर प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दें।
1: 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.

0: जी हाँ, डर्टी पिक्चर का गाना है, विद्या बालन और नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया, पप्पी लहरी साहब और श्रेया घोषाल की मधुर आवाजों में। हमने सवाल किया इंग्लैंड वर्सेस घाना, इसका स्कोर क्या हुआ था। चलिए हम अगले श्रोता से बात करते हैं। हेलो
1: हेलो रोशन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते। ऑल राइट, ये तो इंदिरा जी है।
1: हाँ,
0: मोडाबियक इंदिरा जी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। तो बताइए स्कोर क्या था।
1: स्कोर 0-0 था।
0: बिल्कुल, किसी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया था और आपने बहुत ही सही जवाब दिया। चलिए, ये रहा पहला प्रश्न। तुरंत दूसरा प्रश्न आपके लिए, और हम तो जानते हैं कि ये रैपिड चैलेंज राउंड है, तो एक चैलेंज आपके लिए। आपने कहा इंग्लैंड 0-0, ओके। तो आप हमें बताइए गाना जो है उसकी राजधानी का नाम क्या है, कैपिटल ऑफ गाना।
1: कैपिटल ऑफ गाना इज
0: एक्रे नहीं, आकरा।
1: आकरा,
0: हाँ जी, आकरा इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही आप भाग लेती रहें इंदिरा जी, धन्यवाद आपको। बाय।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: बाय।

रैपिड चैलेंज राउंड और स्पेशल वर्ल्ड कप पर तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न हमने आपके लिए चुना है और तो आप हमेशा बहुत ही आसानी से जवाब दे ही देते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा हमें कि अभी अभी आपने सुना, अभी नहीं बल्कि चंद दिनों में, चंद दिन पहले आपने सुना कि मेसी ने इसको रिकॉर्ड तोड़ा और रोनाल्डो ने भी रिकॉर्ड तोड़ा। इन दोनों के बीच में जो राइवलरी है सभी को पता है। रोनाल्डो ने कहा क्यों मैं पीछे रहूं, और उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि हर वर्ल्ड कप में जो उन्होंने भाग लिया सब वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल स्कोर किया कम से कम एक, और ये आज तक किसी खिलाड़ी ने नहीं कर पाया, वो मेसी ने भी नहीं कर पाया। तो आपको हमें बताना पड़ेगा 4028085 पर कि कितने वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने स्कोर किया। हाँ जी, कितने वर्ल्ड कप में कुल मिला के रोनाल्डो ने स्कोर किया 4028085।

0: जी हाँ, हम डिस्को के दीवाने हैं, जैसे नाज़िया हसन जी गाती रहती थी। अफसोस आज वो इस दुनिया में नहीं है। डिस्को दीवाने, चलिए हमने आपसे सवाल किया था कि रोनाल्डो ने कुल मिलाकर कितने वर्ल्ड कप में गोल डाले हैं, जिसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। चलिए, हेलो हेलो हेलो
1: हेलो जी,
0: हेलो जी, नमस्ते
1: नमस्ते।
0: ये दिला जी हैं फ्रॉम मौलाशु।
1: मौलाशु
0: कैसे बात दिला जी?
1: सब श्रोता लोग के नमस्ते करत है।
0: नमस्ते करत, और सब श्रोता तो हर नमस्ते स्वीकार करत हो।
1: हम यही ऐतिहासिक मजल लेपे एडमिरल के हम बहुत खुशी रह रहा हम।
0: अच्छा।
1: मूवीज के लेपे एडमिरल बहुत टूरिस्ट लोग बोले ला।
0: अच्छा।
1: और हम लोग तेलुगु में काम कर रही ना।
0: अच्छा।
1: तो बोले हाई एगो एगो लेपे एडमिरल एग्जाम्पलर है।
0: बहुत अच्छा, तो
1: सच्चे के यार झूठे नहीं है।
0: और फुटबॉल भी देखे रहा बहुत खूब
1: के
0: तू फुटबॉल खूबे देखे रहा।
1: हाँ, साली जी 50 बनाने 60 से जस्ती
0: अच्छा
1: से देखा तेरी साहब।
0: हाँ, तब तू सीनियर सिटीजन हुआ तब
1: जाके जीरो रोज देखा तेरी साहब।
0: एगो सीनियर सिटीजन हुआ तब। अच्छा, तो दिला जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने के जवाब द कुछ कौन जवाब देबा तुहर ओर से?
1: हम एगो आदमी रात के बोलते कि है खूब जीवन वक मजा बहुत इंटरेस्टिंग बा। और वो ऑर्गेनाइजेट है कि हम रिमी ऐसे करते हैं हम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: समझला है जैसे जोश बा, जैसे स्पेक्टेकुलर लुक बा, है लेमोन के धरले एगो यूनिटी आना चाहन सा।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फुटबॉल से सभी जगह एकता होता है, एकता होती है।
1: बहुत खुश रहेला एकता।
0: हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ही सही जवाब दिया। ओके, तो आप बोलो हमके कि रोनाल्डो कितना वर्ल्ड कप में गोल डाले बा? बोला
1: 6
0: 6 वर्ल्ड कप में गोल डाले बा। तो हर जवाब एकदम सही है। रिको कलेबा 2006 में
1: आदमी गाते है वो है उकरा खुशी रेला बहुत।
0: हाँ, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026
1: चार गो वर्ल्ड कप से गो मेक्सिकन कॉर्ड बाजाल के ले रहल।
0: हाँ बहुत बढ़िया,
1: तब रिकॉर्ड टूट दिलन से लोग अब मेसी।
0: हाँ
1: रोनाल्डो।
0: हाँ बहुत अच्छा,
1: सब टूट कॉर्ड बाजाल।
0: हाँ तो बहुत धन्यवाद दिला भाई। तोहर खातिर एगो दूसरा प्रश्न बा मैथमेटिक्स पर।
1: मैथमेटिक्स में तनी अच्छी है नहीं काज नहीं अब
0: तुझू एगो चैलेंज है। जब हम तोहरा बोलब 6 × 10 / 10 − 6 6 × 10 / 10 − 6 कितना होला? बोला 6 × 10 / 10 = 6 कितना होला?
1: 6 × 10
0: हाँ डिवीजे पर 10
1: 60
0: हाँ कितना होला? बोला हाँ 60 / 10 तब। हाँ 60 / 10 कितना होला?
1: जीरो।
0: हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बोल रहा।
1: हाँ
0: 6 × 10 = 60 / 10 = 60 6 × 10 = 6 0 बहुत ही बढ़िया दिला भाई, ऐसे ही अब भाग लेते रहिए। ओके धन्यवाद।
1: बहुत जल्दी रखिला बहुत खुशी रह।
0: धन्यवाद भाई दिला, धन्यवाद
1: आपको। पार्ट ऑफ लाइफ
0: बहुत बढ़िया।
1: अच्छा,
0: देख ले। धन्यवाद आपको, बाय बाय।

जी हाँ, आप ही हैं हमारे बंधु, आप ही हैं हमारे सखा। एक अंतिम प्रश्न जरा गौर से सुने। 1986 में 40 साल पहले एक ऐसी चमकती हुई चीज आकाश पर दिखाई दे रही थी जो सभी लोगों को आकर्षित कर रहा था। बिल्कुल, ये जो चीज है सभी को आकर्षित कर रही थी, ये जो चीज़ है 75 to 76 ईयर्स में एक बार अंतरिक्ष में दिखाई देती है। 1986 में सभी के होठों पर यही चीज़ रहती थी। तो ये क्या थी वो, आप उसका नाम हमें बताइए। 4028085, ये कभी दिन में भी दिखाई दे रही थी, तो आप हमें बताइए कि 1986 में 1986 में क्या दिखाई दे रहा था अंतरिक्ष में, क्या दिखाई दे रही थी आकाश पर। 4028085 पर प्लीज़ जवाब दें।

0: हेलो आत्मा जी.
1: हाँ जी हाँ
0: हाँ जी, बताइए क्या जवाब है आपके ओर से.
1: लाकोमेट
0: लाकोमेट हालेज कोमेट, वेरी गुड. हालेज कोमेट बहुत ही सही जवाब आपने दिया है और आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए. आत्मा जी, आपने देखा था ये कोमेट आकाश पर? देखा था आपने. तो चलिए आपके लिए दूसरा प्रश्न, जरा आप सुनिए. 1986 में ये कॉमेट दिखाई दिया था, है ना? तो 1986 में वर्ल्ड कप भी था, 1986 में वर्ल्ड कप भी था, जहां पर अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी माराडोना, उन्होंने एक गोल डाला था हाथ से, हैंड ऑफ गॉड जिसे कहते हैं, है ना? किस टीम के खिलाफ उन्होंने डाला था ये गोल, बताइए हमें. किस टीम के खिलाफ?
1: इंग्लैंड.
0: इंग्लैंड के खिलाफ. बहुत ही बढ़िया आत्मा जी, आपने दोनों सही जवाब दिए हैं. बहुत बहुत बधाई हो आपको. धन्यवाद आपको. बाय
1: थैंक यू सर. थैंक यू.
0: बाय.

जी हाँ, आप ही हैं बंधु, आप ही हैं सखा। 5:53 हो गए हैं और खेल खिलाड़ी प्रोग्राम समाप्त होने जा रहा है। जिन लोगों ने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि आप लोग वर्ल्ड कप के बड़े ही शौकीन हैं और हर मैच देख रहे हैं। आप डाउनलोड कीजिए MBC प्ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि MBC प्ले के ज़रिए आप सब मैचेस देख सकते हैं। और अभी तो कल से शुरुआत है नॉकआउट राउंड की, यानी राउंड ऑफ 32। अभी तो कल समाप्त होगा प्रिलिमिनरी राउंड्स, और इसके उपरांत रात्रि को शुरू होने वाला है नॉकआउट फेज। और आप लोग जरूर MBC प्ले डाउनलोड कीजिए, और जब डाउनलोड हो गया, देखने की बारी आई, तो आप न्यू वर्ल्ड चैनल 1 पर जाइए या न्यू वर्ल्ड चैनल 4 पर, और इत्मीनान से अपने मैचेस का आप मजा लीजिए। अब किसकी जीत होगी अंत में, इंग्लैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील? लेकिन ब्राजील का पाला पड़ा है जापान के खिलाफ, और इस बार मुझे पता है कि जापान नहीं जाने देगा ब्राजील को। पता नहीं अब क्या होगा, ये तो फुटबॉल है, और फुटबॉल जो है बड़ा ही रोचक खेल है। और कभी लोग मानते हैं फुटबॉल को धर्म ब्राजील में, और कोई मानता है फुटबॉल को पूजा। लेकिन

आप फुटबॉल देखने के साथ साथ व्यायाम कीजिए, अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए, ताकि आप हमेशा करें शाइन। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सभा में कल रात बजट बहसें समाप्त हुई। अपने समिंग अप में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने बजट 2026-2027 में लिए गए फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार पिछली सरकार की गलतियों और उससे हुए नुकसान को सुधारने का प्रयास कर रही है। उनके अनुसार भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसले जरूरी है। अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है। इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थायी आरोप खत्म करना और मानवाधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है। सेशल्स गणराज्य सोमवार 29 जून को अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरा होने का जश्न मनाएगा। ये राष्ट्रीय समारोह लगभग 4 दिनों तक चलेगा। इस खास मौके के लिए सेशल्स के स्टेट हाउस ने भारत समेत कई मित्र देशों को आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम इन समारोह में शामिल होने के लिए आज शाम मॉरिशस से रवाना हुए। विदेश में वेनेजुएला में राहत कार्य जारी है, जहां गुरुवार को पेश आए 2 विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 पार कर गई है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा में कल रात बजट बहसें समाप्त हुई। अपने समिंग अप में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने बजट 2026-2027 में लिए गए फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार पिछली सरकार की गलतियों और उससे हुए नुकसान को सुधारने का प्रयास कर रही है। उनके अनुसार भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसले जरूरी है। साथ ही उन्होंने बजट के मुख्य कदमों, उनके लागू होने और आने वाले साल के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की भी समीक्षा की।
1: En ouverture de son summing up, le Dr Navin Ramgoolam est revenu sur la situation économique héritée par son gouvernement. Il a affirmé que ce budget de continuité vise à corriger les déséquilibres laissés par l'ancien gouvernement, d'où, selon lui, des décisions difficiles mais nécessaires pour préserver l'avenir.
2: Growing fiscal pressures, rising debt obligations, broken down engines of growth and galloping inflation. 26.9 billion rupees just on interest. Nearly 27 billion just on interest because of the mess they did. Faced with these challenges, we had no choice. Malheureusement, Madame la Présidente, nous avons subi les affres d'une stratégie de déni chez certains qui ne veulent pas voir la vérité en face et de démagogie chez d'autres. Ils ne veulent pas voir les données objectives, les finances, la situation du fonds de pension et le risque de faillite à court, moyen et long terme. C'est pourquoi nous avons placé ce budget sous le signe du devoir de la vérité.
1: Le docteur Navin Ramgoolam a également répondu aux critiques formulées par l'opposition.
2: L'opposition a choisi de se focalisé sur le thème de la pension pour des buts purement politiques. Le leader de l'opposition reconnaît lui-même. Lui-même, il a reconnu que le budget comprend des mesures positives. Mais vous, you know what they're saying, chasser le naturel, il revient au galop. Il s'est cantonné, comme tout, tant d'autres d'ailleurs, dans, au sein de l'opposition, dans une litanie de propos démagogiques et dépourvus de bon sens et de sérieux. It would seem that he's a great fan of Gabar Singh. He chose to quote what Gabar Singh said in Shirley. Gabar Singh is back with him. Madam Speaker, I don't believe in Gabar Singh. I prefer Lord Krishna. And I quote from the Mahabharat, Kam Kiha, do your duty. Certains ont parlé d'incertitude et d'anxiété des ménages dans ce budget. Mais ils ne se rendent pas compte que la vraie incertitude, la vraie anxiété, c'est la viabilité du système de pension. D'une faillite annoncée du fonds des pensions par leur irresponsabilité. Si rien n'est fait aujourd'hui, on se dirige directement vers la disparition de toute forme de pension. In 10 years' time, in 15 years' time, nobody will get a pension if you don't do what we're doing now. Certains ont parlé de reculade. Alors qu'ils sont eux-mêmes coupables d'avoir acté la démagogie pour entraîner une reculade. Ils ont voulu

0: plus instaurer un climat de doute et de confiance, de nous faire perdre le sens de notre responsabilité financière sans considération aucune pour ce que peut devenir l'avenir du pays. Nous avons fait preuve d'écoute comme dans tous les pays démocratiques. Comme un gouvernement responsable, nous avons un devoir de responsabilité financière. Nous avons l'obligation de protéger ce pays, qu'en fin de compte, protéger le peuple d'une faillite morale et c'est protéger l'avenir.
1: Le chef du gouvernement estime que les mesures du budget répondent à l'intérêt de toutes les composantes de la société, renforcent l'intégrité des institutions et contribueront à reconstruire l'économie. Il prend 3 engagements pour l'année à venir.
0: I am therefore making 3 commitments that will guide our actions in the coming year. First, transparency and accountability. We will publish quarterly performance reports on the budget's key indicators. Not easy for us, but we will do it. And open major programs of evaluations to independent review. Second, participation. We will expand consultations with stakeholders to fine-tune implementation and to ensure that programs reflect local realities. Third, we will adhere to the disciplined fiscal path while preserving its flexibility to protect the vulnerable, but to ensure that public sector investments are with high economic returns.
1: Le Premier ministre de conclure que ce budget est plus qu'un ensemble de mesures financières.
0: Ce budget, Madame la Présidente, ce n'est pas un ensemble de mesures financières, c'est un engagement vers le futur, vers l'avenir. Un engagement vers notre jeunesse, envers les travailleurs, envers les familles mauriciennes et surtout envers les générations qui nous succéderont. Nous leur devons des finances publiques assainies, une économie plus compétitive, un pays plus fort, plus juste et plus prospère.
2: Attorney General Dafter Kister par kai vidheyakon par kaam kiya ja raha hai inme provisional charge yani asthayi aarop khatm karna aur manavadhikar aayog mein sudhar karna shamil hai rashtriya sabha mein attorney general ke ne vaivahik balatkar aur mahilaon ki hatya se jure do mahatvapurna vidheyakon ke paksh mein bhi baat ki. अफ्रीका का सबसे छोटा देश अपनी आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है. सेशल्स गणराज्य सोमवार 29 जून को अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरा होने का जश्न मनाएगा. ये राष्ट्रीय समारोह लगभग 4 दिनों तक चलेगा और इस खास मौके के लिए सेशल्स के स्टेट हाउस ने भारत समेत कई मित्र देशों को आमंत्रित किया है. भारतीय प्रधानमंत्री इन समारोहों के मुख्य अतिथि है और 2 दिवसीय औपचारिक यात्रा पर वे आज सेशल्स पहुंचे. मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी इन समारोह में शामिल होंगे. वे आज मॉरिशस से रवाना हुए हैं. साथ ही अफ्रीकी संघ, चीन और रशिया के प्रतिनिधि भी राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेंगे. इस खास मौके के लिए विक्टोरिया की सड़कों पर जश्न का माहौल बना हुआ है और लोग 29 जून 1976 की यादें ताज़ा कर रही है.
3: सेशल्स द्वीप समूह में 1,00,000 से कुछ ज्यादा निवासियों के साथ माहे टापू विविध आबादी वाली जगह, ज्यादा से ज्यादा विदेशी कामगार, यही पर माहे टापू में प्रमुख सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। शुक्रवार के दिन केंद्रीय शहर में अभी मुख्य सड़कों पर गणराज्य का झंडा गर्व के साथ लहराता दिखाई दिया. अभी भी यहाँ विगत की खुशबू. ऐसे कई स्मारक हैं, स्थल हैं जहां पर अंग्रेजों के निशान हैं. बुजुर्ग लोग जब इन्हें देखते हैं तो आज भी भावुक हो जाते हैं. 29 जून 1976 को आज़ादी मिली थी. जॉन क्रिस्टोफ बॉबिये ज़्यादातर समय एवेन्यू डी इंडिपेंडेंस में एक बेंच पर बिताते हैं. मेट्रो सर्विसेज के ये अवकाश प्राप्त व्यक्ति स्वतंत्रता के दिन स्टेडियम में थे.
4: Et tu peux descendre Union Jack, tu peux monter par Union Cécile.
5: Ça, 50 ans là, comment on vit ça ou comment?
4: Le monde de ça ici, même moi, il y a un tas de développement pendant 50 ans. Il y a un tas de développement, la ville, un tas de bonnes jolies buildings. Après, il y a un programme social, la case, il y a presque tout 80% parmi ces éloignés dans notre pauvre case.
3: उनकी तरह अन्य लोगों को भी वो अहम घड़ी याद है, इतिहास अंकित, जिसे बयां करना चाहिए.
6: qui m'ont appelé, les parents soutiennent un carnaval en ville.

0: quantité de développement. Mais seulement, bon, souhaité qu'il y avait doublé quand nous arrivons là.
1: 50 वर्षों की प्रगति जिसे विगत की पीढ़ी और आज की पीढ़ी अधिक आगे बढ़ते देखना चाहती है।
2: I would aspire for my country to have more development, a lot more activities for the youth. As we know that Seychelles has a problem with drugs. So I think if there was more activities for the youth, which I think slowly we can do that so that the children will stay away from that negativity.
3: I want my country to be like more populated, bigger, more advanced, like with technology and more clean, like less pollution. Seychelles had to fight a lot to gain independence, so when we celebrate it makes everybody feel proud.
4: I'm very proud. My country celebrating 50 years of independence.
1: भव्य रात्रि से कुछ घंटे पूर्व ये स्वर्ण जयंती सेशल्स वासियों को याद दिलाती है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान नहीं था, एकजुटता से ही प्राप्त एक जैसी ही किस्मत।
5: सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य मेहमान है। वे आज दो दिवसीय औपचारिक दौरे पर वहां पहुंचे। उनके स्वागत के लिए सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक यामिनी हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इस दौरे के अंतर्गत भारत और सेशल्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, खासकर समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में। जैसे कि हम बता रहे थे, अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है। इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थायी आरोप खत्म करना और मानव अधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है। राष्ट्रसभा में अटॉर्नी जनरल ने वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों के पक्ष में बात की। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
6: मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ भविष्य की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए कानून बनाए जाएंगे। सरकार अस्थायी आरोपों यानी प्रोविजनल चार्जेस से जुड़े मामलों पर एक नया आपराधिक न्याय विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले मौजूदा व्यवस्था के तहत लागू प्रोविजनल चार्ज समाप्त कर उनकी जगह नई प्रणाली लाई जाएगी, लेकिन इसमें अदालतों की निगरानी की व्यवस्था बरकरार रहेगी। दूसरा, गंभीर और जटिल आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए चरणबद्ध न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार किया जाएगा। और तीसरा, छोटे आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानूनी ढांचा लागू किया जाएगा। एक अन्य प्रमुख सुधार मानवाधिकार आयोग से जुड़ा है। इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा ताकि ये मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। इसमें महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करने से जुड़े प्रावधान भी शामिल होंगे। क्रिमिनल कोर्ट में संशोधन सदन में पेश किए जाएंगे ताकि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान किया जा सके, जिनमें वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या फेमिनिसाइड शामिल है। इन सुधारों के माध्यम से कानून ये स्पष्ट करेगा कि वैवाहिक संबंध किसी भी प्रकार की यौन हिंसा की अनुमति नहीं देता और किसी महिला की उसके लिंग के कारण हत्या को उसी रूप में पहचाना, नामित और दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्ण वेतन सहित मैटरनिटी लीव को 16 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया जाएगा। मॉरिशस इस कदम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से पीछे नहीं हट रहा, बल्कि उन देशों की अग्रिम पंक्ति में शामिल हो रहा है जो इन मानकों को पूरा करते हैं। ये आपत्ति उठाई गई है कि ऐसी सुरक्षा उपायों से नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने में हिचकिचाएंगे, लेकिन इसका स्पष्ट उत्तर ये है कि केवल इस संभावना के आधार पर किसी महिला को नौकरी से वंचित करना कि वह कभी मां बन सकती है पहले से ही मॉरिशस में अवैध है। अटॉर्नी जनरल ने मासिक धर्म चक्र से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर भी स्पष्टता प्रदान की और मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के संदर्भ में यही सिद्धांत लागू होता है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो महिला वास्तविक चिकित्सकीय कारणों से सक्षम नहीं है उसे वेतन सहित अवकाश मिलना चाहिए। ये उसे कमतर कर्मचारी नहीं बनाता बल्कि उसे कार्यस्थल पर बनाए रखने और समान अवसर देने का माध्यम है। ये व्यवस्था निश्चित रूप से उचित मेडिकल प्रमाण पत्र पर आधारित होगी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। सुधारों की सूची लंबी है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन और नेशनल क्राइम्स एजेंसी की स्थापना, उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून, सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से वाहनों की जब्ती संबंधी प्रावधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने वाला नया

0: कानून भी एजेंडा में शामिल हैं।
1: कुछ समय तक बंद रहने के बाद 22 मार्च को विश्व वीमेन एम्पावरमेंट सेंटर फिर से खोला गया। आज से ये केंद्र सुचारू रूप से कार्यरत हुआ है। वहाँ एक प्रदर्शनी के जरिए प्रशिक्षित की गई महिलाओं का कार्य दिखाया गया और नए उपकरण भी बिठाए गए। देश के बुजुर्ग जीवन भर समाज के अहम सदस्य बने रहते हैं। रिटायर्ड होने के बाद ज़्यादातर बुजुर्ग ऐसे केंद्रों और संगठनों में शामिल होते हैं जहां मेल मिलाप, समुदाय की भावना और अलग अलग गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। सैंपियर का ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन इसी प्रकार का एक केंद्र है जो इस साल अपनी गोल्डन जुबिली यानी स्थापना के 50 साल मना रहा है। ज़्यादा जानकारी रजनी बेकर के साथ।
2: इन बुजुर्ग लोगों के लिए सक्रिय जीवन बदल गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई वर्षों तक काम करते रहे, अपने परिवार को संभालते रहे। ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन में 1300 सदस्य हैं। 1974 में ये कायम हुआ। इसकी सीट सैपिया में है। वे सप्ताह के दिन रोज यहाँ मिलते हैं और योगा करते हैं, कुछ पेतांग खेलते हैं, क्विज भी करते हैं और धर्मों एवं संस्कृतियों पर भी बात की जाती है।
3: Je suis partie de la Commission nationale du sport féminin. Je me donne un cours d'exercice. Faire d'exercice pour nous aînés, c'est un plus, c'est une chose qui est bien motivante et nous trouve autres avec sourire.
4: Je me prends pas devant une compétition qui est là ici, ben, l'activité qu'il fait, il détend tout en même temps. On passe un moment avec mes camarades, tout ça.
5: Nous avons envie qu'il commence à 3e âge, après qu'il tant d'années de passer dans notre enfance, dans notre jeunesse, etc. Il faudrait que nous reste bien. Nous avons plusieurs activités, chanter, danse, yoga, Scrabble.
2: राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने बुजुर्ग लोगों के समुदाय में व्याप्त एकजुटता की सराहना की।
6: C'est eux qui préservent bonne valeur et transmettent sa bonne valeur là à la nouvelle génération. Et moi pensais que nous besoin rendre hommage à tout moment.
2: 50वीं वर्षगांठ के मौके पर वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों को सम्मानित किया गया। अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।
1: ड्रग्स का फैलाव रोकना, परिवारों को बेहतर मार्गदर्शन देना और प्रभावित लोगों की मदद करना, यही मकसद है रोकथाम, इलाज और पुनर्वास सेवाओं के लिए आयोजित प्रथम नेशनल विलाज प्रोग्राम का, जो आज रोजेल प्लाजा में लगा। सरकारी संस्थाएं, एनजीओ और एम्बुलेंस आदि के विशेषज्ञ वहां उपलब्ध सहायता सेवाओं की जानकारी देने के लिए एकत्र हुए थे। और 1986 में स्थापित आगोश के रिहाब सेंटर ने मुख्य रूप से नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोकने, लत से जूझ रहे लोगों की मदद और उन्हें समाज की मुख्य धारा से में वापस लाने के वास्ते संघर्ष किया है। ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सेंटर ने लोगों की बातें सुनने और उन्हें सहारा देने और उनके जीवन को फिर से संवारने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि किसी भी लत के पीछे न सिर्फ एक परेशान व्यक्ति बल्कि अक्सर एक ऐसा परिवार भी होता है जो खुद को बेबस महसूस करता है। विदेश में वेनेजुएला में राहत कार्य जारी है, जहां गुरुवार को पेश आए दो विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 पार कर गई है। 3,300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जाते हैं, हज़ारों लोग अभी भी लापता है। और सेनेगल की उम्मीदें अभी भी बनी हुई है। कल रात इराक पर शानदार जीत के बाद लायंस ऑफ तिरंगा 2026 वर्ल्ड कप की दौड़ में बने हुए हैं और ये सब 5-0 की निर्णायक जीत की वजह से हुआ है। इस जीत ने तीसरे स्थान पर रहने वाली सबसे अच्छी टीमों में से एक के तौर पर राउंड ऑफ 32 में पहुंचने के उनके सपने को जिंदा रखा है। फुटबॉल विश्व कप ग्रुप स्टेज के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, जहां अर्जेंटीना आसानी से क्वालिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है, वहीं पुर्तगाल और कोलंबिया टॉप स्पॉट के लिए मुकाबला करने को तैयार है। इंग्लैंड अपना काम पूरा करने की कोशिश में है और इस दौरान लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और हैरी केन मुख्य भूमिका में होंगे।

देश विदेश की खबरों के बारे या मौसम का हाल सुनते हैं। दक्षिण पूर्व में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर कुछ जगहों में ज्यादा बारिश हो सकती है। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान चंद्रपातों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगुनों में। वैसे कल सूर्योदय सुबह 7:45 बजे के लिए निर्धारित है।

0: तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक और नीतू शाह का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मोंटेश्योलेन सुरीनाम में, मोंटेश्योलेन सुरीनाम में 70 साल की 70 years old की श्रीमती जसवंती समन, श्रीमती जसवंती समन पैदाइशी नाम जगन्नाथ, पैदाइशी नाम जगन्नाथ और जो प्रेमिला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके पति श्री कुमार समन के घर मोंटेश्योलेन सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 12:30 PM। गांधी रोड एन एस फ्लोहॉमी, गांधी रोड एन एस फ्लोहॉमी 65 साल की 65 years old की श्रीमती इंदिरा बंगारीगाडू, श्रीमती इंदिरा बंगारीगाडू पैदाइशी नाम रोजबेरिया नायको, पैदाइशी नाम रोजबेरिया नायको और जो रेनू का नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनके घर गांधी रोड एन एस फ्लोरों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 2:30 PM। रॉय रोड कॉन रिवियर सुडेस्मी 67 साल के 67 years old के श्री विद्यानंद रामेसर, श्री विद्यानंद रामेसर जो मनन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के बारह बजे उनके बेटे श्री मानव रामेसर के घर रॉय रोड कॉन रिवियर सुडेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 12:00 PM। मोंसलमान ओबन बांबूमी 76 साल के 76 years old के श्री हेमराज मंगौ, श्री हेमराज मंगौ जो कृष्ण नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे उनके घर मोंसलमान ओबन बांबू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहतान साहब या बांबू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11:00 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस रविवार 28 जून को फ्लोरिडा तेगूज आर्य समाज में सुबह के 7:30 बजे, त्रियोले आर्य समाज में सुबह के 9 बजे और फोंजिसाक के आर्य समाज में दिन के 2 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे। रविवार 28 जून को सुबह के 10 बजे कालीमाई लेन लागोजा के लागोजा नव जीवन शिवालय नव जीवन महिला समाज के मिले जुले सहयोग से काली पूजा का आयोजन कर रहा है। लयबुआ के नर्मदेश्वर काली माता मंदिर द्वारा रविवार 28 जून को सुबह 6:30 बजे

0: काली पूजा का आयोजन किया है।
1: रविवार 28 जून को दिन के 11:30 बजे श्री कबीर काउंसिल शॉल्डगोल एवेन्यू लकावे नंबर 2 वाकवा में सदगुरु कबीर प्राकट्य समारोह मनाया जा रहा है। जनता आमंत्रित है। रविवार 12 जुलाई को एंजन पेट्रोल स्टेशन नालवीस काठरबोन में ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है, यानी कि रक्तदान का आयोजन किया गया है सुबह के 8 बजे से दिन के 1 बजे तक। जनता आमंत्रित है।
2: This is Radio Marxist.

0: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, रेडियो मॉरिशस।
1: 毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

ஊத்திட்டு வரக்கூடாது.

0: जाना।
1: अग ऐक ना जरा सस बसतेस का, अग ऐक ना जरा सस हसतेस का।
0: चल जा चल।
2: ओके मी कल्टी।

कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम। श्रोताओं, एक सुविचार इस प्रकार है कि काम जो वासना है, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन द्वार हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कल्याण के लिए इन तीनों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तो आइए इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

कैर विद्धम वनम परशुना हतम वाचा दुरुक्तम वी भत्सम न सनरोहति वाक्षटम। कहने का तात्पर्य है कि बाणों से बिंधा हुआ शरीर और कुल्हाड़ी से काटा गया वन भी समय के साथ फिर से ठीक हो जाता है, किंतु कटु और विभत्स वचनों से हृदय में हुआ घाव कभी नहीं भरता। इसलिए हमेशा सोच समझ कर मीठी वाणी बोलनी चाहिए।

प्रियजन, सच्चे मित्रों तथा मूर्ख की पहचान पर वार्तालाप करते हुए विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शत्रु को अपना मित्र बनाता है, अपने सच्चे मित्रों से द्वेष, ईर्ष्या अथवा शत्रुता रखता है और हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता है, उसे ही वास्तव में मूर्छेतस यानी मूर्ख कहा जाता है।

भक्तों, कहा गया है कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम् भयम् रति ही समृद्धि रसमृद्ध वा सवै पंडित उच्यते। अर्थात जिस व्यक्ति के कार्य में सर्दी गर्मी दर्द सुख सुविधा संपत्ति या दरिद्रता बाधा नहीं बनते हैं, अर्थात जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन अविचलित भाव से करता है, उसी को वास्तव में ज्ञानी अथवा पंडित कहा जाता है।

श्रोताओं, पूरी दुनिया आसानी से क्षमा, दया, प्यार, अच्छे शब्दों, ईमानदारी, विनम्रता और सेवा से जीती जा सकती है। इसलिए हमेशा हमें इन गुणों का पालन करना चाहिए। तो श्रोताओं, इन्हीं विचारों के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

आइए एक हदीस समात फरमाइए। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए। दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को देखा कि वो आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सबब मालूम फरमाया तो उन्होंने बताया कि ये एक अच्छा दिन है। इसी दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फिरौन से निजात दिलाई थी, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन रोज़ा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के शरीक मुसद्दत होने के हम तुम में से ज़्यादा मुस्तहिक हैं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा और सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा को भी इसका हुक्म दिया।

मौज़े सामेईन, हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौमे आशूरा के रोज़े का सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। बहवाला सही मुस्लिम शरीफ। ए पाक परवरदिगार, हमने दो अहदीस समात फरमाई, हमें उन पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिसेस अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का
3: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का रात के 9:00 बाते और ही रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के जितना कोई श्रोता लोगन अभी हमनी के संगे जुड़ गल हवान। आप सब कोई के स्वागत बा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में जे चलेला रोज रात

के 9 बजे से लेके 11 बजे ले माइक पर आप सबको एक साथ देवा थवान रत्ना और सब प्रेम नमस्कार स्वीकार कर लिया जा और आशा करब जा कि आज शाम दी के रात सब कोई मजे में हवा और ढेर कोई आज हरदी में गल हवन, ढेर कोई अभी मोलतो तरे बैठ के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने के शुरुआत कर दिले हवन। तो चला गर्मा गर्म गीत भोजपुरी संगीत और आप सब कोई हमनी के साथ देवेश अकबर 4028085 पर जहां तू अपन पसंदीदा गीत के फरमाइश करे सकबा और साथ ही साथ में सास विदा करे खोजा था वो तो 5251705 सेकंड दे सकते हैं श्वासन जी से हो सक। तो चला आज के बढ़िया कार्यक्रम की शुरुआत करब जाए एगो बढ़िया गीत संगे सत्यजीत रघु के आवाज में रखल आज के है पहला गीत और है फूलमतिया रानी और जे तोहर नाम रानी है तो है गीत तोहर खातिर खास करके

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम संगे चला तनी गरम गरम गीत और गरम गरम चुटकुला और जैसे जानत हवा अभी तो सब कोई सोशल मीडिया पे लगल हवा और का जानी कितना फ्रेंडशिप करत हवा और हमार चचा भी पारे हुआ आहो हमार चचा गजोधर का बोला चलो चचा गजोधर के बतवा आगे बढ़ाए आगे हम बोल देवा भाई हाई जो अगला गीत हा हाई लीलो माथुर सुकन के बहुत मजेदार गीत शिव के महिमा और हई गीत के पसंद कर ले हवन नवीन लक्ष्मण जी जे अभी रोज बेल से हमनी के संगीत जुड़ गल हवन चित्रा जी संगे हवन और परिवार में अब तो शादी बा सब कोई शादी के तैयारी में लग गल हवन तो चला सब कोई शादी के हाई मूड में रही और एकर संगे संगे जितना कोई तोहर परिवार हवन निवेदिता और सच्चिदानंद जी मेबक से हमेशा साथ देवलन ललिता और धनराज चरण जी हमनी के संगे जुड़ल रहलन स्वीटी संगे उनकर प्यारी बेटी राज और अमृता ओबिलक गाँव बुआ माफ करेगा न्यू ग्रोव बगल से और रमेश और प्रीति जी हवन गाँव बुआ बगल से तो चला प्यार से साथ देते रहिए शिव के महिमा आएगी लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल और हम जैसे बोलत रहली चचा जी अभी तक जैसे देखत ऐसे फेसबुक पे पूरा दिन चैटिंग करेलन सा और चाची के हमर चाची हमर प्यारी चाची बिचारी के बोलेलन लेतो नहीं बाप बतियाई के बोलत तो हम बोली चचा का तू पूरा दिन चैटिंग करेला हाई सोशल मीडिया पे बोले हाँ जानत हवा हमार सोशल मीडिया पे 500 संगतिया हो गल हवन और जेकर में 450 तो महिला लोग से हमार दोस्ती हवन मुझे शर्म कर चचा हाई उम्र में तू महिला लोग से दोस्ती करेला चाची संगे तनी बतिया ल बोले जाने ल हाई जमाना जोन है बदल गल बा हाई जोन सोशल मीडिया पे हमार गर्लफ्रेंड है बहुत गर्लफ्रेंड बन गल बा हाई जोन गर्लफ्रेंड है आई आयुर्वेदिक दवाई नियर है हम बोले का बोलत हो चचा बोले हाँ जाने ल जैसे में हाई में जैसे बहुत फायदा भी नहीं होला बहुत नुकसान भी नहीं होला हम बोले वो कैसे बोले देखा गर्लफ्रेंड रही तोहर बुढ़िया जो हो तरह पाछे पड़ जाए तरह देखी तरह ताकी तरह रंगे हाथों पकड़ ले पर हाई जन सोशल मीडिया के गर्लफ्रेंड रहेलन वो जस्ती नुकसान नहीं करेला काहे के उकर संगे तो जस्ती खाली चैटिंग करे के बस मन खुश रहेला हाई ये हमनी के बहुत अच्छा लगेला हाई देखा चचा हाई उम्र में का लक्षण तनी शिव के ध्यान धर तनी पूजा कर हाई गीतवा सुना

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम संगे सब कोई हमनी के बहुते प्यार से साथ देवत हवन। त चला आज के कार्यक्रम के और ही बढ़िया बढ़िया बनावे खातिर जितना प्यार से हमनी के संगे सब कोई जुड़ गल हवन, तनी बोलेल जाला ना कि तनी स्प्रे करिया काहे के ढेर कोई हमनी के लालिन पर ढेर दिन के बाद बतियात हवन। त हम भी बहुत प्यार से सब कोई के संगे बतियात हैं, तनी पाशांस रखिए और बहुत प्यार से चला आगे बढ़ब सा। और अगला गीत जोन है संस्कृति हमारी है गीत उमा जी खातिन चलावब जा, और उमा जी हमनी के ऐजा पर साथ देवत हवन बहुत प्यार से जुड़ गल हवन फोन जूस साक बगल से, और उनकर सब परिवार खातिन और खास कर काल त आर्य समाज बगल से आर्य समाज फोन जूस साक के जितना महिला लोग हवन हवन करियन जा काहे के सत्यार्थ प्रकाश मास चलावता। और चला हये अवसर पर सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना देवब जा। और है अगला गीत अभयदानंद बीजन के आवाज में रखल है गीत करब जा तोहर खातिर। और का बोलब चचा के किस्सा और कहानी, हमनी के चचा बोले जिंदगी में हमेशा दूगो बात याद रखिए। हम बोलनी हाँ चचा कौन बात, बोले देखा जे तोरा कोनो अच्छा लगी तो अच्छा ऊ नहीं है अच्छा तू हवा। अच्छा देखा उदाहरण देवा था हमनी के जे कोई अच्छा लगी तो अच्छा ओ नहीं हा अच्छा हम है। हम बोली हाँ चाचा है तो बहुत बड़ा बात बोल देलक चाचा। आउरी जे कौनो बुरा लगी, हाँ चाचा तो कौन चीज करे के चाहिला बुरा लगी ता? बोला तो बुरा लगी तो ऊ ही बुरा होई काहे के तू तो अच्छा हवा, समझ गईला ना।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सबको ढेर खुशी हवन अपन अपन पसंदीदा गीत सुने खातिर तो बस चला चलते रहिए और ही हमनी के साथ देते रहिए हिजा पर चाची शांता सुकागी हमनी के संगे जुड़ गल हवन से जमील फोरेस्ट साइड से। आज उनकर बहुत तबियत ठीक नहीं बा पर फिर भी हमनी के प्रोग्राम में उस साथ देवत हवन और चला उनकर खातिन सुनीता ननकू के आवाज़ में रखल है अगला गीत चलाओ अब जा और उनकर प्यार ही पतो किरण संगे हवन चार गो बेटा सुदेश अशोक काविन सुजीत और नाती भावेश और नातिन संजना खातिर और मजेदार गीत संगे चाची बस ऐसे हंसते रहिए प्यार से और तोहर दर्द बस यूँ छू मंतर हो जाए। अरे जानत हवा है जोन पप्पू भैया है न शादी करता न शादी करे खोजत हवन और बस फालतू के सवाल करते रहेलन चचा के बोले हाँ जानत हवा चचा सब कोई बोले परफेक्ट पति पत्नी एकर का मतबल है चचा हम शादी करे के अगाड़ी है जितना एफमासियो

हाँ सब जमा करब तब जाके शादी करब। अच्छा अच्छा बोले बुढ़बक लैका का बोलत हव जाने ल। परफेक्ट जोड़ी केकरा बोलल जाला? परफेक्ट जोड़ी उ ही हा जेमे पति अपन पत्नी के कबो दुख कबो परेशान नहीं देखे सकी। बोले अच्छा चाचा तो हम हये फाची के करब, हमर बुढ़िया के हम कबो दुख नहीं देवब, ओकर जितना भी दुख परेशानी रही तो हम पूरा करब। बोले हाँ तू सब कोई के दुख भगैया, और जन तोहर पत्नी रही उ पति के कबो सुख कबो सुखी नहीं देखे सकी, हये हाँ परफेक्ट जोड़ी। हाय चाचा काहे ऐसन बोलत हव, चाची कबो तोरा सुखी नहीं देखे सकेला का?

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का और हिंदी फिल्म के गीत रही या भोजपुरी स्थानीय कलाकार की गीत। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत लाजवाब कार्यक्रम और मजेदार चुटकुला के संगे संगे सब कोई लोटपोट होके हंसत हवन। हइए तो जीवन हइए तो खुशहाली और बस हंसते रहत जिंदगी में और का चाहिए। और जब तू हंसब तभी तो तहार घर बसी और खुशहाली के साथ और रौनक बढ़िया और चला मजेदार कार्यक्रम संगे है जहाँ पर वाकवा से हमनी के संगे जुड़ गल हवन फूलवंती जी, साथ देवत हवन बेटा उषण, बेटी हवन भावना और उनकर पति हवन देवानंद, और है जहाँ पर मोहताबा बगल से आईजा पर तायक बगल से हमनी के संगे जुड़ गल हवन बादवाग विदेशी जी, और उनकर खास संगतिया हवन अनुषा जे मोताबा से हमनी के साथ है देवेलन। तो चला उनकर खातिर अगला गीत चलाओ अब जा। और है जो अगला गीत है मैंने प्यार किया काहे किया नहीं समझ में आवता सलमा काहे बोलब अभी फ्लिक ऑफ लाक बगल से फ्लिक ऑफ लाक बगल से अनीता जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और पूरा उनका जितना परिवार हवन जितना उनका संगतिया हवन उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा। शारदा सिन्हा के आवाज में रखल है बहुत मजेदार गीत। तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। और चुटकुला अभी थोड़ा घड़ी में गीत के बाद

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का 9:37 हो गल बा आउरी ठंडा का बोलता। कहूँ कहूँ पनिया भी बरसता, कहूँ कहूँ बहुत ठंडा मारता, कहूँ कहूँ बहुत हवा मारता। तो चला इसने मौसम बदला था आउरी मौसम मौसम जब बदलेला तब बोलल जाला ना कि कभी सर्दी खांसी बुखार चलावेला। तो ऐसे में बस अपन सेहत के पूरा पूरा ख्याल रखिया जा और ही चला हाई जा पर मजेदार गीत के संगे संगे बहुते बढ़िया कार्यक्रम। और है जो नगला गीत है लागी नहीं छूटे राम है हमर चाची ललिता के बहुते फेवरेट गीत है और संगे संगे उनका जितना परिवार हवन सब कुशल परिवार खातिन और आज अपन भैया संगे हवन भैया सुरेश भौजी हवन शोभा और ही उनकर भगीना हवन प्रवेश और संगे हवन उनकर दीदी सुदेवी संगे हवन ज्ञानी साथ हवन छोटी दीदी पुलौजे से हरीश भैया भैया आत्माराम दादी प्रभावती और संगे संगे सब राम रतन परिवार खातिन और माला राम जावन खातिन। तो चला सुखलाल मौसी के नहीं भुला भो सुखलाल मौसी खातिन भी है ये गीत करब जा और जानत हवा लागी नहीं छूटे राम है गीत। गायत्री जी भी बहुत खुशी हवन सुने के नुएल फौस से वो हमेशा साथ देवेलन। तो चला उनकर खातिन भी चलावब जा हइए गीत उनकर बेटा अजय मामी कल्याणी मोहन उनकर भौजी शकुंतला मोतायलोंग से और उनकर खास संगतिया गीता बाई जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन नुएल फौस बगल से। आज उनकर प्यारी बेटी प्यारी नातिन दिया बाई के जन्मदिन है। चला जन्मदिन के गीत अभी थोड़ा घड़ी में चलावब जा पर से ओकर से अगाड़ी लागी नाही छूटे राम के हई गीत चलावब जा चाची ललिता कुशल खातिन। हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और चचा गजोधर के का बोलब अरे जाने ल अभी तो जैसे पोता सब कोई के हाथ में ऐसे चिपक गल बा कि जैसे मान ल कोनो हाथ पे ऐसे फेविकोल लगा देले होन पातेक्स लगा देले होन। तो हमनी के चचा भी ऐसे ने है कौन दिन बाजार में भेटा गल उनकर संगतिया दमोदर तो दमोदर के निमेगोवा ले लेलक। अब दूसर दिन लगल दमोदर के टेलीफोने करे तो दमोदरवा तो टेलीफोन के निमेगोवा देख के नहीं उठेलक काहे के कौन दिन प्रोग्राम देख ले रहा बोले कौनो ऐसे अनजान नंबर तोरा टेलीफोने करी तो नहीं उठाए के तो उ तो नहीं जानलक चचा गजोधर हवन तो नहीं उठेलक टेलीफोनवा तो जाने ल चचा भी कौन ची कलन ओकरा मेसाज विदा करलन व्हाट्सएप पे बोले हाँ हौ संध्या तोहर निमेगोवा खोजत रहलन। जैसे वो मेसाज पहड़ लेलक तो आप तो लगल चचा गजोधर के टेलीफोन पे टेलीफोन करे चचा गजोधर बोले हाँ 30 हमनी के टेलीफोने कर देले हवन हम भी टेलीफोन वा नहीं उठैले हई का चचा का मस्करी करत हवन

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आउरी चला है जा पर दिया बाई हमनी के संगे हवन दिया बाई के आज जन्मदिन बा और बहुत बहुत प्यार से उनका प्यार या तो दादी जोन हवन गीता बाई उनका बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद देवत हवन उनकर पापा हवन शिवाजी मामा हवन श्वेता बाई आतो पुपू हवन सुधा बाई और संगे हवन उनकर बहिन बिजवी बाई और छोटा भैया मल्हार और बहुत बहुत प्यार आजी गीता बाई उनकरा देवत हवन बहुत प्यार से आशीर्वाद देवत हवन और चला दिया बाई तोहरा हमर ओर से भी बहुत बहुत प्यार और बस हमेशा जीवन में आगे बढ़िए पढ़ते रहिए मामा पापा के नाम रोशन करिए और हमर ओर से तोहर खातिर हाई बढ़िया संगीत तोहरा बोलब जा हैप्पी बर्थडे।

0: भोजपुरी तड़का
1: उमेश दाऊ के आवाज में रखल जिले जिले और चला मजेदार कार्यक्रम संगे ढेर कोई अभी गर्मा गर्म दूध पिया थवान और वालचीन दाल के हॉर्लिक्स दाल के गर्मा गर्म सुकोला के दूध बहुत अच्छा लगेला ठंडा के मौसम में। तो चला बढ़िया गीत संगे फुलवंती जी तोर खातिन जो गीत तुम मंगले रलन गांधी जी के तीन बंदर है गीत चलावब जा तोहर खातिन और का बोलब जा चाचा चाची के किस्सा जानत हवा हमार प्यारी चाची चमेली हमनी के बोले कौन दिन कपार पे हाथ रख के हमनी के बोले हाँ तू सुन ले हवा हमर गांव में कौन किस्सा हो गल। हम बोली नहीं चाची नहीं सुन ले हाँ तो बोले हाँ हम तो हये सोची ला कि कैसे है जोन शादी शुदा महिला लोग हवन बाहर कैसे ओकर चक्कर चल जाला। हम तो हमर घर के काम में से ही हमनी के फुर्सत नहीं मिलेला और हमर जोन बुढ़वा है के तो हमर बहुते कपार में दर्द कर देले हवन। हम कहाँ जाब खोजे दूसर आदमी हमनी के तो बुझाता हाउ जन फिल्म रहल ना जुदाई फिल्म याद बा ना हाउ में श्रीदेवी कैसे अपन बुढ़वा के बेच देले रहलन। हमर तो मन करता हमनियों के हम अपन बूढ़ा के जाके बेच के आव। हम बोली का हो चाची का बोला था वहाँ जोन फिल्म हो फिल्म में हाँ जोन सच्चे के नहीं होला जीवन में। बोला नहीं हमनी के तो मन करता बेचे के तब पर हमनी के एक गो बात बहुत मन में आवेला। हम बोली कौन बात। बोले के कीनी है बुढ़वा के देखा था कैसे बा कोई कीनी

0: MBC रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
2: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
3: भोजपुरी दर का कार्यक्रम चलेगो और घंटा रह गल बा और अभी 10:01 हो गल बा। 11 बजे ले भोजपुरी दर का कार्यक्रम रत्ना संगे और बस ऐसे ने साथ देते रहिया जा और मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर जितना कोई श्रोता लोगन जुड़ गल हवन बस तनी पास रखिया काहे के हई जन कार्यक्रम है तो हर गीत से सजावल गल बाते और ही चला है जा पर आज भाई अबू हमनी के संगे जुड़ गल हवन संगे हवन उनकर बेगमा फेज असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी उनकर खास दोस्त हवन आपी और पत्नी हवन संगे और उनकर एगो भतीजी रकीबा। चला रकीबा तोहर खातिर न दुआ करत हवन मामू अबू तू जल्दी अच्छा हो जाइब स्वस्थ रहब और तोहरा शिफा मिली ऐसे ने भाई अबू के मिसाज है तोहर खातिन। और अगला गीत विक्रम कोलाचन के आवाज में रखल धोती पोथी।

पगड़ी आई गीत तोहर खातिन चलाओ अब जा। और इस चुटकुला के साथ हंसते रह, काहे के हंसी जोन है वैसन एगो कलिते के दवाई है जे तोहरा खुशियाली भी देवेला, तोहरा अच्छा बुझाला। और ई चचा चाची के किस्सा का बोलब, चाची कौन दिन चचा के बोले हाँ सुन ना, हमर में से हमनी के जितना आदत है ओकर आदत हमर जितना आदत बा ऊ में से तोरा सबसे अच्छा आदत कौन चाल कौन कौन लगेला। तो चचा बोले हाँ तोहर जोन खिसियाई के आदत है हमनी के बहुत अच्छा लगेला। बोले ऊ काहे, बोले जब तू खिसिया जाला ना तो हमनी के 2-3 घंटा ले बहुत शांति मिलेला, हमर मन बहुत ठंडा हो जाला।

0: भोजपुरी
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे बढ़ावत हई हैजा पर सुदेवी जी हमनी के संगे वकवा से जुड़ गल हवन, बहुत ही खुशी हवन। और त्रियोले के दीदी ललिता कुशल खातिन, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना और मलेगा के सब राम रतन परिवार खातिन अगला गीत के उमांग करत हवन। तो चला जरूर चलाओ। अब जा क्रेशन ओकस के आवाज में रखल हई अगला गीत सुनीता जी के पसंद पर चलावत हई। गाँव गोब से वो हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनकर बहिन हवन विमला जे कुंगुमा से हमेशा हमनी के सुनेलन। और घोंघोप से अमृता जी और गुडलैंड से वीना जी। और आज है जो गीत पसंद करले हवन अमृता जी बोले हमनी के खाते हमनी खातिर चली तनी चला द राधा के शोभेला। जरूर शोभा बढ़ावब जा है गीत संगे। और शोभा तो बढ़ते रहेलन चाचा और पप्पू के किस्सा और जाने ल पप्पू चाचा से कौन दिन पूछे चाचा हमनी के तनी बतावा था सबसे जस्ती खुशी इंसान के हो जे दुनिया में सबसे खुशी इंसान रहेलन। चाचा बोले जाने ल बेटा जेकर बुढ़िया मायके चल जाला वो आदमी सबसे खुशहाली हो, वो बहुत खुश रहेला जैसे के जवानी चढ़ गल बा। तो बोले तो चाचा सबसे दुखी के हवन। बोले हाँ ये आदमी के जे जान ले सांझ के बुढ़िया वापस लौटा था तो देखा कैसे मुंह उतर जाए ओकर सबसे दुखी आदमी।
3: राधा के शोभेला धर्मान सिंदूर कृष्णा

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जब शांति जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन थी अगूर से उनका सब मराठी परिवार जे दागोचिया से साथ देवत हवन और उनकर भगीना ओम खातिन जे अप दागोचिया से हमनी के हमेशा सुनते रहलन। चंद्रदेव जी बोधन के आवाज में रखल है अगला गीत उनकर खातिन चलाओ अब जा और चाचा बोले जाने ला बेटा भगवान जो है आदमी लोग के बहुत सोच समझ के बनाइले हवन। तब पप्पू भैया बोले वो कैसे चचा बोले हाँ देख ले हवा भगवान कैसे हमनी के सकल बना देले हवन ऐसन कान ऐसन तनी बाहर निकाल के काहे काहे के जानत हवा भगवान जानत रहलन कि हमनी के ऐसे पे कान पे ऐनक चढ़ावे के रहल और नहीं तो आदमी लोग जानत हवा कौन सी गलत। हम बोले नहीं चचा कैसे जानब बोले कील ठोक के एगो कुलू ठोक के पड़त चश्मा चढ़ाई के वही खातिर भगवान के बहुत अकल है समझ गई ला।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम 10:24 हो गल बा। और जितना कोई रात के काम करत हवन, गार्दी के काम करत हवन, सोफे अब बापू के काम करत हवन, लोपिताल में काम करत हव, तब बस लिजिन में काम करत हव, हमनी के संगे साथ देते रहिए जा रेडियो पर, रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा रात के 11 बजे ले, और मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जहाँ पर साजिद जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन रोजेल से, और उनकर खास संगतिया हवन दीना सरोवर। जितना कोई साथ है देवत हवन उनकर खातिर विनोद सिवदत्त के आवाज़ में रखल है अगला गीत चलावब जा। और हमार चाची बेचारी कौन दिन बहुत परेशान हो गल, तो हम बोली चाची कौन जी होल, बोले का बोलब हमार घर में बहुत चूहा हो गल बा, मामू हो गल बा। तो हम बोली हाँ तनी दवाई डालिया, तो बोला हाँ जाने ला हम बहुत टैलेंटेड हैं। हम बोली काहे, बोला है चूहा लोग के देख के हमनी के एगो गीत याद पड़ल बा। हम बोली कौन गीत, अरे अभी अभी हम लिखले हैं। अरे वाह चाची तू गीत लिखेला, बोले हाँ हाँ गीतवा सुन ले हवा, धड़कन फिल्म के गीत जन रहल, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। बोले हाँ चाचा हाँ हाँ चाची सुन ले हैं, बोले हम एगो दूसर कंपोज कर ले हैं। हम बोले अरे वाह सुनावा सुनावा तने, तो चाची तो शुरू हो गल ऐसन बेसुरी आवाज में कैसे बोलब तोरा। चाची गावे के शुरू कर दिला, चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में ऐसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है, सात रंगों से बना कपड़ों का ये संगम, काट देते हैं ये कपड़े बन कर के सिंघम, हर कपड़ा सिंघम से बचाना पड़ता है, कपड़ों का

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:34 ग्यारह बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो चला आगे बढ़ब स। और अगला गीत जो है बसंत सुपुल के आवाज में रखल दुल्हा शादी करे जाला हाय गीत चलाओ अब जा। राजन लक्ष्मण जी खातन लाफलोगा से साथ देवत हवन उनकर पत्नी हवन माला दूगो बेटी प्रार्थना और प्रगति बहिन हवन मानती भगिनी हवन उर्मिला तुलसी और उनकर साली साहिबा आज उनकर हिया घूमे आल हवन तो चला हाय गीत बसंत सुपुल जी के आवाज में चलाओ अब जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला। अगला गीत जन है शारदा सिन्हा के आवाज में रखल श्यामा जी है गीत के मांग कर हवन। श्यामा रघुनंदन जी हमनी के संगीत जुड़ गल हवन। गाँव गो बगल से उनकर भैया हवन जयप्रकाश, भौजी नम्रता, केशव और युधीश संगे हवन उनकर दूगो संगतिया, दूगो सखी वीना जी और वीना रामफल जी। वीना रामफल हमनी के हमेशा देहूर से साधे वेलन और वीना जी और संगे हवन विश्वानी जी। हाँ हो विश्वानी जी दुम दुखी जे कौन रिमास बगल से हमनी के हमेशा साधे वेलन। तो चला उनकर खातिन है गीतवा चलाओ अब जा बहुत मजेदार चुटकुला संगे। तो बहुत खुशी हुआ चुटकुला सुने की। तो चाची हमनी के चाचा के बोले हाँ हम तो हर खातिन का है। तो चाचा बोले हाँ तू हमार जान हवा। और चाची बोले हमर कीमत का हा। बोले तोहर कीमत तोहर तो कीमत लेसेंस नियर हर दिन तोहर जोन कीमत हा बढ़ते रहेला।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला अगला गीत जोन है, चलाओ अब जाओ। और हैजा पर हमनी के नीता खेदनी जी भी साथ देवत हवन सेंशुलिया विलास से साथ देते रहिए जा। मानती जी इनवल फॉन्स से जुड़गल हवन और अगला गीत जोन है संतोष महादेव के आवाज में रखल और उनकर पतो हवन, उनकर बहिन हवन आरती और अनंती, पतो हवन उर्वशी अनुषा, संगे हवन मितिशा गिरीशा, साथ देवत हवन भव्य और पुष्कर। और ही हंसते हंसते श्यामा जी हैनी के हैजा हमनी के संगे एको चुटकुला शेयर कर ले हवा ना। वो बोले हाँ एगो एगो दिन कढ़ाई और ही टेम्पो तनी बातचीत होवत रहा तो टेम्पो कढ़ाई के बोले हाँ तू बहुत करिया हवा, इतना करिया तक कबो कोई के देख लेने है। तो कढ़ाई भी गाल बजा के जवाब दे दिलक, बोले हाँ हम तो करिया है जानी ला, पर तू हमनी के देख के काहे रोज सीटी बजावेला हो।

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: तो चला भोजपुरी दरगाह कार्यक्रम के आज के समाप्त करे के समय हो गल बा। हईजा पर हमनी के संगे प्रेम इलाज जी का तो बोन से जुड़ गल हवन और अपन पति के बहुत याद करत हवन। तीन गो बेटी संगे हवन बेटा, दुगो नाती और दुगो नाती जे हवन लोंग लेते हमें। और बस हये प्रार्थना करत हवन कि भगवान जितना कोई रात के काम करत हवन उन सब कोई के भगवान शक्ति दे। चला प्रेमिला जी तोहर आशीर्वाद सब पर बनल रही ऐसे आशा करब जा। और चला इसी के संगे संगे सीता जी हैजा पर माफ करे जा कुमारी जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन दागो जे बगल से। जी हाँ कुमारी जी हमनी के बोले उस्ताबिया परिवार खातिन अगला गीत चला द। संगे हवन उनका तीन गो बेटी लता प्रतिमा सुधा और पतो हवन कामिनी। संगे हवन उनका नाती आयुष, सात गो बहिन, तीन गो समधीन और सब परिवार खातिन चलाओ अब जा हई अगला गीत। और हई ये गीत रही हमनी के आज के कार्यक्रम के आखिरी गीत। शोभा जी हमनी के कथोबोन से बतियात रलन। और शोभा जी तोहर उठाता जैसे फोन वा कटागल जस्ती लंबा बात नहीं करे सकली, पर कोई बात नहीं तोहर नाम जोड़ है शोभा जी तोहर सब परिवार खातिन। और अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल अयोध्या के राज है गीत। ये गीत के संगे संगे आज के कार्यक्रम है जहाँ पर समाप्त हो जाए। अगले शांति के फेरों से भेंट आप सब इसने रात के 9 बजे से रात के 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। और चला हमनी के बाद रात के 11 बजे से 12 बजे ले सुनहरे पल कार्यक्रम तू सुने सकब। नीतू शाह के प्रस्तुति में है अगला कार्यक्रम रही जहाँ पर पुराना गीत तू सुने सकब। तो चलो इसी के साथ एगो बढ़िया सामदी एगो बढ़िया दिमास अपन परिवार संगे बितैया। जेकर शादी जेकर हरदी आज बाते काल शादी हो उनका बहुत बहुत शुभकामना देव थे। और फेरों से बेटा आप सब एगो बढ़िया सप्ताह के साथ तबले अपन ख्याल रखिए। और ठंडा के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीते रहिए। अपन सेहत के पूरा ख्याल रखिए। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि, नमस्ते आप सभी को। अरे बाप।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए एक घंटे के सफर में हमारे हम सफर बने रहिए। और आज सुनहरे पल कार्यक्रम एक ऐसी कलाकारा के नाम करते हैं। आज तो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन 60s-70s में इतने प्यारे प्यारे मूवीज में काम किया और इतने प्यारे प्यारे गाने हैं। पहला गाना सुनिए, आपको पता चल जाएगा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आपने अंदाजा लगा ही लिया कि आज मिसेस बच्चन यानी कि जया बच्चन की बात कर रही है। वैसे हिंदी सिनेमा की उन अदाकारों में से एक है जिन्होंने अपनी सादगी, प्रतिभा और शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। उनका जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि कला और अभिनय में रही। उन्होंने पुणे के प्रसिद्ध फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII से एक्टिंग की पढ़ाई की और वहां से गोल्ड मेडल के साथ पास हुई, जो उनकी प्रतिभा का प्रमाण था।

0: जया बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की थी। उनकी पहली महत्वपूर्ण फिल्म गुड्डी थी, जिसे प्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई। इस फिल्म में उन्होंने एक सरल और सपने देखने वाली लड़की का किरदार निभाया, जो दर्शकों को बहुत ही पसंद आया। गुड्डी की सफलता ने जया बच्चन को बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों की श्रेणी में ले खड़ा किया।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: 1970s के दशक में जया बच्चन ने कई यादगार फिल्मों में काम किया। श्रोताओं, अभिमान, कोशिश, मिली, चुपके चुपके, अनामिका, जंजीर, शोले जैसे फिल्मों में अपने अभिनय को आज भी याद किया, उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। उनके एक्टिंग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे अपने किरदार को बहुत ही स्वाभाविक तरीके से जीती थी। उनके चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और सरल अंदाज दर्शकों को उनसे जोड़ देता था। वे बिना अधिक नाटकीयपन के अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती से निभाती थी कि हर पात्र जीवन लगने लगता था।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

फिल्म अभिमान में उन्होंने अपने पति अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। वैसे एक और मूवी रही एक नजर, जिसमें इन दोनों की नजरें मिली और तभी से प्यार शुरू हो गया था। वास्तविक जीवन में भी जया और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित दाम्पतियों में से गिने जाते हैं। उनकी शादी 1973 में हुई और तब से दोनों भारतीय सिनेमा के एक मजबूत स्तंभ बने हुए हैं।

जया बच्चन को अपने करियर में अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कई बार फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते और भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित की गई। उनका नाम उन अभिनेत्रियों में लिया जाता है जिन्होंने महिला प्रधान फिल्मों को एक नई पहचान दी। उनके अभिनय में गहराई, संवेदनशीलता और सच्चाई नजर आती है, जो उन्हें अन्य कलाकारों से

लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद भी जया बच्चन ने जब वापसी की तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। 2000 के सालों में 1084 की माँ, फिजा, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा। हर दौर

0: अभिनय के साथ साथ जया बच्चन ने राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। वे भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं और सामाजिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और निश्चित राय रखने के लिए भी जानी जाती हैं। जया बच्चन की विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है, वे भारतीय नारी की गरिमा, सादगी और शक्ति का प्रतीक हैं। उन्होंने दिखाया कि बिना किसी दिखावे के भी एक कलाकार अपनी कला के दम पर शिखर तक पहुंच सकता है। आज भी उनका नाम बड़े अदब सम्मान के साथ लिया जाता है और उनकी फिल्में नए कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी हुई है। जया बच्चन सचमुच भारतीय सिनेमा की एक अनमोल धरोहर है, जिनकी कला और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो